अनुसार 15 मई 2026। इस समय सुबह के 5:58 और 20 सेकेंड हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

103.7 मेगाहर्ट्ज पर ये FM शिमला है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 25वीं तिथि।

0: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। 6 बजने को है, आइए अब आपको लेकर चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
2: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन LNG की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एयरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वैमानिकी विकास एजेंसी के विमान एकीकरण और उड़ान परीक्षण केंद्र की आधारशिला रखी जाएगी। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई।

0: धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एनडीए समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। सरकार ने अग्रिम प्राधिकरण योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देता है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, ताकि उनकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। दोबारा बिना शुल्क सोने के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। इससे पहले इस योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर कोई सीमा नहीं थी। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 111 लोगों की मौत और 200 लोगों के घायल होने की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल जायजा लेने का निर्देश दिया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। कल शाम धर्मशाला में मुंबई इंडियंस ने एक गेंद शेष रहते 205 रन बनाकर जीत हासिल की। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल के लिया। प्रतियोगिता में अजीत, कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। Prime Minister Narendra Modi will embark on a six-day visit to UAE, Netherlands, Sweden, Norway and Italy today. On the first leg of his five-nation visit, Mr. Modi will reach UAE today, where he will meet President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders will exchange views on bilateral issues, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest. They will also discuss ways to advance the bilateral comprehensive strategic partnership, underpinned by strong political, cultural, economic and people-to-people links. Energy security is expected to remain a central theme of the engagement. Briefing media prior to the visit, Additional Secretary West in the Ministry of External Affairs, Asim Mahajan, said energy remains a key pillar of the relationship. He noted that the UAE was India's fourth largest source of crude oil last year, meeting around 11% of India's requirement. Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance economic resilience, and build a more inclusive world order. Interacting with foreign ministers and heads of delegation of BRICS countries who called on Mr. Modi in New Delhi, the Prime Minister said BRICS has emerged as an important platform for advancing cooperation among emerging economies and giving voice to the aspirations of the Global South. The meetings took place on the sidelines of the BRICS foreign ministers' meeting, which is underway in New Delhi. The government has imposed a limit of 100 kg on gold imports under the Advance Authorization Scheme, which allows jewellery exporters to import raw or input materials at zero duty. In a public notice, the Directorate General of Foreign Trade said, advance authorization for import of gold shall be issued subject to a maximal remissible quantity of 100 kilograms. The Directorate General added that any subsequent advance authorization for the import of gold shall be considered for issuance only upon fulfillment of at least 50% of the export obligation. Earlier, there was no limit on

आप सुन रहे हैं भक्ति रस से सराबोर कार्यक्रम हिमांजलि। प्रभु का स्मरण दुखों से मुक्त करने वाला है, इसीलिए प्रत्येक को सभी कार्यों को तजकर भी करना पड़े तो प्रतिदिन प्रभु सुमिरन कीजिए। प्रभु सुमिरन ही दुखों से मुक्ति का एकमात्र साधन है। आइए अब आराधना करते हैं भोलेनाथ शिवशंकर की।

भक्ति रस से सराबोर कार्यक्रम हिमांजलि सुन रहे हैं आप हमारे साथ। तो आइए अब आराधना करते हैं देवी माँ की। माता तुम जीवनदायिनी हो, हे माँ तुम ही कल्याणकारिणी हो, मेरे भी दुख दूर करो हे देवी माँ, एक तुम ही तो दुख तारिणी हो।

आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी मंगल कामना के साथ भक्ति रस से सराबोर इस कार्यक्रम में आज बस इतना ही। FM शिमला सुन रहे हैं आप 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं FM शिमला की एक और भक्तिमयी प्रस्तुति, मानस गान। गायन स्वर हैं लता मंगेशकर, सुरेश वाडेकर, हरिहरन और साथियों के। संगीतकार हैं सतीश भाटिया।

पक्षीराज गरुड़ को काकभुशुंडी अपने एक पूर्व जन्म में शाप मुक्ति की कथा सुना रहे हैं। हजार योनियों में जन्म लेकर उन्हें भटकना तो पड़ा, किंतु कृपालु शंकर ने उस दुस्सह दुख से मुक्त कर दिया जो जन्म लेने और मृत्यु को प्राप्त होने में होता है। उन्हें ये भी वरदान मिला कि किसी योनि में भी जन्म लेकर उनका ज्ञान लुप्त नहीं होगा, किंतु साथ ही चेतावनी भी मिली कि वे फिर कभी किसी द्विज का अपमान न करें, क्योंकि विप्रद्रोह उसे भी भस्म कर देता है जिसे इंद्र का वज्र, स्वयं शंभु का त्रिशूल या हरि का चक्र भी नहीं मार सकते।

अभी आप सुन रहे थे मानस गान 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे हैं FM शिमला का प्रसारण। लीजिए अब सुनिए देश गान।

0: देशगान अभी आपने सुना, आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए अब पेश है एफएम न्यूज हेडलाइंस।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं जगमोहन शर्मा। प्रदेश के 4 नगर निगमों मंडी, धर्मशाला, पालमपुर व सोलन और स्थानीय शहरी निकायों में 17 मई को होने वाले चुनावों के लिए प्रचार अभियान चरम पर है। नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा व कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार में जुटे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने कल पालमपुर नगर निगम के विभिन्न वार्डों में नुक्कड़ सभाओं व रोड शो के जरिए मतदाताओं से कांग्रेस के पक्ष में वोट की अपील की। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने सोलन नगर निगम चुनाव प्रचार के दौरान

0: कांग्रेस की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि समृद्ध शहर अभियान के तहत सोलन अव्वल स्थान पर है। शांडिल ने कहा कि सोलन को सीवरेज से जोड़ना उनकी प्राथमिकता है और शहर की पेयजल समस्या सहित अन्य समस्याओं का भी निपटारा किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम मंडी चुनावों के तहत राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ कल आरोप पत्र जारी किया। प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता व विधायक राकेश जम्वाल ने आरोप पत्र जारी करते हुए कहा कि कांग्रेस ने मंडी के प्रति हमेशा सौतेला रवैया अपनाया है और 2025 की आपदा के दौरान ये पूरी तरह उजागर हो गया। उन्होंने विश्वास जताया कि मंडी नगर निगम चुनाव में जनता कांग्रेस सरकार को करारा जवाब देगी और भाजपा को अपना आशीर्वाद देगी। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा है कि नगर निगम चुनावों में कांग्रेस को जनता का अच्छा समर्थन मिल रहा है। शिमला में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बीते 3 वर्षों के कार्यकाल के दौरान कई ऐसे फैसले लिए गए हैं जो हिमाचल के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। FM न्यूज हेडलाइंस में अभी बस इतना ही। नमस्कार।
1: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: 7 बजने को है हिंदी समाचार। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा, सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
3: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टुपर्थी में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। श्री राजनाथ सिंह अनकापल्ली जिले के टी सिरसापल्ली गांव में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की नई अत्याधुनिक नौसेना प्रणाली निर्माण सुविधा की भी आधारशिला रखेंगे। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एडीए समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों में तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई।

है जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम मंजूरी योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा

0: गई है जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम मंजूरी योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले दो दिन में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 111 लोगों की मौत और 200 लोगों के घायल होने की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल जायजा लेने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल में भी हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। भारत की वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुंग गोंगा को हराया। प्रतिस्पर्धी वुशु को ताउलो और सांडा में दो प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। ताउलो जिम्नास्टिक और मार्शल आर्ट का मिश्रण है। इसमें प्रतियोगियों को उनके मूवमेंट के आधार पर अंक दिए जाते हैं। आईपीएल क्रिकेट में प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा और मुंबई इंडियंस ने कल पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए चिंतन, प्रस्तुति डॉक्टर हुकुम शर्मा की है।

पवन पुत्र हनुमान बाल ब्रह्मचारी थे, लेकिन मकर ध्वज को उनका पुत्र कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार लंका जलाते समय आग की तपिश के कारण हनुमान जी को बहुत पसीना आ रहा था। इसलिए लंका दहन के बाद जब उन्होंने अपनी पूंछ में लगी आग को बुझाने के लिए समुद्र में छलांग लगाई तो उनके शरीर से पसीने की एक बड़ी सी बूंद समुद्र में गिर पड़ी। उस समय एक बड़ी मछली ने भोजन समझकर वो बूंद निगल ली। उसके पेट में जाकर वो बूंद एक शरीर में बदल गई। एक दिन पाताल के असुरराज अहिरावण के सेवकों ने उस मछली को पकड़ लिया। जब वे उसका पेट चीर रहे थे तो उसमें से वानर आकृति का एक मनुष्य निकला। वे उसे अहिरावण के पास ले गए। दैत्य अहिरावण ने उसे पातालपुरी का रक्षक नियुक्त कर दिया। यही वानर हनुमान पुत्र मकर ध्वज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अहिरावण रावण का भाई था। एक बार वो रावण से मिलने लंका आया। उस समय राम रावण युद्ध हो रहा था। तब रावण की आज्ञानुसार अहिरावण राम लक्ष्मण का अपहरण कर उन्हें पातालपुरी ले गया। उनके अपहरण से वानर सेना भयभीत और शोकाकुल हो गई, लेकिन विभीषण ने यह भेद हनुमान के समक्ष प्रकट कर दिया। तब राम लक्ष्मण की सहायता के लिए हनुमान जी पातालपुरी पहुंचे। जब उन्होंने पाताल के द्वार पर अपनी मुखाकृति वाले एक वानर को देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने मकरध्वज से उसका परिचय पूछा। मकरध्वज अपना परिचय देता हुआ बोला, मैं हनुमान पुत्र मकरध्वज हूं और पातालपुरी का द्वारपाल हूं। मकरध्वज की बात सुनकर हनुमान क्रोधित होकर बोले, ये तुम क्या कह रहे हो दुष्ट? मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, फिर भला तुम मेरे पुत्र कैसे हो सकते हो? हनुमान का परिचय पाते ही मकरध्वज उनके चरणों में गिर गया और उन्हें प्रणाम कर अपनी उत्पत्ति की कथा सुनाई। हनुमान जी ने भी मान लिया कि वो उनका ही पुत्र है, लेकिन ये कहकर कि वे अभी श्री राम और लक्ष्मण को लेने आए हैं। जैसे ही हनुमान जी द्वार की ओर बढ़े वैसे ही मकरध्वज उनका मार्ग रोकते हुए बोला, पिताश्री ये सत्य है कि मैं आपका पुत्र हूँ, लेकिन अभी मैं अपने स्वामी की सेवा में हूँ, इसलिए आप अंदर नहीं जा सकते। हनुमान ने मकरध्वज को अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास किया, किंतु वह द्वार से नहीं हटा। तब दोनों में घोर युद्ध हुआ।

देखते हनुमान जी ने उसे अपनी पूंछ में बांधकर पाताल में प्रवेश कर लिया। हनुमान सीधे देवी मंदिर में जा पहुंचे, जहां अहिरावण राम लक्ष्मण की बलि देने वाला था। हनुमान को देख चामुंडा देवी पाताल लोक से पलायन कर गई। तब हनुमान जी देवी रूप धारण करके वहां स्थापित हो गए। कुछ देर के बाद अहिरावण वहां आया और पूजा अर्चना करके जैसे ही उसने राम लक्ष्मण की बलि देने के लिए तलवार उठाई, वैसे ही भयंकर गर्जन करते हुए हनुमान जी प्रकट हो गए और उसी तलवार से अहिरावण का वध कर दिया। उन्होंने राम लक्ष्मण को बंधन मुक्त किया। तब श्री राम ने पूछा, हनुमान तुम्हारी पूंछ में ये कौन बंधा है? बिल्कुल तुम्हारे समान ही लग रहा है, इसे खोल दो। हनुमान ने मकर ध्वज का परिचय देकर उसे बंधन मुक्त कर दिया। मकर ध्वज ने श्री राम के समक्ष सिर झुका दिया। तब श्री राम ने मकर ध्वज का राज्याभिषेक कर उसे पाताल का राजा घोषित कर दिया और कहा कि भविष्य में वो अपने पिता के समान दूसरों की सेवा करे। ये सुनकर मकर ध्वज ने तीनों को प्रणाम किया। तीनों उसे आशीर्वाद देकर वहां से प्रस्थान कर गए। इस प्रकार मकर ध्वज हनुमान पुत्र कहलाए।

अभी आप सुन रहे थे चिंतन, प्रस्तुति डॉक्टर हुकम शर्मा की थी। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। आइए अब सुनते हैं गांधी चर्चा।

नमस्कार। साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा में प्रस्तुत है महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से धारावाहिक पाठ। आज आप सुनेंगे चौथे भाग का 26वां अध्याय। शीर्षक है घर में सत्याग्रह।

मुझे जेल का पहला अनुभव सन 1908 में हुआ। उस समय मैंने देखा कि जेल में कैदियों से जो कुछ नियम पलवाए जाते हैं, संयमी अथवा ब्रह्मचारी को उनका पालन स्वेच्छापूर्वक करना चाहिए। जैसे कैदियों को सूर्यास्त से पहले 5 बजे तक खा लेना होता है, उन्हें हिंदुस्तानी और हबशी कैदियों को चाय या कॉफ़ी नहीं दी जाती। नमक खाना हो तो अलग से लेना होता है, स्वाद के लिए तो कुछ खाया ही नहीं जा सकता। जब मैंने जेल के डॉक्टर से हिंदुस्तानियों के लिए करी पाउडर मांगा और नमक डालने की बात कही तो वे बोले, यहाँ आप लोग स्वाद का आनंद लूटने के लिए नहीं आए हैं, आरोग्य की दृष्टि से करी पाउडर की कोई आवश्यकता नहीं है। आरोग्य के विचार से नमक ऊपर से लें या खाना पकाते समय रसोई में डालें, दोनों एक ही बात है। यहाँ तो बड़ी मेहनत के बाद हम आखिर जरूरी परिवर्तन करा सके थे, पर केवल संयम की दृष्टि से देखें तो दोनों प्रतिबंध अच्छे ही थे। ऐसा प्रतिबंध जब जबरदस्ती लगाया जाता है तो वो सफल नहीं होता, पर स्वेच्छा से पालन करने पर ऐसा प्रतिबंध बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। अतएव जेल से छूटने के बाद मैंने भोजन में ये परिवर्तन तुरंत किए। भरसक चाय पीना बंद किया और शाम को जल्दी खाने की आदत डाली, जो आज स्वाभाविक हो गई है। किंतु एक ऐसी घटना घटी जिसके कारण मैंने नमक का त्याग किया, जो लगभग 10 वर्ष तक अखंड रूप से कायम रहा। अन्नाहार संबंधी कुछ पुस्तकों में मैंने पढ़ा था कि मनुष्य के लिए नमक खाना आवश्यक नहीं है और ना खाने वाले को आरोग्य की दृष्टि से लाभ ही होता है। मैंने ये भी पढ़ा और अनुभव किया था कि कमज़ोर शरीर वाले को दाल ना खानी चाहिए, किंतु मैं उन्हें तुरंत छोड़ ना सका। दोनों चीज़ें मुझे प्रिय थी, यद्यपि उक्त शल्यक्रिया के बाद कस्तूरबाई का रक्तस्राव थोड़े समय के लिए बंद हो गया था, पर अब वो फिर शुरू हो गया और किसी प्रकार बंद ही न होता था। अकेले पानी के उपचार व्यर्थ सिद्ध हुए। यद्यपि पत्नी को मेरे उपचारों पर विशेष श्रद्धा नहीं थी, तथापि उनके लिए तिरस्कार भी नहीं था। दूसरी दवा करने का आग्रह ना था। मैंने उसे नमक और दाल छोड़ने के लिए मनाना शुरू किया।

बहुत मनाने पर भी, अपने कथन के समर्थन में कुछ ना कुछ पढ़कर सुनाने पर भी वो मानी नहीं। आखिर उसने कहा, दाल और नमक छोड़ने को तो कोई आपसे कहे तो आप भी ना छोड़ेंगे। मुझे दुख हुआ और हर्ष भी हुआ, मुझे अपना प्रेम उढ़ेलने का अवसर मिला। उसके हर्ष में मैंने तुरंत ही कहा, तुम्हारा ये ख्याल गलत है। मुझे बीमारी हो और वैद्य इस चीज़ को या दूसरी किसी चीज़ को छोड़ने के लिए कहे तो मैं अवश्य छोड़ दूंगा, लेकिन जाओ, मैंने तो एक साल के लिए दाल और नमक दोनों छोड़े। तुम छोड़ो या ना छोड़ो, ये अलग बात है। पत्नी को बहुत पश्चाताप हुआ। वो कह उठी, मुझे माफ़ कीजिए, आपका स्वभाव जानते हुए भी मैं कहते कह गई। अब मैं दाल और नमक नहीं खाऊंगी, लेकिन आप अपनी बात लौटा लें, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी सज़ा हो जाएगी। मैंने कहा, अगर तुम दाल और नमक छोड़ोगी तो अच्छा ही होगा, मुझे विश्वास है कि उससे तुम्हें लाभ होगा, पर मैं ली हुई प्रतिज्ञा वापस नहीं ले सकूंगा, मुझे तो इससे लाभ ही होगा। मनुष्य किसी भी निमित्त से संयम क्यों ना पाले, उसमें उसे लाभ ही है। अतएव तुम मुझसे आग्रह ना करो, फिर मेरे लिए भी ये एक परीक्षा हो जाएगी, और इन दो पदार्थों को छोड़ने का जो निश्चय तुमने किया है उस पर दृढ़ रहने से तुम्हें मदद मिलेगी। इसके बाद मुझे उसे मनाने की जरूरत तो रही ही नहीं। आप बहुत आठीले हैं, किसी की बात मानते तो नहीं, कहकर और अंजलि भर आंसू बहाकर वो शांत हो गई। मैं इसे सत्याग्रह का नाम देना चाहता हूँ और इसको अपने जीवन की मधुर स्मृतियों में से एक मानता हूँ। इसके बाद कस्तूरबाई की तबीयत खूब संभली। इसमें नमक और दाल का त्याग कारण रूप था, या वो किस हद तक कारण रूप था, अथवा उस त्याग से उत्पन्न आहार संबंधी अन्य छोटे बड़े परिवर्तन कारणभूत थे, या इसके बाद दूसरे नियमों का पालन कराने में मेरी पहरेदारी निमित्त रूप थी, अथवा उपर्युक्त प्रसंग से उत्पन्न मानसिक उल्लास निमित्त रूप था, सो मैं कह नहीं सकता। पर कस्तूरबाई का क्षीण शरीर फिर पनपने लगा, रक्तस्राव बंद हुआ और वैद्यराज के रूप में मेरी साख कुछ बढ़ी। स्वयं मुझ पर तो इन दोनों के त्याग का प्रभाव अच्छा ही पड़ा। त्याग के बाद नमक अथवा दाल की इच्छा तक न रही। एक साल का समय तो तेजी से बीत गया। मैं इंद्रियों की शांति का अधिक अनुभव करने लगा और मन संयम को बढ़ाने की तरफ अधिक दौड़ने लगा। कहना होगा कि वर्ष की समाप्ति के बाद भी दाल और नमक का मेरा त्याग ठेठ देश लौटने तक चालू रहा। केवल एक बार सन 1914 में विलायत में नमक और दाल खाई थी, पर इसकी बात और देश वापस आने पर ये दोनों चीज़ें फिर किस तरह लेनी शुरू की, इसकी कहानी आगे कहूँगा। नमक और दाल छुड़ाने के प्रयोग मैंने दूसरे साथियों पर भी काफ़ी किए हैं, और दक्षिण अफ्रीका में तो परिणाम अच्छे ही आए हैं। वैदिक दृष्टि से दोनों चीज़ों के त्याग के विषय में दो मत हो सकते हैं, पर इसमें मुझे कोई शंका नहीं कि संयम की दृष्टि से तो इन दोनों चीज़ों के त्याग में लाभ ही है। भोगी और संयमी के आहार भिन्न होने चाहिए, उनके मार्ग भिन्न होने चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करने की इच्छा रखने वाले लोग भोगी का जीवन बिताकर ब्रह्मचर्य को कठिन और कभी कभी लगभग असंभव बना डालते हैं।

साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा में आप सुन रहे थे महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से धारावाहिक पाठ। आज आपने चौथे भाग का 26वां अध्याय सुना, शीर्षक था घर में सत्याग्रह। और आइए अब सुनते हैं गांधी जी का प्रिय राम भजन।

0: अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा, प्रस्तुतकर्ता थे डॉक्टर हुकम शर्मा। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला।
1: अगर युवा ही चुप रहा तो बदलाव कौन लाएगा?
2: अब वक्त है मोबाइल से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचने का।
1: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में हर युवा बनेगा बदलाव की ताकत। आपका एक वोट तय करेगा आपके शहर का आने वाला कल। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान जरूर करें।
2: युवा जागेगा, हिमाचल आगे बढ़ेगा। पहले मतदान, फिर बाकी काम। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।

FM शिमला सुन रहे हैं आप 103.7 मेगाहर्ट्ज पर और FM शिमला पर मनोरंजन और गीत संगीत का एक नया सफर जो है अब शुरू होने जा रहा है यहाँ पर, जो कि हम और आप एक साथ तय करेंगे अभी से लेकर 11 बजे तक। और इस सुहाने संगीतमय सफर में हमारे पास आपके लिए हैं एक से बढ़कर एक प्रोग्राम्स, बहुत से हिट और सुपर हिट सॉन्ग्स और कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशंस भी। तो चलिए फिर बिना देर किए करते हैं शुरुआत आज के इस हसीन सफर की, आपके पसंदीदा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग शिमला के साथ। और अपने आज के इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाएंगे पुराने फिल्मी दौर के कुछ ऐसे यादगार और लाजवाब गीत जिन्हें सुनकर आपकी ये प्यारी सी सुबह जो है ना एकदम खुशनुमा हो जाएगी और आपका मूड भी इन गीतों की तरह ही एकदम तरोताज़ा हो जाएगा। जी हाँ, ये गीत जो हैं आज भी एकदम तरोताज़ा लगते हैं जितने कि उस दौर में हुआ करते थे। तो चलिए फिर आपको सुनवाते हैं प्रोग्राम का ये पहला गीत। हमराज फिल्म से ये गीत हमने आपके लिए चुना है, आवाज़ महेंद्र कपूर की है और FM शिमला पर आज के इस सुहाने सफ़र में मैं हूँ आपके साथ, आपकी दोस्त, आपकी हम सफ़र रेडियो।

0: हमराज फिल्म का ये बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना महेंद्र कपूर की आवाज़ में। जी हाँ, FM शिमला पर हैं आप इस वक्त हमारे साथ और सुन रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग शिमला।
1: दादाजी, हमारा शहर और बेहतर कब बनेगा?
2: जब हर घर से एक वोट निकलेगा बेटा।
3: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में अपने शहर के भविष्य के लिए 100% मतदान का संकल्प ले। एक वोट, साफ शहर, बेहतर सड़क, पानी और विकास की नई उम्मीद। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने मतदान केंद्र जरूर जाएं। घर घर से निकलेगी आवाज, इस बार कोई नहीं छूटेगा। 100% मतदान, मजबूत हिमाचल की पहचान।
4: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

अंधेरा और उम्मीद दोनों ही जिंदगी में आते हैं। फर्क बस इतना होता है कि अंधेरा रास्तों को धुंधला कर देता है और उम्मीद उन्हीं रास्तों को रोशन कर देती है। इसलिए मुश्किल वक्त में हिम्मत से काम लीजिए और हमेशा याद रखिए कि एक छोटी सी उम्मीद आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। आप सुन रहे हैं FM शिमला 103.7 MHz पर।

दो दिलों की दास्तान। इस फिल्म से ये बहुत ही प्यारा सा गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज़ों में। और ये प्यारे प्यारे से गीत जो हैं इस वक्त आप हमारे साथ सुन रहे हैं एफएम शिमला पर। प्रोग्राम वही है आपका अपना जाना पहचाना गुड मॉर्निंग शिमला। तो लिसनर्स, आज है 15 मई 2026 और आज का जो दिन है हर रोज़ ही की तरह अपने आप में ख़ास है। बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाएं जो हैं आज की तारीख से जुड़ी हैं, तो आइए जानते हैं उनके बारे में। आज का दिन 15 मई जो है दुनिया के इतिहास में कई मायनों में अहम है। दरअसल इसी दिन यानी कि आज ही के दिन एलिसन गारग्रीव्स नाम की महिला बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर इतिहास रच दिया था उन्होंने।

0: इसके अलावा आज ही के दिन भगत सिंह और राजगुरु के साथ हंसते हंसते फांसी के फंदे पर लटकने वाले सुखदेव थापर का जन्म भी हुआ था। आपको बता दें कि स्वादिष्ट फास्ट फूड चेन को आप तक पहुंचाने वाली फास्ट फूड चेन मैकडोनल्ड्स की शुरुआत आज ही के दिन हुई थी। रिचर्ड और मॉरिस मैकडोनल्ड्स नाम के दो भाइयों ने 15 मई 1940 को कैलिफोर्निया में सैन बर्नार्डिनो में छोटा सा एक रेस्टोरेंट खोला था और आज वही रेस्टोरेंट जो है दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन बन चुका है। 100 से ज़्यादा देशों में इसके 35,000 से ज़्यादा आउटलेट्स जो हैं आज की डेट में अवेलेबल हैं। और इसके अलावा आपको बताएं कि बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित का जन्म भी आज ही के दिन यानी कि 15 मई को हुआ है। तो ये कुछ ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो आज की तारीख से जुड़ी हैं और आज की तारीख को बनाती हैं खास, और हमारे इस प्रोग्राम को खास बनाते हैं वो दिलकश गीत जो हम लेकर आते हैं आपके लिए आप ही के अपने चहेते एफएम शिमला पर। तो आइए सुनते हैं प्रोग्राम में एक और प्यारा सा गीत। ये गीत आपके लिए हमने चुना है चरस फिल्म से और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और आनंद बख्शी ने।
1: सबसे बड़ा सच

0: कुछ लोग वोट की कीमत पैसों, शराब या लालच से लगाते हैं, लेकिन हिमाचल की जनता जानती है वोट बिकता नहीं, वोट भविष्य बनाता है। 17 मई को नगर निकाय चुनाव में ना किसी दबाव में आए, ना किसी प्रलोभन में, सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने विवेक और अधिकार से मतदान करें।
1: स्वच्छ सोच, निष्पक्ष मतदान। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

जी हाँ लिसनर्स, ये वो सॉन्ग्स हैं जो दिल को सुकून देते हैं, और सुकून की तलाश में हर कोई रहता है। हर इंसान के लिए सुकून का मतलब जो है अलग-अलग होता है। किसी को मंदिर की घंटियों में सुकून मिलता है, तो किसी को माँ की आवाज़ में। कोई भीड़भाड़ में खुश रहता है, तो कोई अकेलेपन में खुद को ढूंढ लेता है सुकून। किसी के लिए सुकून प्रेम है, तो किसी के लिए आत्मसम्मान। कोई अपनों के साथ बैठकर मुस्कुरा लेता है, तो कोई खामोशी में ही अपनी पूरी दुनिया जी लेता है। दरअसल सुकून कोई जगह नहीं, बल्कि एक एहसास है जो हर दिल अपने तरीके से महसूस करता है और अपने लिए ढूंढ लेता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गीत संगीत में सुकून ढूंढते हैं, और बात अगर इन पुराने फिल्मी गीतों की जाए, तो यकीनन इन्हें सुनकर आपको सुकून मिलेगा। आपको सुनवा रहे हैं आज के इस प्रोग्राम का ये आखिरी गीत, और ये गीत आपके लिए हमने चुना है मेरे हमसफर फिल्म से। इसे गाया है लता मंगेशकर के साथ मुकेश ने।

0: तो लिसनर्स, ये था हमारे आज के इस प्रोग्राम का आखिरी गीत. आज के लिए प्रोग्राम में बस इतना ही. आप सुन रहे हैं FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर. अब से कुछ देर बाद पेश की जाएंगी FM न्यूज़ हेडलाइंस और समाचार प्रभात के लिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र. हम आपको लेकर चलेंगे ठीक 8 बजे. 8:32 पर लोक संगीत आपको सुनवाएंगे और 9:30 पर आपके लिए लेकर आएंगे आपका पसंदीदा प्रोग्राम कुदरत के रंग. 10 बजे युगल गीतों पर आधारित संगम प्रोग्राम आप सुनेंगे हमारे साथ. और ऐसे ही एंटरटेनिंग प्रोग्राम्स हम आपके लिए लेकर आएंगे आज के अपने इस पूरे सफर के दौरान. तो कहीं नहीं जाना है आपने. सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रहिए हमारे साथ यूं ही शिमला FM पर. लीजिए अब पेश हैं FM न्यूज हेडलाइन.
1: नमस्कार, FM न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं जगमोहन शर्मा. नगर निगम चुनावों को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल धर्मशाला में कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि कांगड़ा को प्रदेश की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा. इसी कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा. धर्मशाला को स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट भी कांग्रेस सरकार की ही देन है. धर्मशाला एयरपोर्ट के विस्तार का कार्य किया जा रहा है और क्षेत्र में 3 हेलीपोर्ट बनाए जाएंगे. साथ ही शक्तिपीठों को बेहतर कनेक्टिविटी सुविधा से जोड़ा जाएगा ताकि पर्यटन को और बढ़ावा मिल सके. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल धर्मशाला में चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि अब भाजपा के नेता केवल सोशल मीडिया में बोलने वाले ही रह गए हैं. उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि भाजपा का कोई भी नेता ये बताए कि केंद्र से हिमाचल को घोषित 1500 करोड़ रुपए में से कितना पैसा मिला. मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के नेताओं की हिम्मत नहीं है कि वे प्रधानमंत्री को बोलें कि राहत पैकेज की घोषणा की गई थी और अभी तक जारी नहीं हुआ है. भाजपा के अंदरूनी हालात ठीक नहीं हैं और पार्टी के नेता अपने व्यक्तिगत हित साधने में लगे हुए हैं. पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं

0: सांसद अनुराग ठाकुर ने धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया कि प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार से निराश हो चुकी है और आने वाले चुनावों में इसका असर साफ दिखाई देगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार, प्रशासनिक विफलता और झूठी गारंटियों के कारण लोगों में भारी नाराजगी है। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस सरकार को घेरते हुए कहा कि भाजपा सरकार के समय स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के लिए करोड़ों रुपए दिए गए थे, लेकिन पिछले 3.5 वर्षों में विकास कार्यों की रफ्तार थम गई है। उन्होंने कांगड़ा को पर्यटन राजधानी बनाने और एयरपोर्ट विस्तार के दावों को भी हवा हवाई बताया। मंडी नगर निगम चुनाव प्रभारी एवं लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा को विकास से कोई सरोकार नहीं है और उसका एकमात्र उद्देश्य सत्ता हासिल करना है। मंडी शहर के विभिन्न वार्डों में चुनाव प्रचार के दौरान जनसभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ने पिछले 5 वर्षों तक नगर निगम मैं सत्ता में रहने के बावजूद शहर के विकास के लिए कोई ठोस कार्य नहीं किया है। विकास को केवल चुनिंदा वार्डों तक सीमित रखा गया और भाजपा नेताओं ने अपने चहितों को लाभ पहुंचाने की राजनीति की। जनता अब सब समझ चुकी है और बदलाव चाहती है। FM न्यूज हेडलाइंस में अभी बस इतना ही। नमस्कार।
1: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला।
1: 8 बजने को है समाचार प्रभात के लिए, आइए आप आकाशवाणी के दिल्ली।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रूपए प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
3: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। यूएई के सोवरेन वेल्थ फंड्स भारत के सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्टिवली निवेश कर रहे हैं। साथ ही भारत का शांति एक्ट न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल रहा है। क्रूड ऑयल से एलएनजी तक, परंपरागत ऊर्जा से स्वच्छ ऊर्जा, इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के

0: विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। उन्होंने कहा कि हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व पर बल दिया है।
1: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर श्री सिंह उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान कार्यक्रम सुविधा की भी आधारशिला रखेंगे। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में

0: आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर श्री सिंह उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान कार्यक्रम सुविधा की भी आधारशिला रखेंगे। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रूपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रूपये प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत 90.67 रूपये प्रति लीटर हो गई है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 106.68 रूपये और डीजल 93.14 रूपये प्रति लीटर की दर से मिलेगा। कोलकाता में पेट्रोल 108.74 रूपये और डीजल 95.13 रूपये प्रति लीटर पर उपलब्ध होगा। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 103.77 रूपये और डीजल का मूल्य 95.35 रूपये प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। एक रिपोर्ट।
1: ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है ताकि उसकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। इसमें यह भी कहा गया है कि दोबारा बिना शुल्क के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप और धनशोधन मामले में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में कल शांतनु से 10 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। शांतनु सिन्हा को आज अदालत में पेश किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने कालीघाट पुलिस स्टेशन के पूर्व प्रभारी शांतनु को सोना पप्पू उर्फ बिस्वजीत पोद्दार द्वारा चलाए जा रहे कथित आपराधिक गिरोह से जुड़े धनशोधन मामले में कई बार पूछताछ के लिए तलब किया था। सूत्रों के अनुसार ईडी को शांतनु बिस्वास से जुड़े कुछ संदिग्ध वित्तीय लेनदेन मिले हैं, जिनमें सोना पप्पू और उनके करीबी सहयोगी भी शामिल हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एडीएस समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई है, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। सीबीआई ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह के विरुद्ध विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एलआईसी द्वारा हजारों करोड़ रुपए के कथित धोखाधड़ी के 7 मामले दर्ज किए गए हैं। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों

0: की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केरलम में सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। सोमवार को नए यूडीएफ मंत्रालय का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस बीच नए मंत्रालय के सदस्यों को लेकर चर्चा जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: वीडी सतीशन सोमवार को केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यूडीएफ सूत्रों ने तिरुवनंतपुरम में बताया कि मुख्यमंत्री के साथ पूरी मंत्री परिषद भी शपथ लेगी। वहीं नए मंत्रियों और उनके विभागों को लेकर यूडीएफ के घटक दलों के बीच गहन चर्चा जारी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला 4 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद तिरुवनंतपुरम और नई दिल्ली में 10 दिन तक चली लगातार बैठकों और विचार विमर्श के बाद लिया गया। कांग्रेस और यूडीएफ के अन्य सहयोगी दल कल तक नई मंत्री परिषद को अंतिम रूप देने की कोशिश में जुटे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मिथि एस पुल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: केरलम के शबरीमला मंदिर में कल शाम से मासिक पूजा एडवम शुरू हो गई है। मंदिर में दर्शन सुबह 5 बजे से किए जा सकते हैं। श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उपलब्ध है। उधमपुर जिले के शिव पार्वती मंदिर में आयोजित होने वाला ऐतिहासिक 3 दिवसीय वार्षिक मोंगरी मेला आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसे शिव पार्वती मेले के नाम से भी जाना जाता है।
2: मेले में मोंगरी, पंचैरी, उधमपुर और जम्मू कश्मीर के अन्य क्षेत्रों तथा बाहर से भी भारी संख्या में लोग सरदब्बड़ आते हैं। वह यहाँ कुदरती गुफाओं में विराजमान भगवान शिव, देवी पार्वती और अन्य देवी देवताओं को नमन करते हैं। इन गुफाओं में प्राकृतिक रूप से बना 9.5 फीट का शिवलिंग है। युवा सेवा और खेल विभाग के सहयोग से कबड्डी, रस्साकशी, पत्थर उठाना और अन्य मनोरंजक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं एन गुलशन रन।
0: महाराष्ट्र के सतारा में आज प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों और महाआवास अभियान के राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान लाभार्थियों के लिए निर्मित 5 लाख घरों का आवंटन किया जाएगा। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में आयोजित समारोह के हिस्से के रूप में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित आकाशवाणी केंद्र द्वारा एक वॉकथन का आयोजन किया गया। ये आयोजन आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों के सफर को यादगार बनाने के लिए किया जा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना 8 जून 1936 में हुई थी। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सिक्किम के 3 दिन के दौरे पर कल रात नामची जिला पहुंचे। आज वे प्रस्तावित नामची पर्यटन सर्किट पीएम डिवाइन के तहत भालिंडुगा में स्काईवॉक परियोजना और गंगटोक के आर्किडियम जैसी कई पर्यटन स्थलों और विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने केरलम में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। राज्य के तटवर्ती इलाकों में आज 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। खेलों में भारत की वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुआंग गांगू को हराया। प्रतिस्पर्धी वुशु को ताउलू और सांडा में 2 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी।
3: फरद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सवाल उठाए जाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति में मंत्री क्यों, तटस्थ हो तीसरा सदस्य। जनसत्ता के शब्द हैं ये, बहुमत की तानाशाही, चयन समिति में निष्पक्ष व्यक्ति क्यों नहीं। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित किया। अब दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब में भी SIR, दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है। दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए। सरकारी दफ्तरों का समय बदला, 2 दिन घर से काम, हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की खबर है। नव भारत टाइम्स ने CUET

0: guaranteed. And finally, the Tribune writes about 61-year-old Narinder Kaur, who scored 77% in the Punjab School Education Board Class 10 Open School Examination after she was encouraged by her sons. The newspaper writes, off studies for 45 years, Punjab woman scores 77%. And with that, it's back to you, Saira.
1: Thanks, Sarabjit. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Modi to embark on a six-day visit to UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy today. Prime Minister says BRICS under India's chairmanship will work together to build a more inclusive world order. Oil marketing companies hike petrol and diesel prices by 3 rupees per litre. Government caps duty-free gold imports at 100 kg under advance authorization scheme. ED arrests Kolkata Police DCP Shantanu Sinha Biswas for running an extortion syndicate. And in Wushu, Aparna Dahiya clinches gold in women's 52 kg category in Santa World Cup in Macau. That's all in Morning News. Have a nice day.
2: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं जगमोहन शर्मा। शिमला शहर में चल रहे स्वच्छता सर्वेक्षण के बीच सफाई कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों और वेतन बढ़ोतरी को लेकर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि वे लंबे समय से वेतन बढ़ोतरी व समान कानून लागू करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। वहीं उपायुक्त एवं जिला दंडाधिकारी अनुपम कश्यप ने सहब कर्मचारियों पर हड़ताल पर जाने पर एस्मा लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे। प्रदेश के 4 नगर निगमों सोलन, पालमपुर, मंडी व धर्मशाला सहित 25 नगर परिषदों व 22 नगर पंचायतों में 17 मई को वोट डाले जाएंगे। मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार नगर परिषद और नगर पंचायतों के मतों की गणना मतदान वाले दिन 17 मई को ही हो जाएगी, जबकि चारों नगर निगमों के मतों की गणना 31 मई को होगी। इन 51 शहरी निकायों में कुल 3,60,859 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय आह्वान का समर्थन करते हुए कहा है कि 140 करोड़ भारतीय प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं और राष्ट्रहित में हर आवश्यक त्याग व सहयोग के लिए तैयार हैं। एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की अपील पूरी तरह स्वैच्छिक, एहतियाती व दूरदर्शी सोच पर आधारित है और देश में किसी भी आवश्यक वस्तु की कोई कमी नहीं है। पूर्व मंत्री व विधायक विक्रम ठाकुर ने आरोप लगाते हुए कहा कि धर्मशाला में विकास कार्य ठप पड़े हैं और लोगों की समस्याओं को नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम क्षेत्र में लोगों पर लगातार टैक्स का बोझ बढ़ता जा रहा है और निगम की संपत्तियों पर कांग्रेस पार्षदों व वर्तमान मेयर द्वारा कब्जा किया गया है। विक्रम ठाकुर ने दावा किया कि इन चुनावों में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन और नए दौर के नाम पर जनता को गुमराह किया। उन्होंने कल नाहन में कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में विकास कार्य पूरी तरह ठप हैं। राज्य सरकार द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे एंटी चिट्टा अभियान के तहत पुलिस की निगरानी बढ़ाई गई है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। सरकार का एंटी चिट्टा मॉडल जहां अपराधियों पर नकेल कसने में कामयाब हो रहा है, वहीं अन्य राज्यों में भी इस मॉडल की चर्चा होने लगी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय ने इस बारे में हिमाचल प्रदेश से रिपोर्ट मांगी है। एफएम न्यूज हेडलाइंस में अभी बस इतना ही। नमस्कार।

0: युवा शर्मा और कुमारी सुमन की आवाज में अभी आपने ये लोकगीत सुना।
1: अगर युवा ही चुप रहा तो बदलाव कौन लाएगा?
2: अब वक्त है मोबाइल से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचने का।
1: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में हर युवा बनेगा बदलाव की ताकत। आपका एक वोट तय करेगा आपके शहर का आने वाला कल। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान जरूर करें।
2: युवा जागेगा, हिमाचल आगे बढ़ेगा। पहले मतदान, फिर बाकी काम। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: लोक संगीत कार्यक्रम सुन रहे हैं आप इस वक्त हमारे साथ FM शिमला पर। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला लोकगीत शेर सिंह जरियाल की आवाज में।

0: चंदा देवी के गाए इसी लोकगीत के साथ लोक संगीत कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
1: दादाजी, हमारा शहर और बेहतर कब बनेगा?
2: जब हर घर से एक वोट निकलेगा बेटा।
3: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में अपने शहर के भविष्य के लिए 100% मतदान का संकल्प ले। एक वोट, साफ शहर, बेहतर सड़क, पानी और विकास की नई उम्मीद। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने मतदान केंद्र जरूर जाएं। घर घर से निकलेगी आवाज, इस बार कोई नहीं छूटेगा। 100% मतदान, मजबूत हिमाचल की पहचान।
4: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: FM शिमला सुन रहे हैं आप 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज में ये बेहतरीन कव्वाली आप सुनेंगे वीर ज़ारा फिल्म से।

0: कुछ बढ़िया बढ़िया से प्यारे प्यारे से गीत हम जो है आपके लिए चुनकर लाए हैं फिल्म संगीत में। और कोई भी ऐसा दिन नहीं गुजरता जब हम गाने नहीं सुनते हैं। बिना म्यूज़िक के ज़िंदगी को इमेजिन करना भी काफ़ी मुश्किल होता है, और ऐसा कभी भी नहीं होता है कि हम कोई गीत सुने ना या कोई गीत गुनगुनाए ना। बिना गीत संगीत के तो हम अपनी लाइफ को इमेजिन तक नहीं कर सकते हैं। और ये बिल्कुल सही बात है कि गाना बजाना, हंसना, गुनगुनाना और ये जो चीज़ें हैं ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होती हैं, और हर किसी को अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों के लिए टाइम निकालना चाहिए। हालांकि हर कोई अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, बहुत सारे काम होते हैं जो हमें निपटाने होते हैं, लेकिन फिर भी ज़िंदगी जीने के लिए ये बेहद ज़रूरी होता है कि हम हंसी खुशी से जिएं, अपने शौक़ हम जिंदा रखें और अपनी ख्वाहिशों को कभी ना मरने दें। तो बस आप भी यूं ही हंसते मुस्कुराते रहिए हमारे साथ अपने चहेते एफएम शिमला पर, और बस यूं ही सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: कुछ लोग वोट की कीमत पैसों, शराब या लालच से लगाते हैं, लेकिन हिमाचल की जनता जानती है वोट बिकता नहीं, वोट भविष्य बनाता है। 17 मई को नगर निकाय चुनाव में ना किसी दबाव में आए, ना किसी प्रलोभन में। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने विवेक और अधिकार से मतदान करें।
2: स्वच्छ सोच, निष्पक्ष मतदान। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: ये वो गीत है जिसे एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि आपने अनगिनत बार सुना है, और जितनी बार भी इस गीत को सुनते हैं उतना ही अच्छा लगता है। उदित नारायण की जो मखमली आवाज है इस गीत में वो सीधा दिल में उतरती है। तो चलिए सुनवा रहे हैं आपको दिल से फिल्म का ये बहुत ही प्यारा सा गीत उदित नारायण के साथ। इस गीत में आप सुनेंगे महालक्ष्मी अय्यर की आवाज़।

साजन चले ससुराल फिल्म का ये गीत उदित नारायण की आवाज में आपने सुना। एफएम शिमला सुन रहे हैं आप हमारे साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। तो आइए अब आपको बता दें कि आकाशवाणी शिमला से आज कौन कौन से खास प्रोग्राम्स किस वक्त पर आप सुन सकते हैं। तो आपको हम बता दें कि अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 9:31 पर कार्यक्रम सुरबेला के तहत आज आप सुनेंगे पंडित भजन सपोरी का संतूर वादन राग नट भैरव पर आधारित। कुछ चुनिंदा फिल्मी गीतों के साथ लेकर आएंगे आपका पसंदीदा रिमझिम प्रोग्राम समय वही ठीक 10 बजे।

आकाशवाणी शिमला से 11 बजे आप सुनते हैं प्रादेशिक समाचार और 11:05 पर सुनिएगा लोक संगीत कार्यक्रम। 11:30 पर NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुन सकते हैं और 12:20 पर पेश किया जाएगा महिलाओं का खास कार्यक्रम महिला सम्मेलन। इसके बाद 1:10 पर कार्यक्रम सैनिकों के लिए आप सुनेंगे, जिसमें हम आपको सुनवाएंगे कुछ बेहतरीन फिल्मी गीत। 2 बजे सुनिएगा कार्यक्रम सुनहरी किरणें और जानिएगा गर्मियों में पशुओं की देखभाल के बारे में। 2:30 पर आप सुनेंगे स्पीति कार्यक्रम।

3:05 पर सामयिक चर्चा आप सुनेंगे और शाम 4:20 से लेकर शाम 7:05 के दरमियान विभिन्न हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम आप सुनेंगे हमारे साथ आकाशवाणी शिमला पर। शाम 7:10 पर कृषि जगत कार्यक्रम आप सुनेंगे और जानेंगे प्राकृतिक खेती में फसल सुरक्षा हेतु उपाय के बारे में। रात 8:00 आकाशवाणी शिमला से आप सुनेंगे आकाशवाणी के 90 वर्ष पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की पूर्व निदेशक आरती गुप्ता से भेंटवार्ता, भेंट करेंगी सपना ठाकुर। 8:15 पर फिल्म संगीत सुनिएगा और 9:15 पर आपका पसंदीदा गुलदस्ता कार्यक्रम आपके लिए हम लेकर आएंगे चंद दिलकश गजलों के साथ। रात 10:00 आप सुनेंगे खेल जगत कार्यक्रम और 10:30 पर सुनना ना भूलिएगा सुरबहार पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम।

0: तो ये थी जानकारी आकाशवाणी शिमला से आज पेश किए जाने वाले कुछ खास कार्यक्रमों के बारे में। आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। कृपया हमारी अगली
1: आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आप आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ एफएम शिमला से भी सुन सकेंगे। प्रादेशिक समाचार डीटीएच और न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: अगर युवा ही चुप रहा तो बदलाव कौन लाएगा?
1: अब वक्त है मोबाइल से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचने का।
0: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में हर युवा बनेगा बदलाव की ताकत। आपका एक वोट तय करेगा आपके शहर का आने वाला कल। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान जरूर करें।
1: युवा जागेगा, हिमाचल आगे बढ़ेगा। पहले मतदान, फिर बाकी काम। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। बाप प्रियंका ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में 17 मई को होने वाले नगर निगम चुनावों को लेकर प्रचार अभियान चरम पर। कांग्रेस व भाजपा अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार में जुटे। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए भरे गए नामांकन पत्रों की वापस लेने का आज अंतिम दिन। आज ही उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह भी किए जाएंगे आवंटित। केंद्र सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा की तय। तेल कंपनियों ने पेट्रोल व डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। और शिमला शहर में सफाई कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की दी चेतावनी। जिला प्रशासन ने हड़ताल पर जाने पर एस्मा लागू करने के दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 17 मई को होने वाले नगर निगम चुनावों को लेकर प्रचार अभियान चरम पर है। नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा व कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल धर्मशाला में कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा जिला को पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है और यहां अधिक संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है।
1: धर्मशाला नगर निगम का चुनाव हो रहा है, उस संदर्भ में माननीय रजनी पाटिल जी और हम घोषणा पत्र को जारी करने के लिए आज आपके बीच में आए हैं। घोषणा पत्र के अलावा जो शहर में विकास हो रहा है और जो शहर में विकास की नई प्रक्रिया जग्गे जी और जो पार्षद है उनके नेतृत्व में हमने शुरू की है, आने वाले समय में आप देखेंगे कि पूरा कांगड़ा जिला, जिसको हमने टूरिज्म कैपिटल घोषित किया था, यहाँ अधिक मात्रा में पर्यटक आए। कैसे आएँ, इस दृष्टिकोण से हमारी योजनाएं ने यहाँ स्वरूप ले लिया है और कुछ समय में ये जल्दी ही शुरुआत इसकी होने जा रही है। मुख्य मुद्दा है चुनाव। आज चुनाव नगर निगम के हो रहे हैं। नगर निगम पर हमारे सभी प्रत्याशी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव चिन्ह पर ये प्रत्याशी चुनाव हो रहे हैं, लेकिन चुनाव आगे तो अभी चुनाव के समय उस कार्य को शुरू नहीं किया जा सकता। 17 के 17 वार्डों के लिए यानी कि 17 करोड़ रुपये स्वीकृत पहले हो चुका है और आने वाले समय में उस पर कार्य शुरू करेंगे। उसकी घोषणा हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आचार संहिता भी लगी हुई।
0: इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर से भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार से निराश हो चुकी है और आने वाले चुनावों में इसका असर साफ दिखाई देगा। अनुराग ठाकुर ने विश्वास जताया कि आगामी नगर निगम, नगर परिषद और पंचायत चुनावों में भाजपा रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करेगी।
2: ये चुनाव कांग्रेस के भ्रष्टाचार, निकम्मेपन, झूठी गारंटियां, उसके खिलाफ जनता के मन में जो रोष है वो निगम के चुनावों में दिखेगा। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो, म्युनिसिपल काउंसिल हो या पंचायती राज के चुनाव, इन सब में एक गुस्सा जो जनता के मन में है वो फूट कर बाहर आएगा। चार्जशीट आज हमने जारी की है जहां कांग्रेस के घोटालों से लेकर उनके दिवालियापन के बारे में बताया गया है। हर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन काउंसिल, नगर परिषद के चुनाव हम सारे जीतने वाले हैं और बाकी जगह भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी।
0: पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए भरे गए नामांकन पत्रों का आज नाम वापस लेने का अंतिम दिन है। आज ही उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित किए जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच में 742 नामांकन रद्द किए गए हैं। अब 85,462 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। प्रदेश की 3,754 पंचायतों में 31,182 पदों के लिए 26, 28 और 30 मई को 3 चरणों में मतदान होगा। मंडी नगर निगम चुनाव प्रभारी एवं लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा को विकास से कोई सरोकार नहीं है और उसका एकमात्र उद्देश्य सत्ता हासिल करना है। मंडी शहर के विभिन्न वार्डों में चुनाव

0: प्रचार के दौरान जनसभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ने पिछले 5 वर्षों तक नगर निगम में सत्ता में रहने के बावजूद शहर के विकास के लिए कोई ठोस कार्य नहीं किया। वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता का दुरुपयोग कर जनता और जनप्रतिनिधियों को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए कहा जनता कांग्रेस को नगर निगम चुनाव में इसका करारा जवाब देगी। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.70 रुपये प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत 90.67 रुपये प्रति लीटर हो गई है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला एक्सेंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। यह योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देते हैं। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा कि इस योजना के तहत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगवा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है ताकि उनकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय को हर महीने इसकी रिपोर्ट निदेशालय को सौंपनी होगी। इससे पहले इस योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर कोई सीमा नहीं थी। चंबा जिला के ऐतिहासिक तथा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मिंजर मेले की तैयारियां शुरू हो गई है। इस बार यह मेला 26 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। मेले के सफल आयोजन को लेकर बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त मुकेश रिपसवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मेले की तैयारियों से संबंधित अपने अपने दायित्वों का ईमानदारी व गंभीरता से निभाए। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे चंबा जिला संवाददाता।
1: मिंजर मेला जिला चंबा की प्राचीन समृद्ध संस्कृति तथा समाज के विभिन्न वर्गों के आपसी मेल मिलाप व आपसी भाईचारे का प्रतीक है। इस वर्ष भी ये मेला चंबा के ऐतिहासिक चौगान नंबर 1 में धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। मेले का मुख्य आकर्षण सांस्कृतिक कार्यक्रम रहते हैं और वर्ष भर इस मेले का जिला के लोगों को इंतजार रहता है। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर।
0: शिमला शहर में चल रहे स्वच्छता सर्वेक्षण के बीच सफाई कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों और वेतन बढ़ोतरी को लेकर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि वे लंबे समय से वेतन बढ़ोतरी व समान कानून लागू करने की मांग कर रहे हैं लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। वहीं उपायुक्त एवं जिला दंडाधिकारी अनुपम कश्यप ने सहब कर्मचारियों पर हड़ताल पर जाने पर एस्मा लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे। धर्मशाला के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में कल आईपीएल मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब ने 8 विकेट पर 200 रन बनाए। 201 रन का लक्ष्य मुंबई ने 6 विकेट और 1 गेंद शेष रहते हुए हासिल कर लिया। तिलक वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। धर्मशाला में आईपीएल सीजन का यह दूसरा मुकाबला था। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला के शब्द है फूड लाइसेंस पर बनाई नशीली दवाएं कंपनी मालिक गिरफ्तार। पंचायत चुनाव में शिक्षकों की ड्यूटी लगाए जाने से प्रभावित होगी पढ़ाई। स्कूलों में 1 माह देरी से शुरू होगा सिलेबस दैनिक भास्कर की एक खबर है। हिमाचल दस्तक ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हवाले से लिखा है धर्मशाला को पर्यटन व खेल हब के रूप में विकसित करना प्राथमिकता। दैनिक जागरण के शब्द है सुक्खू बोले पीएम की अपील से पहले ही हिमाचल कर रहा बचत। उच्च अधिकारी से सीधे पत्र व्यवहार करने वाले अधिकारी व कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई पंजाब केसरी की एक खबर है। नगर निकाय चुनाव का रण चरम पर आज थमेगा प्रचार शीर्षक से दैनिक सवेरा टाइम्स ने लिखा है 4 नगर निगमों पर टिकी पूरे हिमाचल की नज़र। मौसम से जुड़ी खबर को हिमाचल दस्तक ने शीर्षक दिया है प्रदेश में आज और कल बारिश का येलो अलर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 17 मई को होने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर प्रचार अभियान चरम पर। कांग्रेस व भाजपा अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार में जुटे। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए भरे गए नामांकन पत्रों को वापस लेने का आज अंतिम दिन। आज ही उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह भी किए जाएंगे आवंटित। केंद्र सरकार ने

0: अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा की तय। तेल कंपनियों ने पेट्रोल व डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। और शिमला शहर में स्थायी कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की दी चेतावनी। जिला प्रशासन ने हड़ताल पर जाने पर ASMA लागू करने के दिए निर्देश। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।
2: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 MHz FM शिमला।
3: हर खुशी अब लगे
2: मस्त, चुनो मस्त सुनो, जानकारी और मनोरंजन के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए FM।

0: आप सुन रहे हैं FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। जी हाँ, 9:30 हो गए हैं और FM शिमला पर यह वक्त है प्रोग्राम कुदरत के रंग का। आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में आपको हम लेकर जाते हैं किसी खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस पर, जहाँ पर जाना हर किसी का सपना हो सकता है। और हिमाचल में तो जनाब खूबसूरती की कोई कमी ही नहीं है। और हमारा खूबसूरत हिमाचल जो है वो न सिर्फ पहाड़ों, झीलों या झरनों की वजह से फेमस है, बल्कि यहाँ पर कई ऐसी बड़ी और नामचीन नदियाँ भी हैं जो कि हिमाचल के गौरव और सौंदर्य को दोगुना बढ़ा देती हैं। ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्तों के बीच में से लचीली कमर लहराते हुए जब ये नदियाँ निकलती हैं तो वो कुदरती नज़ारा जो है शब्दों की पकड़ से परे हो जाता है और हर किसी के मन में हमेशा हमेशा के लिए बस जाता है। तो अगर आप भी इस कुदरती नज़ारे को निहारना चाहते हैं अपनी आँखों से, तो रहिए हमारे साथ हमारे इस प्रोग्राम में, क्योंकि आज अपने इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे हिमाचल की कुछ फेमस नदियों के बारे में। जी हाँ, इस वक्त आप हैं अपने चहेते FM शिमला के साथ और सुन रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम कुदरत के रंग। और मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त रेडियो एंकर वीना नरवाल।
1: जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीने में भर लूंगा।
2: ये नदियाँ जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होठों को भिगो लूंगी। समझूंगी तुम्हारे होठों को छू लिया।

जी हाँ, ये नदियाँ हैं जनाब, और कोई सरहदें इन्हें नहीं रोक सकती हैं। इनका काम होता है निरंतर चलते रहना, बस चलते ही चले जाना। और इन नदियों को देखकर हमें भी ये प्रेरणा मिलती है कि ज़िंदगी में हमेशा चलते रहना चाहिए। आखिरकार चलते रहना ही ज़िंदगी का दूसरा नाम है। हिमाचल में यूं तो खूबसूरत जगहों की कमी नहीं है, और यहाँ की खूबसूरत नदियाँ जो हैं यहाँ की खूबसूरती में चार और चांद लगा देती हैं। ज़रा सोचिए, इमेजिन कीजिए ये नज़ारा कि सड़क के दोनों ओर बौद्ध धर्म के लाल पीले हरे नीले कपड़ों में लिखे बुद्ध वाक्य, चलती हुई ठंडी हवाएं, उसमें ठिठुरते हुए आप, और सड़क के ठीक सामने नदी। बताइए कैसा होगा ये नज़ारा जनाब। ये नज़ारा जो है विदेश का नहीं बल्कि हिंदुस्तान के हिमाचल का है। अपने हरे सफ़ेद पहाड़ों की वजह से हमारा जो हिमाचल है वो पहले ही गुलजार था। नदियों ने इस पर चार चांद और लगा दिए। तो आइए बात करते हैं इन नदियों के बारे में। ब्यास नदी की बात करें तो इस नदी को हिमाचल की लाइफलाइन भी कहा जाता है, और पुराणों के अनुसार इस नदी को महर्षि वेदव्यास जी व्यास कुंड से निकालकर धरती पर लाए थे। हिमालय से निकलने वाली ये नदी हिमाचल में 470 किलोमीटर का लंबा सफ़र तय करती है और आखिर में पंजाब में सतलुज नदी से मिल जाती है। आप अगर चाहें तो हिमाचल के कुल्लू मंडी और कांगड़ा ज़िले में इसके साथ अच्छे से खेलने का प्लान बना सकते हैं, और इसका सबसे बेहतरीन नज़ारा आपको देखने मिलेगा मनाली जाकर। बात करें चेनाब नदी की, तो चेनाब नदी वैसे तो है जी कश्मीर की पहचान, और ये नदी सिर्फ भारत ही नहीं पाकिस्तान में भी बहती है।

हिमालय के लाहौल और स्पीति में चिनाब नदी बहती है और सर्दी के मौसम में ठेठ घुमक्कड़ लोग जो होते हैं ना, वो इस नदी के चक्कर मारने यहाँ पर जरूर आते हैं। कभी इस नदी को चंद्रभागा भी कहते थे। और आप अगर चाहें तो इस नदी को देखने के लिए और इसका आनंद लेने के लिए गर्मियों के मौसम में प्लान बना सकते हैं। बात करें यमुना नदी की, तो यमुना नदी को भारत की सबसे महान नदियों की श्रेणी में रखा जाता है और गंगा के बाद शायद सबसे ज्यादा इस नदी का नाम ही सुनने में आता है। अपने बड़े से रास्ते में ये नदी जो है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड और दिल्ली से होकर भी गुजरती है। और हिमाचल में खुद इसमें तौंस, चंबल, सिंध, बेतवा और केन नदी का पानी आकर मिलता है। और इस नदी का सबसे बेहतरीन नजारा आपको देखने मिलेगा शिमला आकर। और भी नदियों के बारे में जिक्र करेंगे अपने इस प्रोग्राम में, लेकिन चलिए एक बढ़िया सा गीत आपको सुनवाते हैं।

0: कुछ लोग वोट की कीमत पैसों, शराब या लालच से लगाते हैं, लेकिन हिमाचल की जनता जानती है, वोट बिकता नहीं, वोट भविष्य बनाता है। 17 मई को नगर निकाय चुनाव में ना किसी दबाव में आए, ना किसी प्रलोभन में, सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने विवेक और अधिकार से मतदान करें।
1: स्वच्छ सोच, निष्पक्ष मतदान। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: जी हाँ, हिमाचल की कुछ खूबसूरत नदियों की बातें आज हो रही हैं प्रोग्राम कुदरत के रंग में। तो चलिए बात करते हैं सतलुज नदी के बारे में। जी हाँ, हिमाचल की कुछ बड़ी और ख़ास नदियों में सतलुज का भी नाम आता है और ये नदी भी चेनाब की तरह भारत और पाकिस्तान दोनों से होकर गुजरती है। सिंधु नदी की सहायक इस नदी को हिमाचल के लोगों का खूब प्यार मिलता है और अगर हिमाचल की सबसे साफ नदियों की लिस्ट बनेगी, गौर कीजिएगा, तो इसमें सतलुज का नाम सबसे पहले आएगा। इस नदी का सबसे बढ़िया नज़ारा अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जाइए कुल्लू, मंडी, बिलासपुर और किन्नौर। रावी नदी की बात करें तो पुराणों में इस नदी को इरावती नदी के नाम से जानते हैं, वहीं ग्रीक लोग जो हैं वो इसे हाइड्रॉट्स बुलाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि किसी जमाने में 10 राजाओं की लड़ाई भी सिर्फ इस नदी पर अपना अधिकार जताने के लिए हुई थी। इस नदी को भले ही किसी खास नदी होने का खिताब हासिल नहीं हुआ हो, लेकिन घूमने फिरने के शौकीन लोगों के लिए ये जो जगह है नया स्वर्ग दिखाती है। तो आप भी अगर हिमाचल आए तो हिमाचल की खूबसूरत नदियों में से इस नदी से मिलने भी आप जरूर जाइए। इस नदी का सबसे खूबसूरत नज़ारा अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आप देख सकते हैं डलहौजी, पीर पंजाल और धौलाधार में। इसके बाद भारत और तिब्बत की सीमा से लगी बासपा घाटी के पहाड़ों से उदय होता है बासपा नदी का, भारत की वो नदी जिसके आसपास के नज़ारे हमेशा ही लाजवाब मिलते हैं और ग्लेशियरों की वजह से इस नदी का पानी कभी खत्म नहीं होता। बासपा की पहाड़ियों से होती हुई ये नदी जो है करचम से होती हुई सतलुज नदी से जा मिलती है और अपने छोटे से सफर में ये नदी हिमाचल के नज़ारों को और भी खूबसूरत करती चली जाती है। तो जनाब, अगर आप हिमाचल घूमने आ रहे हैं तो फोटोग्राफी वाला अपना कैमरा ज़रूर साथ लेकर आइए। देवदार और ओक के जंगल जो यहाँ पर हैं वो आपको अपने सोशल मीडिया अकाउंट के लिए सबसे शानदार तस्वीरें देंगे। और इस नदी का सबसे बेहतरीन नज़ारा देखने के लिए आपको जाना होगा सांगला घाटी। तो हिमाचल की ये जो खूबसूरत नदियां हैं हिमाचल को और भी खूबसूरत बनाती हैं। जब भी आप हिमाचल आएं तो इन नदियों को देखने के लिए आप ज़रूर ज़रूर जाइएगा, ये हम आपसे कहते हैं। और अब आप

0: तो लिसनर्स, प्रोग्राम कुदरत के रंग में आज बस इतना ही। एफएम शिमला सुन रहे हैं आप 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए अब पेश है एफएम न्यूज हेडलाइन।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं जगमोहन शर्मा। प्रदेश में 17 मई को होने वाले नगर निगम चुनावों को लेकर प्रचार अभियान चरम पर है। नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा व कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल धर्मशाला में कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया है कि सत्ता का दुरुपयोग कर जनता और जनप्रतिनिधियों को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। मंडी में प्रचार के दौरान उन्होंने भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि जनता कांग्रेस को नगर निगम चुनाव में इसका करारा जवाब देगी। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए भरे गए नामांकन पत्रों का नाम वापस लेने का आज अंतिम दिन है। नामांकन पत्रों की जांच में 742 नामांकन पत्र रद्द किए गए हैं। अब 85,462 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। प्रदेश की 3,754 पंचायतों में 31,182 पदों के लिए 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में मतदान होंगे। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपये प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत 90.67 रुपये प्रति लीटर हो गई है। चंबा जिला के ऐतिहासिक तथा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मिंजर मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बार ये मेला 26 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। मेले के सफल आयोजन को लेकर बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मेले की तैयारियों से संबंधित अपने अपने दायित्वों का ईमानदारी व गंभीरता से निभाएं। शिमला शहर में चल रहे स्वच्छता सर्वेक्षण के बीच सफाई कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों और वेतन बढ़ोतरी को लेकर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। इस मुद्दे पर उपायुक्त एवं जिला दंडाधिकारी अनुपम कश्यप ने सहम कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने पर एस्मा लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। एफएम न्यूज हेडलाइंस में अभी बस इतना ही। नमस्कार।

FM शिमला पर आपको एंटरटेन करने के लिए हमारे पास है एक से बढ़कर एक प्रोग्राम्स। तो अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे संगम प्रोग्राम और 11:05 पर पुराने फिल्मों से प्रोग्राम सुनना बिल्कुल ना भूलें। और FM शिमला पर आपके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स हम लेकर आते हैं, तो आपने कहीं नहीं जाना है। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रहिए हमारे साथ यूं ही शिमला FM पर।

10 बज चुके हैं जी, और आपके अपने चहेते एफएम शिमला पर रेडियो एंकर वीना नरवाल है आपके साथ। वक्त है प्रोग्राम संगम का, तो कुछ बढ़िया बढ़िया से सॉन्ग्स हम जो हैं खास तौर पर सिलेक्ट करके आपके लिए लाए हैं। तो आपने अभी से लेकर 11 बजे तक बिल्कुल हमारे साथ रहना है, कहीं भी नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बेहतर और बेहतरीन गीत हम प्ले करने वाले हैं। कुछ डुएट सॉन्ग्स जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए और आज भी उन सॉन्ग्स को सुनकर हम जो हैं अपने आप को एंटरटेन करते हैं और सुकून पाते हैं, वो सॉन्ग्स आप सुनेंगे हमारे साथ अभी से लेकर 11 बजे तक। तो चलिए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाज में ये प्यारा सा गीत।

के खिलाड़ी फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं। आवाज एक बार फिर मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की है। तुमसे मिलकर मैंने जाना मोहब्बत क्यों जरूरी है, क्यों मोहब्बत के बिना मेरी ये जिंदगी कुछ अधूरी है।

0: दादाजी, हमारा शहर और बेहतर कब बनेगा?
1: जब हर घर से एक वोट निकलेगा बेटा।
2: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में अपने शहर के भविष्य के लिए 100% मतदान का संकल्प ले। एक वोट, साफ शहर, बेहतर सड़क, पानी और विकास की नई उम्मीद। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने मतदान केंद्र जरूर जाएं। घर घर से निकलेगी आवाज, इस बार कोई नहीं छूटेगा। 100% मतदान, मजबूत हिमाचल की पहचान।
3: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: तुझसे न जाने क्यों मोहब्बत है इतनी, के सजदे में सिर जब भी झुकता है तो दुआ में ये दिल बस तुझी को मांगता है।

0: कुछ लोग वोट की कीमत पैसों, शराब या लालच से लगाते हैं, लेकिन हिमाचल की जनता जानती है, वोट बिकता नहीं, वोट भविष्य बनाता है। 17 मई को नगर निकाय चुनाव में ना किसी दबाव में आए, ना किसी प्रलोभन में। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने विवेक और अधिकार से मतदान करें।
1: स्वच्छ सोच, निष्पक्ष मतदान। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: अगर युवा ही चुप रहा तो बदलाव कौन लाएगा?
1: अब वक्त है मोबाइल से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचने का।
0: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में हर युवा बनेगा बदलाव की ताकत। आपका एक वोट तय करेगा आपके शहर का आने वाला कल। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान जरूर करें।
1: युवा जागेगा, हिमाचल आगे बढ़ेगा। पहले मतदान, फिर बाकी काम। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस फिल्म का ये एवरग्रीन सॉन्ग आपने सुना लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाज़ों में, और अब आपको हम सुनवाने जा रहे हैं कुमार सानू के साथ अलका याग्निक की आवाज़ इस गीत के साथ। विजयपथ फिल्म का ये गीत लीजिए, एंजॉय कीजिए।

0: दादाजी, हमारा शहर और बेहतर कब बनेगा?
1: जब हर घर से एक वोट निकलेगा बेटा।
2: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में अपने शहर के भविष्य के लिए 100% मतदान का संकल्प ले। एक वोट, साफ शहर, बेहतर सड़क, पानी और विकास की नई उम्मीद। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने मतदान केंद्र जरूर जाएं। घर घर से निकलेगी आवाज इस बार, कोई नहीं।

0: कुछ लोग वोट की कीमत पैसों, शराब या लालच से लगाते हैं, लेकिन हिमाचल की जनता जानती है, वोट बिकता नहीं, वोट भविष्य बनाता है। 17 मई को नगर निकाय चुनाव में ना किसी दबाव में आए, ना किसी प्रलोभन में, सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने विवेक और अधिकार से मतदान करें।
1: स्वच्छ सोच, निष्पक्ष मतदान। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: तो लिसनर्स, कुछ लवली सुपर हिट डुएट सॉन्ग्स आपने एंजॉय किए आज के हमारे इस प्रोग्राम में, और ये वो लव सॉन्ग्स हैं जो हमेशा ही दिल को सुकून देते हैं। तो चलिए फिर आज के इस सफ़र का आखिरी गीत आपको अब हम सुनवाने जा रहे हैं आंदोलन फिल्म से। आवाज़ें कुमार सानू और अलका याग्निक की हैं।

तो लिसनर्स, अब वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का। जल्द ही आपसे फिर होगी मुलाकात। इसी वादे के साथ आज के इस सफर से विदा लेने की अपनी दोस्त रेडियो एंकर वीना नरवाल को दीजिए इजाजत, और आप यूं ही सुनते रहिए एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: 11 बजने को हैं, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। मीडियम वेव 387.6 मीटर एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी रिले करेंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रियंका ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में 17 मई को होने वाले नगर निगम चुनावों को लेकर प्रचार अभियान चरम पर है। नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा व कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल धर्मशाला में कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा जिला को पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है और यहां अधिक संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है।
2: धर्मशाला नगर निगम का चुनाव हो रहा है, उस संदर्भ में माननीय रजनी पाटिल जी और हम घोषणा पत्र को जारी करने के लिए आज आपके बीच में आए हैं। घोषणा पत्र के अलावा जो शहर में विकास हो रहा है और जो शहर में विकास की नई प्रक्रिया जग्गे जी और जो पार्षद है उनके नेतृत्व में हमने शुरू की है, आने वाले समय में आप देखेंगे कि पूरा कांगड़ा जिला, जिसको हमने टूरिज्म कैपिटल घोषित किया था, यहाँ अधिक मात्रा में पर्यटक आए कैसे आएँ, इस दृष्टिकोण से हमारी योजनाएं ने यह स्वरूप ले लिया है और कुछ समय में ये जल्दी ही शुरुआत इसकी होने जा रही है। मुख्य मुद्दा है चुनाव। आज चुनाव नगर निगम के हो रहे हैं, नगर निगम पर हमारे सभी प्रत्याशी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव चिन्ह पर ये प्रत्याशी चुनाव हो रहे हैं, लेकिन चुनाव आगे तो अभी चुनाव के समय उस कार्य को शुरू नहीं किया जा सकता। 17 के 17 वार्डों के लिए यानी कि 17 करोड़ रुपये स्वीकृत पहले हो चुका है और आने वाले समय में उस पर कार्य शुरू करेंगे। उसकी घोषणा हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आचार संहिता भी लगी हुई।
1: इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर से भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार से निराश हो चुकी है और आने वाले चुनावों में इसका असर साफ दिखाई देगा। अनुराग ठाकुर ने विश्वास जताया कि आगामी नगर निगम, नगर परिषद और पंचायत चुनावों में भाजपा रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करेगी।
3: ये चुनाव कांग्रेस के भ्रष्टाचार, निकम्मेपन, झूठी गारंटियां, उसके खिलाफ जनता के मन में जो रोष है वो निगम के चुनावों में दिखेगा। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो, म्युनिसिपल काउंसिल हो या पंचायती राज के चुनाव, इन सब में एक गुस्सा जो जनता के मन में है वो फूट कर बाहर आएगा। चार्जशीट आज हमने जारी की है जहां कांग्रेस के घोटालों से लेकर उनके दिवालियापन के बारे में बताया गया है। हर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन काउंसिल, नगर परिषद के चुनाव हम सारे जीतने वाले हैं और बाकी जगह भी भारत

0: जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीते।
1: प्रदेश में नगर निगम चुनावों के लिए चुनाव प्रचार आज थम जाएगा। धर्मशाला, सोलन, मंडी और पालमपुर नगर निगमों सहित 25 नगर परिषदों व 22 नगर पंचायतों में 17 मई को मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार नगर परिषद और नगर पंचायतों के मतों की गणना मतदान वाले दिन 17 मई को ही की जाएगी, जबकि चारों नगर निगमों के मतों की गणना 31 मई को होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से करवाने के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए भरे गए नामांकन पत्रों का आज नाम वापस लेने का अंतिम दिन है। उम्मीदवार दोपहर 3 बजे तक नाम वापस ले सकते हैं। निर्वाचन आयोग की ओर से चुनावी मैदान में शामिल उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी की जाएगी। इसके बाद आज ही उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार नामांकन वापस लेने के कल पहले दिन 436 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस लिए। प्रदेश की 3754 पंचायतों में 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में मतदान होगा। मंडी नगर निगम चुनाव प्रभारी एवं लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा को विकास से कोई सरोकार नहीं है और इसका एकमात्र उद्देश्य सत्ता हासिल करना है। मंडी शहर के विभिन्न वार्डों में चुनाव प्रचार के दौरान जनसभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ने पिछले 5 वर्षों तक नगर निगम में सत्ता में रहने के बावजूद शहर के विकास के लिए कोई ठोस कार्य नहीं किया। वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि सत्ता का दुरुपयोग कर जनता और जनप्रतिनिधियों को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि जनता कांग्रेस को नगर निगम चुनाव में इसका करारा जवाब देगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल एनटीए की आधिकारिक चैनलों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। गौरतलब है कि 3 मई को आयोजित हुई परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई थी और सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। आगामी नेट परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। शिमला शहर में चल रहे स्वच्छता सर्वेक्षण के बीच सफाई कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांग और वेतन बढ़ोतरी को लेकर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि वे लंबे समय से वेतन बढ़ोतरी व समान कानून लागू करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। वहीं उपायुक्त एवं जिला दंडाधिकारी अनुपम कश्यप ने सहब कर्मचारियों पर हड़ताल पर जाने पर एस्मा लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।

0: तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। वहीं उपायुक्त एवं जिला दंडाधिकारी अनुपम कश्यप ने सहब कर्मचारियों पर हड़ताल पर जाने पर एस्मा लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03 बजे। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के अलावा FM शिमला पर भी प्रसारित किए गए। ये आकाशवाणी शिमला है, हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।
2: सुरीला सफर संगीत का साथ हो मनमीत का, घर आंगन में महके जो क्या कहना उस प्रीत का।

सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला। मस्त चुनो, मस्त सुनो, जानकारी और मनोरंजन के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी एफएम शिमला। सुबह के 11:07 हो चुके हैं। हम हाजिर है प्रोग्राम पुरानी फिल्मों से को लेकर। नमस्कार दोस्तों, सुबह की इस प्यारी बेला में आप सबका स्वागत है। आज का ये सुरमई सफ़र आप तय करेंगे शैलजा चौहान के साथ। दोस्तों, आपको ले चलेंगे उस महफिल में जहां हर धुन अपने सास सुनहरे दौर की खुशबू लेकर आती है। तो तैयार हो जाइए पुरानी फिल्मी गीतों के उन अनमोल लगभों के लिए जो आज भी दिलों पर राज करते हैं। पुराने गीतों की बात ही कुछ और होती है दोस्तों। हर शब्द में एहसास, हर धुन में अपनापन और हर आवाज़ में एक अलग ही जादू। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में, फिल्म पेंगिस्ट। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, एस डी बर्मन का संगीत।

दोस्तों, पुराने गीतों की यही तो खासियत होती है कि जैसे ही धुन कानों में उतरती है, यादों का कारवां साथ चल पड़ता है। आइए इस खूबसूरत सफर को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं अगला मधुर गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। फिल्म है असली नकली, हसरत जयपुरी के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: दोस्तों, प्रोग्राम के बाकी के गीत आपको सुनवाएंगे इस ब्रेक के बाद।
1: अगर युवा ही चुप रहा तो बदलाव कौन लाएगा?
2: अब वक्त है मोबाइल से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचने का।
1: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में हर युवा बनेगा बदलाव की ताकत। आपका एक वोट तय करेगा आपके शहर का आने वाला कल। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान जरूर करें।
2: युवा जागेगा, हिमाचल आगे बढ़ेगा। पहले मतदान, फिर बाकी काम। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: आकाशवाणी एफएम शिमला से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम पुरानी फिल्मों से। दोस्तों, पुराने गीत सिर्फ गीत नहीं होते, ये वो आवाज़ें हैं जिनमें बीता हुआ कल सांस लेता है। अब बढ़ते हैं अगले खूबसूरत गीत की ओर। आपको सुनवाते हैं किस्मत फिल्म का ये गीत। आवाज़ है महेंद्र कपूर की, एसएच बिहारी के गीत है, ओपी नैयर का संगीत।

0: बने रहिए आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ, आपसे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
1: दादाजी, हमारा शहर और बेहतर कब बनेगा?
2: जब हर घर से एक वोट निकलेगा बेटा।
3: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में अपने शहर के भविष्य के लिए 100% मतदान का संकल्प ले। एक वोट, साफ शहर, बेहतर सड़क, पानी और विकास की नई उम्मीद। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने मतदान केंद्र जरूर जाएं। घर घर से निकलेगी आवाज, इस बार कोई नहीं छूटेगा। 100% मतदान, मजबूत हिमाचल की पहचान।
4: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। दोस्तों, रेडियो और पुराने गीतों का रिश्ता कितना

खास है। बरसों बीत जाते हैं लेकिन ये धुनें कभी पुरानी नहीं पड़ती। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं एक और बेहद खूबसूरत गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, फिल्म दिल तेरा दीवाना।

दोस्तों, कुछ गीत ऐसे होते हैं जो सुनते ही दिल को सुकून दे जाते हैं। पुराने दौर की यही सादगी और मिठास आज भी हर दिल को पसंद आती है। अब सुनते हैं अगला शानदार गीत।

0: दोस्तों, उम्मीद है पुरानी फिल्मों से का ये सफ़र आपको पसंद आया होगा। कार्यक्रम में आज बस इतना ही। आप यूं ही बने रहिए आकाशवाणी FM शिमला के साथ। आकाशवाणी FM शिमला आप सुन रहे हैं 103.7 MHz पर। 11:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं पहाड़ी संगीत, पर उससे पहले ये संदेश।
1: कुछ लोग वोट की कीमत पैसों, शराब या लालच से लगाते हैं, लेकिन हिमाचल की जनता जानती है वोट बिकता नहीं, वोट भविष्य बनाता है। 17 मई को नगर निकाय चुनाव में ना किसी दबाव में।

0: आए ना किसी प्रलोभन में। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने विवेक और अधिकार से मतदान करें।
1: स्वच्छ सोच, निष्पक्ष मतदान। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: आप है आकाशवाणी FM शिमला के साथ 103.7 MHz पर। आइए अब आपको सुनवाते हैं पहाड़ी संगीत। श्रोताओ, हिमालय की वादियों से उठती मधुर धुनों और लोक संगीत की मीठी खुशबू के साथ स्वागत है आपका कार्यक्रम पहाड़ी संगीत में। आज की इस सुरीली प्रस्तुति में सुनेंगे पहाड़ों की मिट्टी से जुड़े खूबसूरत लोकगीत और संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं इस लोकगीत के साथ, जिसे गाया है रोशनी देवी और हेंतराम कैंथा ने।

0: श्रोताओं, बाकी के लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे इस अंतराल के बाद।
1: अगर युवा ही चुप रहा तो बदलाव कौन लाएगा?
2: अब वक्त है मोबाइल से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचने का।
1: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में हर युवा बनेगा बदलाव की ताकत। आपका एक वोट तय करेगा आपके शहर का आने वाला कल। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान जरूर करें।
2: युवा जागेगा, हिमाचल आगे बढ़ेगा। पहले मतदान, फिर बाकी काम। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: आकाशवाणी FM शिमला से इस वक्त आप सुन रहे हैं पहाड़ी संगीत। श्रोताओं, हर धुन अपने साथ मिट्टी की खुशबू साथ लेकर आती है, तो आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत पहाड़ी लोकगीत अंकुश संदल की आवाज़ में।

0: कार्यक्रम के बाकी के लोकगीत इस अंतराल के बाद।
1: दादाजी, हमारा शहर और बेहतर कब बनेगा?
2: जब हर घर से एक वोट निकलेगा बेटा।
3: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में अपने शहर के भविष्य के लिए 100% मतदान का संकल्प ले। एक वोट, साफ शहर, बेहतर सड़क, पानी और विकास की नई उम्मीद। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने मतदान केंद्र जरूर जाएं। घर घर से निकलेगी आवाज, इस बार कोई नहीं छूटेगा। 100% मतदान, मजबूत हिमाचल की पहचान।
4: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: पहाड़ी संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला के साथ। पहाड़ी लोकगीत हमारे जीवन का आईना है। इनमें खुशियां भी हैं, त्योहारों की रौनक भी और प्रकृति की सुंदर एहसास भी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले लोकगीत की ओर और सुनते हैं जयश्री शर्मा की आवाज़ में ये लोकगीत।

0: कुछ लोग वोट की कीमत पैसों, शराब या लालच से लगाते हैं, लेकिन हिमाचल की जनता जानती है, वोट बिकता नहीं, वोट भविष्य बनाता है। 17 मई को नगर निकाय चुनाव में ना किसी दबाव में आए, ना किसी प्रलोभन में। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने विवेक और अधिकार से मतदान करें।
1: स्वच्छ सोच, निष्पक्ष मतदान। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी FM शिमला से इस वक्त आप सुन रहे हैं पहाड़ी संगीत। ढोल की थाप और लोक धुनों की मिठास मन को अपने गांव और पहाड़ों की याद दिला ही देती है। पेश है एक और सुरीला पहाड़ी गीत अमर सिंह चौहान की आवाज़ में।

0: अगर युवा ही चुप रहा तो बदलाव कौन लाएगा?
1: अब वक्त है मोबाइल से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचने का।
0: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में हर युवा बनेगा बदलाव की ताकत। आपका एक वोट तय करेगा आपके शहर का आने वाला कल। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान जरूर करें।
1: युवा जागेगा, हिमाचल आगे बढ़ेगा। पहले मतदान, फिर बाकी काम। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: पहाड़ी संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला के साथ। लोक संगीत की यही खूबसूरती है, यह हर उम्र के दिल को छू लेता है।

0: दादाजी, हमारा शहर और बेहतर कब बनेगा?
1: जब हर घर से एक वोट निकलेगा बेटा।
2: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में अपने शहर के भविष्य के लिए 100% मतदान का संकल्प ले। एक वोट, साफ शहर, बेहतर सड़क, पानी और विकास की नई उम्मीद। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने मतदान केंद्र जरूर जाएं। घर घर से निकलेगी आवाज, इस बार कोई नहीं छूटेगा। 100% मतदान, मजबूत हिमाचल की पहचान।
3: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: कार्यक्रम का आखिरी लोकगीत आपको सुनवाते हैं बल।

श्रोताओ, आज का पहाड़ी संगीत का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला। दोपहर के 12 बजने को हैं। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी में समाचार और 12:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है।
1: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्म

0: फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने त्वरित एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए, 2 से शुरू होगा 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
1: श्री प्रधान ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी तरह की अनियमितताओं को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने संबंधी उपाय किए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल एनटीए के आधिकारिक चैनलों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। इससे पहले इस महीने की 3 तारीख को भी परीक्षा कथित पेपर लीक के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। प्रधानमंत्री आज सुबह संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, साथ ही पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्रालय के अपर सचिव पश्चिम असीम महाजन ने कहा कि ऊर्जा दोनों देशों के संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ है। एक रिपोर्ट।
2: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्चे से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। उन्होंने आपसी हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। डॉ जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराक्चे की भागीदारी की सराहना भी की। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी गैस की कीमतों में 2 रुपये की वृद्धि की है। इसके साथ ही दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की कीमत 79.09 रुपये, गाजियाबाद और नोएडा में 87.70 रुपये और गुरुग्राम में इसकी दर 84.12 रुपये हो गई है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से राजधानी में ईंधन की खपत कम करने और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा शुरू की। ये केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशनों तथा सेंट्रल विस्टा क्षेत्र के प्रमुख सरकारी प्रतिष्ठानों के बीच निर्बाध और पर्यावरण अनुकूल अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 82 अंक बढ़कर 75,481 पर, जबकि निफ्टी 29 अंक की वृद्धि के साथ 23,719 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has embarked on a 6-day visit to the UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy this morning. On the first leg of his 5-nation visit, Mr. Modi will reach UAE today, where he will meet President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders will exchange views on bilateral issues, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues.

0: कुछ लोग वोट की कीमत पैसों, शराब या लालच से लगाते हैं, लेकिन हिमाचल की जनता जानती है वोट बिकता नहीं, वोट भविष्य बनाता है। 17 मई को नगर निकाय चुनाव में ना किसी दबाव में आए, ना किसी प्रलोभन में। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने विवेक और अधिकार से मतदान करें।
1: स्वच्छ सोच, निष्पक्ष मतदान। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी FM शिमला से इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। श्रेया घोषाल और सोनू निगम की आवाज़ों में लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म है आजा नचले। जयदीप सहानी और पीयूष मिश्रा के बोल हैं, सलीम सुलेमान का संगीत।

दोस्तों फिल्म संगीत में अभी के लिए इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं आकाशवाणी FM शिमला के साथ। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

मीडियम वेव 387.6 मीटर पर आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। 12:20 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारा दैनिक आयोजन महिला सम्मेलन। श्रोताओं, ये कार्यक्रम FM शिमला पर भी आप सुन सकते हैं।

0: लीजिए, आज फिर हम हाजिर हैं बहनों, आपका अपना कार्यक्रम महिला सम्मेलन लेकर। और आज आपके साथ मैं हूँ आपकी रेडियो हमसफर मधु शर्मा,
1: और मैं सुनीता। आप सभी को हमारा
0: नमस्कार। देखिए बहनों, हम देखिए सुनी सोनू, हमेशा हम ये पूछते हैं कि भाई हम

0: हमारी बहनें कैसी हैं,
1: जी
0: और जबकि हमें ये उम्मीद होती है कि भाई हमारी बहनें जो है ना वो मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पर अपने अपने कामों में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हैं। हो भी क्यों ना
1: जी
0: भाई, आजकल का जैसा दौर चल रहा है, और मतलब सर्दी गर्मी जिस तरह से हम कह रहे हैं कि बारिश का और तूफान का जो मौसम चल रहा है,
1: जी बिल्कुल
0: और गर्मियाँ भी अब शुरू हो ही गई हैं, जैसे ही धूप खिलती है ना वैसे ही बहुत ज़्यादा गर्मी का एहसास होना शुरू हो जाता है, और जैसे ही बादल आते हैं तो हमें तो यूँ लगता है कि जैसे बारिश होगी और हम एकदम से ठंड में हो जाएंगे, है ना, ठंडा हो
1: जी
0: जाता है
1: जी
0: एकदम
1: जी
0: से मौसम।
1: बिल्कुल
0: भाई शिमला का मौसम ही ऐसा है
1: जी, कहते हैं कि शिमला का मौसम जो है वो बदलता रहता है,
0: जी,
1: गर्मी में भी सर्दी का एहसास दे जाता है और कई बार सर्दियों में भी गर्मी
0: गर्मी
1: का
0: का
1: एहसास।
0: एहसास बिल्कुल
1: जी, और बात अगर हम आज के कार्यक्रम की करें तो बहनों, आज का दिन जो है वो बहुत ही खास है, क्योंकि 15 मई को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है।
0: जी बिल्कुल बहनों, ये क्यों मनाया जाता है ये आपको आज हम बताएंगे। देखिए बहनों, जो परिवार होता है ना, यानी वो छांव जहां हमें प्यार मिलता है, अपनापन मिलता है, सुरक्षा और संस्कार भी मिलते हैं,
1: जी
0: जहां हर खुशी दुगनी हो जाती है और जो दुख होता है वो आधा हो जाता है। जीवन की भागदौड़ में चाहे कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए, परिवार का साथ हमें हर परिस्थिति से लड़ने की ताकत देता है। तो
1: जी
0: आइए आज के इस खास दिन पर हम आपको बताएंगे, आपसे बात करेंगे परिवार के महत्व और बदलते रिश्तों, और उन्हें मजबूत किस तरह से आप बना सकती हैं।
1: जी बिल्कुल, लेकिन मधु, क्यों ना पहले ये जान लें कि परिवार दिवस कब से मनाया जा रहा है और इसको मनाने के पीछे क्या कारण है, यानी वो वजह जिनके वजह से आज जो है ये परिवार दिवस मनाया जा रहा है उसे भी जान लेते हैं। तो बहनों, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की जो शुरुआत है वो संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 1993 से की गई थी, और आधिकारिक तौर पर पहला परिवार दिवस 15 मई 1994 को मनाया गया था। इस दिन को मनाने के कारणों की अगर हम बात करें तो विश्व भर के लोगों को परिवार से जुड़े रखना, परिवार से जुड़े मुद्दों पर समाज में जागरूकता और फैलाना, और साथ ही साथ बहनों, ये दिन हमें ये भी याद दिलाता है कि परिवार ना केवल हमें सुरक्षा का एहसास दिलाता है बल्कि समाज के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्यों मधु?
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, लोगों को परिवार के महत्व के बारे में बताना, परिवार में आपसी प्रेम, सहयोग और एकता को बढ़ावा देना ही परिवार जो दिवस का वो वैसे उद्देश्य हो रहता है। और समाज और बच्चों के विकास में परिवार की, सभी जानते हैं कि बहुत बड़ी भूमिका रहती है, और
1: जी
0: इसे उजागर करना और बदलती जैसे जीवन शैली में रिश्तों को मजबूत बनाए रखने का संदेश देना ही इस दिवस के जो है वो मुख्य उद्देश्य माना जाता है। और आप तो जानती हैं बहनों कि आजकल परिवार का क्या महत्व है ये सभी जानते हैं,
1: जी
0: है ना।
1: बिल्कुल बहनों, परिवार सिर्फ खून का रिश्ता नहीं होता बल्कि भावनाओं का वो बंधन होता है जो हमें जोड़कर रखता है। बचपन में माँ की ममता, पिता का मार्गदर्शन, दादा दादी की कहानियाँ और भाई बहनों की नोकझोंक, यही तो जीवन की सबसे खूबसूरत यादें हैं।
0: जी
1: और आजकल की व्यस्त जीवन शैली में परिवार की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। काम के बोझ के साथ साथ परिवार और ऑफिस में तालमेल बिठाना परिवार के सहयोग के बिना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और ये जो कामकाजी महिलाएं हैं या दोनों जो पार्टनर्स हैं वो कामकाजी हैं, वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि एक परिवार की क्या कीमत होती है जबकि वो दोनों वर्किंग होते हैं।
0: बिल्कुल, और ये भी उन्हें पूरा मतलब विश्वास, हम कह सकते हैं कि सभी को ये लगता है कि जो बाहर, हम जितना भी बाहर वर्किंग, जैसा आपने कहा कि वर्किंग है, बाहर जाते हैं, काम पे जाते हैं, और जो वो दिन भर की थकान, तनाव, और वो जो पूरा जो हमारा लाइफस्टाइल है एक डे का, तो जब आप घर पहुंचते हो ना तो सबसे ज़्यादा सुकून जो है वो अपने परिवार के बीच में ही मिलता है
1: जी
0: ना।
1: बिल्कुल सही कहा आपने मधु, और बदलते समय के साथ नई तकनीकों का विकास जो है वो बेशक हुआ है, जिनसे ज़मीनी दूरियां तो कम हुई है लेकिन रिश्तों और दिलों में जो दूरियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं,
0: बिल्कुल
1: और आज एक ही घर में रहते हुए भी लोग मोबाइल और सोशल मीडिया में इतने बिजी हो जाते हैं कि आपसी बातचीत बहुत कम हो जाती है,
0: बिल्कुल, ना
1: या
0: के
1: जी
0: बराबर
1: बिल्कुल
0: है
1: या
0: ना,
1: हो ही
0: ना के
1: नहीं पाती,
0: बराबर हो
1: बिल्कुल
0: जाती
1: बिल्कुल,
0: है,
1: और धीरे धीरे रिश्तों में अपनापन भी जो है वो कहीं खो सा जाता है,
0: बिल्कुल
1: यानी कि जो हमारे रिश्ते हैं वो हमें याद नहीं रहते, हमें याद रहता है बस कि अपना सोशल मीडिया है, अपने मोबाइल पे बिजी हैं, हम उसी सोशल मीडिया से रिश्ते निभा रहे हैं।
0: बिल्कुल, ये
1: और
0: सही कहा आपने, क्योंकि आजकल देखा भी है ना कि भाई बहुत सारे कहते भी है कि सारे रिश्ते जो आजकल मोबाइल से ही चल रहे हैं,
1: जी
0: है ना,
1: बिल्कुल
0: कोई
1: बिल्कुल
0: आना जाना किसी का, जैसे एक वक्त होता था कि सभी एक दूसरे के यहाँ आना जाना होता था और सभी से मिलना जुलना होता था, बहुत पुराने पुराने

0: मित्र होते थे, अपनी जो सहेलियां होती थी उनसे भी
1: जी
0: मिलना जुलना होता था, लेकिन आज वो सारा काम जो है ना वो मोबाइल कर रहा है
1: जी
0: ना।
1: बिल्कुल। हालांकि इन सब चीज़ों से आसानी हुई है, समय
0: हाँ
1: बचता है, हर एक चीज़ है, आप किसी को टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, लेकिन जो मिलने मिलाने से रिश्ते सुधरते थे, उनमें
0: बिल्कुल
1: प्रेम भाव बना रहता था, वो जो है इस दौर में थोड़ा मुश्किल हो गया है। तो बहनों, इस समय ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने परिवार को समय दें, एक दूसरे के सुख दुख बांटें, छोटी छोटी खुशियों को मिलकर जिएं, क्योंकि रिश्ते अपने आप मजबूत नहीं होते, उन्हें प्यार, विश्वास और समय देना बहुत ज़रूरी हो जाता है।
0: बिल्कुल। और देखिए बहनों, अपने परिवार को खुशहाल बनाने के लिए छोटी छोटी बातों का जो है ना वो हमेशा ख्याल रखना चाहिए। जैसे परिवार के साथ रोज़ाना जो है कुछ समय ज़रूर बिताएं, और बड़ों का सम्मान करें, और बच्चों को परिवार के महत्व के बारे में ज़रूर बताएं।
1: जी बिल्कुल। और छोटी छोटी बातों पर कई बार हम नाराज़ हो जाते हैं परिवार में, तो ऐसा करने से अच्छा है कि हम एक दूसरे से खुलकर बात करें, एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करें, और खुशियों के साथ साथ मुश्किल समय में भी एक दूसरे के साथ ज़रूर खड़े रहें। और याद रखें बहनों, जहाँ प्रेम और सम्मान होता है, वहीं परिवार में खुशियाँ बनी रहती हैं। परिवार जीवन की वो ताकत है जो हर कठिन रास्ते को आसान बना देती है। तो आइए इस अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर ये एक वादा हम खुद से करें कि अपने परिवार को समय देंगे, रिश्तों के महत्व को समझेंगे और हर परिस्थिति में परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर
0: खड़े
1: खड़े
0: रहेंगे
1: रहेंगे।
0: जी।
1: जी।

0: दिवस है,
1: जी
0: और आगे भी हम इस तरह से ही जो बातें करते रहेंगे अपनी बहनों से। लेकिन अभी हम अपनी बहनों को बता दें कि देखिए, हम अक्सर जो है वो कोशिश करते रहते हैं कि हमारे परिवार, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त और हमारे जो साथ वाले, चाहे वो काम काजी हो या आस पड़ोस के लोग हों, उन्हें हम हमेशा खुश रखें, है ना।
1: जी
0: ऐसा ही हम सभी सोचते हैं,
1: जी
0: और
1: बिल्कुल
0: हम सबकी उम्मीदों पर खरा उतरना भी चाहते हैं। हमें लगता है कि हम भाई सब हमारे ऐसा कहे कि भाई ये हम, या जहां हम चले जाए वहां लोग खुश रहे, है ना।
1: जी
0: किसी को भी नाराज नहीं करना चाहते, लेकिन क्या सच में सभी को खुश रखना संभव है? शायद हमें तो नहीं लगता, है
1: जी
0: ना। क्योंकि जीवन में हर व्यक्ति की अलग सोच होती है, हर किसी की पसंद अलग होती है, अपेक्षाएं अलग होती है, और जरूरतें भी अलग होती हैं।
1: जी बिल्कुल। और जो बात किसी एक व्यक्ति को अच्छी लगती है मधु, वही बात दूसरे व्यक्ति को बुरी भी लग सकती है।
0: बिल्कुल
1: आपने देखा होगा, जो व्यक्ति अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, अक्सर उन्हीं की फैमिली में ये शिकायत रहती है कि उनके पास परिवार के लिए समय नहीं रहता। और जो लोग परिवार के लिए समय निकालते हैं, उन्हें कई बार अनप्रोफेशनल भी कहा जाता है। यानी हर दिशा में संतुलन बनाना आसान बिल्कुल भी
0: नहीं है,
1: नहीं है।
0: बिल्कुल
1: और किसी ने कहा भी है कि चिराग जलाने से अक्सर अंधेरे रूठ जाते हैं, और यही हमारे जीवन का सार भी है कि सबको खुश नहीं किया जा सकता। किसी एक व्यक्ति को खुश करने से कोई दूसरा नाराज हो
0: हो
1: ही
0: ही जाता
1: जाता है।
0: है,
1: जी जी
0: बिल्कुल।
1: बिल्कुल
0: और बहनों, हम सबकी उम्मीदों पर खरा उतरने की जो कोशिश करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे परिवार वाले खुश रहें हमसे, हमारे रिश्तेदार हमें ज़्यादा अच्छा समझें, हमारे दोस्त हमसे नाराज़ ना हो जाएं, और समाज में भी हमारी जो छवि है वो हमेशा अच्छी बनी रहे। जिसके लिए कई बार हम अपने मन की बातों को दबा देते हैं, और कभी अपनी खुशी को जो है वो पीछे छोड़ देते हैं, सिर्फ इसलिए कि सामने वाला नाराज ना हो जाए,
1: जी बिल्कुल। और हमारी यही सोच ना मधु, हमें अपनी खुशी से हमें खुद को दूर कर
0: दूर
1: दे
0: कर
1: कर
0: देती
1: देती
0: है।
1: है।
0: और ये ना
1: बिल्कुल
0: कोई समझता नहीं है
1: जी
0: कि, क्योंकि हमें, देखिए, हम तो ये कहेंगे भाई सबसे पहले खुश रखना हो तो अपने आप से शुरुआत कीजिए,
1: जी
0: हमें अपने
1: बिल्कुल
0: को खुश रखना है। लेकिन वही बात आ जाती है ना कि भाई हम सबको खुश करते करते अपने आप को भूल जाते
1: भूल जाते
0: हैं।
1: हैं बिल्कुल। और दूसरों की उम्मीदों का बोझ लेकर जब हम चलते हैं ना, तो चाहे वो परिवार है, आपका ऑफिस हो या हमारी सोसाइटी, और इन सब के बीच हम ये भूल जाते हैं कि हम खुद क्या चाहते हैं। हमारी खुद से जो उम्मीदें हैं, हम उनको कहीं पीछे छोड़ देते हैं, और हमारी खुशी कहाँ है। दरअसल अपनी खुशी भी ज़रूरी है बहनों। ये स्वार्थ नहीं है कि आप अपनी खुशी के बारे में सोचिए, आप
0: जी,
1: दूसरों को भी तभी खुशी दे पाएंगे जब आप खुद खुश
0: खुद खुश
1: हों।
0: होंगे। और वैसे सही कहा है कि भाई वाकई ये एक, हम कई बार ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं कि कहीं हम एक स्वार्थी तो नहीं हो रहे हैं, कि हम अपनी
1: जी
0: खुशी को ढूंढ रहे हैं, हम
1: जी
0: लोगों के लिए नहीं जी रहे हैं। इस तरह से कई बार आ जाता है, मन में ख्याल आ जाता है। लेकिन देखिए भाई, हम तभी किसी को खुश रख सकते हैं जब तक हम खुद खुश ना रहें। तब तक हम तभी कर सकते हैं ना जब हम खुश खुद रहेंगे।
1: जी बिल्कुल। और एक थका हुआ जो मन है मधु, वो एक परेशान दिल और एक उम्मीदों के बोझ तले दबा हुआ जो व्यक्तित्व है, वो कभी किसी को भी खुश नहीं रख सकता। सबसे पहले खुद को समझिए, अपनी सीमाएं पहचानिए, और फिर दूसरों के लिए बेहतर बनिए। जैसे हवाई जहाज में कहा जाता है ना कि पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाइए, तभी दूसरों की मदद
0: जी,
1: कीजिए,
0: बिल्कुल
1: है ना।
0: बिल्कुल।
1: तो यही हमारे जीवन का पर भी नियम लागू होता है कि जब तक हम खुद अपनी मुश्किलों से, अपनी परेशानियों से निजात पाकर अपने आप को खुश नहीं रख पाते हैं, या हम खुद अगर उलझनों में उलझे रहेंगे, तो हम कहाँ ही अपने परिवार की उलझने सुलझा पाएंगे, या
0: बिल्कुल, और
1: उनके
0: उन्हें
1: लिए
0: खुश रख
1: जी
0: पाएंगे, है ना,
1: बिल्कुल,
0: उनके
1: या
0: लिए जी
1: उनके लिए जी
0: पाएंगे।
1: पाएंगे। तो
0: बिल्कुल
1: सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप अपने लिए समय निकालें, अपने परिवार के लिए, तभी आप समय निकाल पाएंगे और उनका अच्छा भी आप तभी कर पाएंगे।
0: बिल्कुल बहनों, बहुत से लोग सिर्फ इसलिए भी दुखी रहते हैं क्योंकि वो जो होते हैं ना, वो ना नहीं कह सकते।
1: जी
0: अगर किसी,
1: बिल्कुल
0: आपका मन कुछ करने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी आपको वो करना पड़ रहा है क्योंकि आप ना नहीं बोल सकते, है ना।
1: जी
0: और ना चाहते हुए भी आपको ये चीज़ें करनी पड़ती है। हर काम के लिए हाँ, हर अपेक्षा के लिए हाँ, हर मांग के लिए भी हाँ, और अपने लिए सुकून भी नहीं बचता है। तो थोड़ा इस आदत को कम कीजिए, और हर जगह जरूरी नहीं है कि आप हाँ ही कीजिए। देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं खुश के बारे में, कि किस तरह से आप अपने को खुश रख सकते हैं, तभी आप अपने साथ जो रहने वाले लोग हैं, चाहे वो परिवार के हो चाहे समाज के हो, किसी को भी खुश तभी रख सकते हैं। लेकिन इस समय हम जानते हैं कि हमारी बहनें किस चीज़ से खुश रहती है ना।
1: जी गीत संगीत से। और
0: बिल्कुल
1: मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगी, आपने अभी कहा है कि हाँ कहना और ना कहना ज़रूरी है, तो यहाँ तो मैं
0: बिल्कुल
1: हाँ ही कहूंगी कि
0: बिल्कुल,

0: बहनों, गीत से पहले हम बात कर रहे थे कि दूसरों को खुश रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है खुद को खुश रखना, क्योंकि आप दूसरों को तभी खुश रख पाएंगे जब आप खुद खुश होंगे। तो हम बात कर रहे थे कि ना कहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ना कहना बहनों गलत नहीं है, गलत है खुद को तकलीफ देकर दूसरों को खुश करने की कोशिश करना। सम्मानपूर्वक मना करना भी एक कला है। जब आप अपनी सीमाएं तय कर लेते हैं तभी लोग आपकी कद्र भी करते हैं।
1: बिल्कुल, और आपको ध्यान रखना चाहिए बहनों कि कई बार किसी की नाराज़गी का कारण महज एक तुलना करना नहीं होता। उन्हें लगता है कि किसी के लिए हमारे पास वक्त है, उनके लिए नहीं, किसी को भी जो है वो महत्व दिया जा रहा है
0: और उनको नहीं दिया जा रहा। लेकिन हर रिश्ता अलग होता है और हर परिस्थिति भी अलग होती है।
1: और हम सबके लिए एक वक्त पर एक जैसे नहीं रह सकते। हम सब है ना, सबके लिए हम वक्त भी नहीं दे सकते, और सभी अगर ये सोचे कि हम सभी के लिए जो है वो अवेलेबल हो तो ऐसा भी नहीं हो सकता। इसलिए ज़रूरी है कि हम ईमानदार रहें, निष्पक्ष रहें, और जानबूझकर किसी का दिल ना दुखाएं, और ना ही किसी से ये उम्मीद रखें कि सामने वाला व्यक्ति हमारे लिए हमेशा अवेलेबल ही रहेगा।
0: जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने मधु। और दूसरों को खुश रखना गलत नहीं है, लेकिन खुद को खो देना गलत है। रिश्तों में प्रेम हो, सम्मान हो, समझदारी हो तो संतुलन बना रहता है। हर किसी को खुश करने से अच्छा है कि सभी के लिए सही काम किए जाएं।
1: बिल्कुल,
0: और कभी कभी सच बोलना भी ज़रूरी होता है। भले ही सामने वाला व्यक्ति जो है वो कुछ देर के लिए आपसे नाराज़ हो जाए, लेकिन झूठी खुशी से अच्छा है सच्चा विश्वास।
1: बिल्कुल, इसीलिए तो कहते हैं ना कि ज़िंदगी में बैलेंस बनाकर चलना बहुत ज़रूरी है। सभी को खुश रखना मुमकिन नहीं है, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना हमारे हाथ में है। जीवन इतना संतुलन का नाम है ना, ना ज़्यादा झुकना, ना कठोर होना, और ना ही ज़्यादा खुश होना, मतलब ये कि दूसरों को खुश रखना
0: जी बिल्कुल
1: है। और इससे क्या होता है कि ज़बरदस्ती वाली चीज़ों से आपके रिश्ते जो है वो टूटना शुरू हो जाते हैं।
0: जी बिल्कुल, सच्चाई और विश्वास और आत्मसम्मान के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो बहनों यही हमारा जीवन है, और जीवन को खुशहाल बनाने में गीत संगीत का भी महत्वपूर्ण योगदान है मधु। और गीत संगीत जो है वो केवल मनोरंजन ही नहीं है, बल्कि हमारी भावनाओं, हमारी यादों और प्रेरणा का एक सुंदर संगम भी है, और ये एक ऐसा संगम है जो हमें भी आपसे जोड़े रखता है। तो आइए अपनी बहनों को एक और गीत सुनवा देते हैं।
1: जी

0: बहनों, आज शुक्रवार है और आज के दिन हमारी बहनों को इंतज़ार रहता है आज के सेगमेंट सौंदर्य की बात का। तो सौंदर्य के अंतर्गत बहनों बहुत सी चीज़ें आती हैं जिसे कि महिलाएं अपनाती भी हैं, अपने ऊपर ट्राई भी करती हैं, और खूबसूरत दिखना कौन पसंद नहीं करता। तो ऐसे में वैसे तो हमें प्रकृति ने खूबसूरती से परिपूर्ण ही बनाया है, लेकिन जहाँ बात सजावट की आती है तो इस खूबसूरती को बढ़ाने के लिए तरह तरह के उपाय हम सभी करते हैं, कभी घरेलू चीज़ों से तो कभी बाज़ार से लाई गई चीज़ों से। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना हर औरत का श्रृंगार अधूरा होता है, और वो है जेवर। मैंने जेवर हमारी खूबसूरती में आने वाली हर कमी को पूरा कर देते हैं।
1: बिल्कुल,
0: और ये आज से ही नहीं, परंपरा सदियों से चली आ रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि इन जेवरों के जो रूप है वो बदल गए हैं, लेकिन जेवर वही है।
1: बिल्कुल, आज हमारी बहनें परेशान होंगी कि आज जो है वो जेवरों से हम अपनी बहनों का जो लुक है वो कैसे चेंज करने वाले हैं ना
0: जी।
1: वो बताने वाले हैं बहनों हम, क्योंकि आप जानती हैं कि भाई सोना तो बहुत महंगा हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी एक अल्टरनेट कह सकते हैं हम, वो है, और आज हम आपको उसी के बारे में बताएंगे भी।
0: जी बहनों, ज्वेलरी हमेशा से ही हम सबकी प्रिय रही है, क्योंकि हमारे आभूषण ही हमारे खास अवसरों पर हमारी शोभा को चार चांद लगा देते हैं, और ज्वेलरी से जो प्यार होता है महिलाओं को वो महिलाएं ही समझ सकती हैं, है ना। और भले ही सोने के आभूषण है वो आकर्षक तो होते हैं, इसके साथ साथ आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी हमेशा से ही हमारा ध्यान आकर्षित करती आ रही है। और ये सच बात है कि जहाँ पर आर्टिफिशियल ज्वेलरी की लुक आती है और वो जिस तरीके से उसे पेश किया गया होता है, उसे बनाया तो उसकी होती है, तो वो जो है एक अलग सा ही लुक जो है वो हमें देती है। और ज़्यादातर समारोह जैसे शादी ब्याह होते हैं जल्दी, तो मैक्सिमम औरतें जो है आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनना पसंद करती हैं हमारी बहनें।
1: ना तो गुम होने का डर होता है और ना ही हमें ये होता है कि भाई ये तो बहुत ही महंगा है ये वो,
0: या फिर ना ही इतना खराब होने का भी नहीं रहता है। और ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है।
1: बिल्कुल, जब भी, और वैसे भी देखिए ना कि जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है ना हमारे कपड़ों से मेल खाती है।
0: जी बिल्कुल,
1: है ना, कि आपने ब्लू कलर का अगर आपने कुछ भी सूट पहना है या कुछ भी आपने परिधान पहना है तो आपको उसके साथ ब्लू कलर की ज्वेलरी मिल जाएगी।
0: जी बिल्कुल,
1: और मैचिंग हो जाएगा, है ना।
0: जी जी, और अलग अलग तरह की आप साड़ी के साथ अलग तरह से वियर कर सकते हो, और लहंगे में आप अलग से वियर करते हो, सूट के साथ आप अलग ले सकते हो, तो इस तरह से इसमें इतनी वैरायटी होती है कि आप हर तरह के परिधान जो भी आप पहनती है उसके लिए आप जो है अलग ले सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और ये हमारे सबसे बड़ी बात है कि ये हमारे जो सौंदर्य हमारी खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा देती है।
0: जी बिल्कुल,
1: अगर आप अपनी पुरानी ज्वेलरी से बोर हो चुकी हैं तो फिर आप लेटेस्ट स्टाइल और डिजाइन की स्टेटमेंट ज्वेलरी का प्रयोग कर सकती है। ये आपको

0: नया जो रूप के देने के साथ साथ नया स्टाइलिश भी आपको ये बनाती है।
1: जी। और अब मधु बहन, हमारी बहनें ये सोच रही होंगी कि आपने कहा स्टेटमेंट ज्वेलरी, तो वो ये भी जानना चाहती होंगी कि स्टेटमेंट ज्वेलरी है क्या।
0: बिल्कुल। तो देखिए बहनों, किसी भी ट्रेंड को अपनाने के लिए उसके बारे में पूरी जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि ये किस तरह की ज्वेलरी होती है। अगर स्टेटमेंट ज्वेलरी का जो है, अगर हिंदी में अगर हम अर्थ देखा जाए तो इसका मतलब होता है कुछ बयां करना, है ना।
1: जी
0: तो स्टेटमेंट ज्वेलरी का मतलब ये हुआ कि वो जेवर जो आपके व्यक्तित्व के बारे में लोगों को बताने के साथ साथ उन्हें आपकी पसंद और रवैये से भी अवगत करवाता है।
1: जी बिल्कुल। वैसे तो इस तरह की ज्वेलरी को हज़ारों सालों से पहना जा रहा है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है बहनों कि पहले इसे अपनी सोसाइटी के और अपनी जगह के अनुसार ही पहना जाता था, और अब इसे अपनी खुद की पसंद और फैशन के लिहाज से भी पहना जाता है।
0: जी
1: और ये जो स्टेटमेंट ज्वेलरी में किसी भी महिला को अलग और आत्मविश्वास से भरपूर जो है वो दिखाने की क्षमता होती है।
0: बिल्कुल। ये ऐसी ज्वेलरी होती है बहनों जिससे आपके व्यक्तित्व की पहचान झलकती है। लेकिन इस ट्रेंड को अपनाने में हुई छोटी सी गलती भी आपके पूरे जो आपने लुक कर रखा है, जिस तरह से आप तैयार हुई हैं, उसके व्यक्तित्व को बिगाड़ सकती है। इसलिए इसे पहनते हुए थोड़ी सी सावधानी तो ज़रूर बरतनी चाहिए। बहनों कहते हैं ना कि एक अच्छे पकवान के सटीक स्वाद के लिए हर चीज़ का सही माप में होना बेहद ज़रूरी है। और उसी तरह एक सटीक लुक के लिए हर चीज़, चाहे वो आपके कपड़े हो या गहने हो या फिर आपका मेकअप हो, सब कुछ एकदम संतुलित होना बहुत ज़रूरी होता है। वरना आपका जो आप जिस तरह से अगर आप तैयार हुई है, जो आपका मेकअप है, जो आपकी खूबसूरती है, वो कहीं ख़राब ना हो जाए। और स्टेटमेंट ज्वेलरी पहनते समय ध्यान रखने वाली सबसे पहली और ज़रूरी बात ये होती है कि आपके कपड़े एकदम साधारण होने चाहिए। ऐसा करने की सीधी सी वजह हम बता देते हैं मैंने आपको कि ये जो स्टेटमेंट ज्वेलरी है अपने आप में बेहद बड़ी और रंगीन होती है। और अगर आप इसे चटकीले या ज़्यादा तामझाम वाले कपड़ों के साथ पहनेगी ना, तो आपका पूरा जो लुक है वो बेमतलब हो जाएगा। आपका जो मेकअप है वो मतलब बहुत ज़्यादा जो लुक, बहुत ज़्यादा तामझाम वाले कपड़े या चमकीले भड़कीले कपड़े भी इस ज्वेलरी के साथ ना पहने।
1: जी बिल्कुल। और साथ ही साथ पहनो आप इसके साथ साथ, अगर साड़ी के साथ भी आप पहनती हैं तो स्टोन वाली स्टेटमेंट ज्वेलरी आप पहने। इस तरह की ड्रेस पहनकर आप बेहद ही खूबसूरत भी लगेंगी, जिससे आप पर जो है ये बिल्कुल कुछ पंक्तियां हैं जो वो सही बैठेंगी कि तुमने जो छुआ तो हर जर्रा नायाब बन गया, तुमने पहना तो हीरा भी आफताब बन गया।
0: वाह वाह बहनों, देखिए भले ही हम ज्वेलरी ट्रेंड की बात कर रहे हैं, लेकिन
1: जी
0: एक बात जिस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है और वो है आपके कपड़े की
1: जी
0: बनावट। जेवर लेते समय और पहनते समय हमेशा ध्यान रखें कि ये आपके टॉप या जो भी आपने पहना हुआ ब्लाउज हो गया या सूट हो गया, उसके गले के साथ सही बैठ रही हो। ऐसा ना हो कि आपने ज्वेलरी पहनी और आपका जो गले की कटिंग है वो बहुत ऊपर की ओर है, तो ऐसे में वो दिखाई नहीं देगी फिर, है ना। सही मायनों में स्टेटमेंट ज्वेलरी हमेशा गोल और वी शेप वाले गले के कपड़ों के साथ ही पहनी जानी चाहिए। और साथ साथ में हम ये भी वो बता दें अपनी बहनों को कि देखिए जो भी आप इयररिंग भी अगर आप इसके साथ लगाना चाहते हैं, देखिए अपने चेहरे की बनावट को हमेशा ध्यान में रखना होता है। ये बात स्टेटमेंट ज्वेलरी के चयन में और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। आपके जो कान की बालियां हैं, जो भी आपने चीज़ पहन रखी है, जो इयररिंग जो भी है, जिस तरह की रंग या बनावट, उसकी लंबाई और अपने कपड़ों का जो है वो आपको विशेष ध्यान रखना है।
1: जी और सबसे ज़रूरी बात ये है बहनों कि अगर आप कान में कुछ बड़ा और आकर्षक पहन रही है तो गले को जो है वो खाली ही छोड़ दें। ऐसा करने से आप और भी खूबसूरत लगेगी, क्योंकि अगर आप दोनों जगह कानों में भी और गले में भी हैवी ज्वेलरी पहनती हैं तो उससे जो है आपका एक भरा भरा सा लुक आएगा। और जबकि अगर आप कानों में अगर हैवी ज्वेलरी पहन रही हैं तो गले को थोड़ा खाली छोड़िए, और अगर आप गले में हैवी ज्वेलरी पहन रही तो कानों में थोड़ा लाइट ज्वेलरी पहने।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए स्टोन वाली रिंग आजकल बहुत ट्रेंड चला है इसका, स्टोन वाले
1: जी
0: रिंग्स का, तो लोगों का जो वैसे ही अपने जो आपने अगर पहनी हो ना तो सभी देखना शुरू कर देते हैं और आपको जो है वो आपके हाथों को बहुत सुंदर दिखाना शुरू कर, इसलिए उनका जो साफ और शेप है ना वो बेहद अच्छा होना चाहिए, आपके हाथों के अकॉर्डिंग होना चाहिए। दूसरी बात ध्यान रखने की ये है बहनों कि आपके नेल पेंट और अंगूठी का रंग भी एक जैसा ही होना चाहिए। तो बहनों देखिए, अपनी खूबसूरती को बनाए रखने के लिए और उसमें चार चांद लगाने के लिए आप हमेशा अपनी ज्वेलरी का जो है वो सही इस्तेमाल करें और सही उसको संतुलन में बनाए रखें।

0: ये था हमारा दैनिक आयोजन महिला सम्मेलन। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। एक बजने वाला है, थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात यूएई पहुंच गए हैं। वहां पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री ने आज संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। बैठक में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर विशेष ध्यान दिया गया। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति में आई बाधाओं के मद्देनजर ये चर्चाएं हो रही हैं और दोनों पक्षों द्वारा तेल भंडार तथा गैस आपूर्ति व्यवस्था पर चर्चा किए जाने की उम्मीद है। यात्रा से पहले संयुक्त अरब अमीरात सरकार में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री रिम बिन इब्राहिम अल हाशमी ने प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त अरब अमीरात में एक

0: सम्मानित व्यक्ति बताया। प्रधानमंत्री मोदी अगले चरण में नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली भी जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। उन्होंने आपसी हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। डॉ जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराग़ची की भागीदारी की सराहना भी की। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी गैस की कीमतों में 2 रुपये की वृद्धि की है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है।
1: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने थोड़ी एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाएं। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
0: श्री प्रधान ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी तरह की अनियमितताओं को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने संबंधी उपाय किए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत सुधारित और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार की तत्काल जरूरत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रथेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कूचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस रॉय की देखरेख में आज सुबह चुनाव संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने औपचारिक रूप से श्री बसु के नाम का प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से उनके नाम की पुष्टि की। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपस्थित नहीं थे, लेकिन बाद में सत्र में शामिल हुए। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 250 अंक बढ़कर 75,649 पर, जबकि निफ्टी 81 अंक की वृद्धि के साथ 23,770 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। कल मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला। मस्त चुनो, मस्त सुनो, जानकारी और मनोरंजन के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। दोपहर के 1:11 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती। दोस्तों, दोपहर के इस सुहाने समय को और भी रंगीन बनाने के लिए हम लेकर आए हैं गीतों, मस्ती और शानदार संगीत का खूबसूरत संगम। तो तैयार हो जाइए कुछ बेहतरीन धुनों के साथ झूमने और मुस्कुराने के लिए। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती और प्रोग्राम का पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कविता कृष्णमूर्ति और कृष्ण सरगाथिया की आवाज़ों में। हम दिल दे चुके सनम फिल्म का ये गीत, महबूब के बोल, इस्माइल दरबार का संगीत।

0: दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, आपसे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
1: अगर युवा ही चुप रहा तो बदलाव कौन लाएगा?
2: अब वक्त है मोबाइल से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचने का।
1: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में हर युवा बनेगा बदलाव की ताकत। आपका एक वोट तय करेगा आपके शहर का आने वाला कल। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान जरूर करें।
2: युवा जागेगा, हिमाचल आगे बढ़ेगा। पहले मतदान, फिर बाकी काम। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: प्रोग्राम म्यूजिक मसी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला से। दोस्तों संगीत की यही खूबसूरती है कि ये बिना कुछ कहे सारा दिल का हाल बयां कर देती है और चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान ले आती है। तो चलिए अब सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। नीरज श्रीधर की आवाज़ में फिल्म है भूल भुलैया, समीर के बोल हैं प्रीतम का संगीत।

0: दादाजी, हमारा शहर और बेहतर कब बनेगा?
1: जब हर घर से एक वोट निकलेगा बेटा।
2: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में अपने शहर के भविष्य के लिए 100% मतदान का संकल्प ले। एक वोट, साफ शहर, बेहतर सड़क, पानी और विकास की नई उम्मीद। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने मतदान केंद्र जरूर जाएं। घर घर से निकलेगी आवाज, इस बार कोई नहीं छूटेगा। 100% मतदान, मजबूत हिमाचल की पहचान।
3: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: आकाशवाणी FM शिमला से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती। दोस्तों, मस्ती भरे गीतों का कारवां यूं ही चलता रहेगा। अब आपको सुनवाते हैं एक और बेहतरीन नगमा, दिल तो पागल है फिल्म से आवाज़ आशा भोसले और साथियों की, आनंद बख्शी के बोल, उत्तम सिंह का संगीत।

दोस्तों, हर गीत अपने साथ एक अलग सा रंग लेकर आता है। कभी दिल को सुकून देता है तो कभी मन को झूमने पर मजबूर कर देता है। अगला खूबसूरत गीत सुनिए सलाम इश्क फिल्म से। आवाज़ें हैं शान और निहिरिका के, और समीर के बोल हैं शंकर एहसान लोए का संगीत।

0: दो सुबह के गीत इस अंतराल के बाद।
1: कुछ लोग वोट की कीमत पैसों, शराब या लालच से लगाते हैं, लेकिन हिमाचल की जनता जानती है, वोट बिकता नहीं, वोट भविष्य बनाता है। 17 मई को नगर निकाय चुनाव में ना किसी दबाव में आए, ना किसी प्रलोभन में, सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने विवेक और अधिकार से मतदान करें।
2: स्वच्छ सोच, निष्पक्ष मतदान। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती आप इंजॉय कर रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला से। दोस्तों, गीतों और मस्ती का सिलसिला अभी जारी है और आनंद लीजिए अगले

दोस्तों, संगीत दिलों को जोड़ने का सबसे खूबसूरत जरिया है और जब धुनें शानदार हो तो माहौल अपने आप खुशनुमा हो जाता है। चलिए अब आपको सुनवाते हैं अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाज़ों में ढाई अक्षर प्रेम के फिल्म का ये गीत। समीर के बोल हैं, जतिन ललित का संगीत।

0: दोस्तों प्रोग्राम के बाकी के गीत इस ब्रेक के बाद।
1: अगर युवा ही चुप रहा तो बदलाव कौन लाएगा?
2: अब वक्त है मोबाइल से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचने का।
1: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में हर युवा बनेगा बदलाव की ताकत। आपका एक वोट तय करेगा आपके शहर का आने वाला कल। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान जरूर करें।
2: युवा जागेगा, हिमाचल आगे बढ़ेगा। पहले मतदान, फिर बाकी काम। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: आकाशवाणी एफएम शिमला से इस वक्त आप एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती। तो दोस्तों अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं कुली नंबर 1 फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं चंदना दीक्षित और अभिजीत की।

0: दादाजी, हमारा शहर और बेहतर कब बनेगा?
1: जब हर घर से एक वोट निकलेगा बेटा।
2: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में अपने शहर के भविष्य के लिए 100% मतदान का संकल्प ले। एक वोट, साफ शहर, बेहतर सड़क, पानी और विकास की नई उम्मीद। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने मतदान केंद्र जरूर जाएं। घर घर से निकलेगी आवाज, इस बार कोई नहीं छूटेगा। 100% मतदान, मजबूत हिमाचल की पहचान।
3: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: आकाशवाणी एफएम शिमला से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती। दोस्तों, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती। और अगला गीत आपको सुनवाते हैं मैं हूं ना फिल्म से, आवाजें हैं सोनू निगम, आफताब शबरी, हाशिम शबरी की। जावेद अख्तर के बोल हैं, अनु मलिक का संगीत।

0: सेकंड। हाय तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें, हो गया है कैसा ये कम।
1: कुछ लोग वोट की कीमत पैसों, शराब या लालच से लगाते हैं, लेकिन हिमाचल की जनता जानती है वोट बिकता नहीं, वोट भविष्य बनाता है। 17 मई को नगर निकाय चुनाव में ना किसी दबाव में आए, ना किसी प्रलोभन में। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने विवेक और अधिकार से मतदान करें।
2: स्वच्छ सोच, निष्पक्ष मतदान। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती आकाशवाणी एफएम शिमला से, और प्रोग्राम को अब आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं सिर्फ तुम फिल्म का ये गीत, आवाज़ अलका याग्निक और साथियों की, समीर के बोल, नदीम शर्मन का संगीत।

दोस्तों प्रोग्राम का आखिरी गीत आपको सुनवाते हैं अलका याग्निक और कमाल खान की आवाज़ों में, मैंने प्यार क्यों किया फिल्म से समीर के बोल हैं, हिमेश रेशमिया का संगीत।

तो दोस्तों, गीतों और मस्ती का ये भरा मस्ती से भरा ये जो सफ़र है, यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आप यूँ ही बने रहिए आकाशवाणी FM शिमला के साथ।

आकाशवाणी एफएम शिमला, आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 2 बजे हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सब रंग। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं नुसरत फतेह अली खान की आवाज़ में।

0: बाकी गीत आपको सुनवाएंगे इस ब्रेक के बाद।
1: अगर युवा ही चुप रहा तो बदलाव कौन लाएगा?
2: अब वक्त है मोबाइल से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचने का।
1: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में हर युवा बनेगा बदलाव की ताकत। आपका एक वोट तय करेगा आपके शहर का आने वाला कल। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान जरूर करें।
2: युवा जागेगा, हिमाचल आगे बढ़ेगा। पहले मतदान, फिर बाकी काम। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: दादाजी, हमारा शहर और बेहतर कब बनेगा?
4: जब हर घर से एक वोट निकलेगा बेटा।
2: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में अपने शहर के भविष्य के लिए 100% मतदान का संकल्प ले। एक वोट, साफ शहर, बेहतर सड़क, पानी और विकास की नई उम्मीद। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने मतदान केंद्र जरूर जाएं। घर घर से निकलेगी आवाज, इस बार कोई नहीं छूटेगा। 100% मतदान, मजबूत हिमाचल की पहचान।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सब रंग, आकाशवाणी FM शिमला से। अब आपको सुनवाते हैं आशा भोसले की आवाज में ये गीत।

0: कुछ लोग वोट की कीमत पैसों, शराब या लालच से लगाते हैं, लेकिन हिमाचल की जनता जानती है, वोट बिकता नहीं, वोट भविष्य बनाता है। 17 मई को नगर निकाय चुनाव में ना किसी दबाव में आए, ना किसी प्रलोभन में, सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने विवेक और अधिकार से मतदान करें।
1: स्वच्छ सोच, निष्पक्ष मतदान। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: प्रोग्राम सबरंग आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला से। प्रोग्राम का आखिरी गीत आपको सुनवाते हैं लकी अली की आवाज में।

दोस्तों प्रोग्राम सब रंग में आज बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। दोपहर के 2:15 होने को हैं। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से दोपहर हिंदी समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबूधाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता का आश्वासन दिया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबूधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
1: यूएई को जिस तरह निशाना बना गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विनम्र का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
0: राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद को भाई कहकर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने चुनौतीपूर्ण समय में यूएई नेतृत्व के लचीलेपन की प्रशंसा की। श्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में

0: विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। ओर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और यूरोप के 6 दिन के दौरे के पहले चरण में आज अबूधाबी पहुंचे। हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में औपचारिक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। यूएई के F-16 लड़ाकू विमानों ने उनके विमान को अमीरात हवाई क्षेत्र में प्रवेश कराते हुए सुरक्षा प्रदान की। एक रिपोर्ट।
2: बातचीत के नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। एक रिपोर्ट।
3: विदेश मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने लगातार सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था का समर्थन किया है जो मौजूदा वास्तविकताओं को दर्शाए तथा उभरते बाजारों तथा विकासशील देशों की आकांक्षाओं को पूरा करे। उन्होंने कहा कि सभी देशों को न केवल वैश्विक चुनौतियों का प्रबंधन करने के लिए बल्कि और अधिक लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व करने वाली और समानतापूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने में मिलकर काम करना चाहिए। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन होना चाहिए। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराग़ची की भागीदारी की सराहना भी की। विदेश मंत्री ने क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिग्स पेरेला और युगांडा के विदेश मंत्री ओडोंगो जेजे से भी मुलाकात की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट UG 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में OMR मोड में आयोजित होने वाली नीट UG परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी CBT माध्यम से होगी।
4: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, OMR शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारी विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते NTA ने थोड़ी एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाएं। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
1: श्री प्रधान ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा।
5: जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ

0: सूचना आए हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम एक सप्ताह विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं, ये विंडो खुला रहेगा।
1: श्री प्रधान ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की आवश्यकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं सेमीकंडक्टर, रेलवे और सीवेज जल शोधन संयंत्र से जुड़ी हैं। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में कई परियोजनाएं शुरू की गई जिससे विकास को गति मिल रही है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
2: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है। आज मोबाइल फोन भारत से एक्सपोर्ट होने वाली एक नंबर सबसे पहली कमोडिटी बन गई है।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तेल कीमतों में वृद्धि पर कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बाद जब विश्व में ईंधन की कीमतों में वृद्धि देखी गई, तब भारत उस स्थिति में सबसे अलग खड़ा रहा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि जहां कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20% से लगभग 100% तक वृद्धि की गई है, तब भारत ने पेट्रोल के दाम में केवल 3.2% और डीजल के लिए 3.4% की वृद्धि की है। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जन कल्याण के साथ आर्थिक स्थिरता को संतुलित कर रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कथित विदेश यात्राओं पर सवाल उठाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक सांसद को संबंधित अधिकारियों को अपनी विदेश यात्राओं की जानकारी देना अनिवार्य है और विदेश में मेहमान नवाजी के संबंध में FCRA अधिनियम 2010 के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रथेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कोचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस रॉय की देखरेख में आज सुबह चुनाव संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने औपचारिक रूप से श्री बसु के नाम का प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से उनके नाम की पुष्टि की। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपस्थित नहीं थे, लेकिन बाद में सत्र में शामिल हुए। उधर पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के वरिष्ठ विधायक ए अम्बालगन को 16वीं विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सिफारिश पर यह नियुक्ति की है। श्री अम्बालगन पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और ओपलम से विधायक हैं। विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में औपचारिक पदभार ग्रहण करने के बाद वे विधानसभा में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। पंजाब के लुधियाना को हलवारा हवाई अड्डे पर एयर इंडिया की पहली उड़ान के आगमन के साथ भारत के वाणिज्यिक विमान नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने हवाई अड्डे के संचालन को क्षेत्र में उद्योग, व्यापार और आर्थिक विकास के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन बताया। एयर इंडिया ने लुधियाना और दिल्ली के बीच दैनिक उड़ानें शुरू की हैं। इससे ब्रिटेन और रोम, मिलान तथा पेरिस सहित अन्य गंतव्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी संभव हो सकेगी। वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह ने आज कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां वायु शक्ति का ही विस्तार हैं। मानव रहित हवाई प्रणालियों पर सेंटर फॉर एयरोस्पेस पावर एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज तथा इंडियन मिलिट्री रिव्यू द्वारा आयोजित एक संयुक्त सेमिनार और प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां अभियानों के दौरान मानव जीवन के जोखिम को कम करती हैं। ओमान के मुलद्दा में बांग्लादेश के 4 भाइयों के शव एक खड़ी कार के अंदर मिलने से प्रवासी समुदाय और उनके गृहनगर चट्टोग्राम में शोक का माहौल है। पुलिस को शवों की जानकारी 2 बांग्लादेशी प्रवासियों द्वारा दी गई। कांगो गणराज्य के उत्तर पूर्व में इबोला के प्रकोप से 65 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग संक्रमित हो गए हैं। अफ्रीका रोग नियंत्रण और

0: रोकथाम केंद्र ने बताया कि लगभग 246 लोगों में इबोला होने का संदेह है। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
1: सबसे पहले बात बैडमिंटन की। थाईलैंड ओपन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने ताकुमी नोमुरा और युइची शिमोगामी की जापानी जोड़ी को 21-12, 21-13 से हराया। उधर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु को जापान की अकाने यामागुची से हार का सामना करना पड़ा। आज पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कुनलाउथ विदत्सरन से होगा। टेनिस कोर्ट का रुख करें तो इटली ओपन में महिला सिंगल्स फाइनल मुकाबला कल यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना और अमेरिका की कोको गॉफ के बीच होगा। सेमीफाइनल में स्वितोलिना ने पोलैंड की इगा स्वियातेक को, वहीं कोको गॉफ ने रोमानिया की सोरोना क्रिस्टिया को पराजित किया। कोको गॉफ वीनस विलियम्स के बाद लगातार इटली ओपन के फाइनल में पहुंचने वाली सबसे युवा अमरीकी टेनिस खिलाड़ी बन गई है। इस बीच क्रिकेट की बात करें तो आईपीएल में आज लखनऊ में शाम 7:30 बजे से लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। कल मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया था।
0: मौसम विभाग ने आज कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में रात के समय मौसम गर्म रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबूधाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

चोकपाला छाना की कारण मिनांग होगा तेने रिया चिनमुला चिन्ना औजी रिया ला लुकपा नाचनेनु दांग थिरिंग औजी मिया खांगबा गेपचा फीला सोंगलांग गेपना फीला यांग इंडस्ट्री गेपना फीला दांग थिरिंग सिंग सिंगाया रियाया मिनांग चेतांगा तेने दी की वजह सु हई छरवा छू रंग होतिया ला गेबना मेता यंग होजी खरगुन याला नत मंगबू क्यालना ओका तेने दी छोकपा सेना बावा तंगना यंग लुक छोकपा छू छोकपा यंग दी अति करला इनु लुंग छोकपा सेना होजी दांग तिरिंग मोटर चिमू चिमू यंग मोटर नांग दू पेट्रोल डीजल अति चुगना यंग लाखपू फेना छू बाबा तंगना छूया नांग दो केमिकल मांगबू चुकचा होती कि फिलान दी याकपू ऑय मी फिल याकपू मैका छू की चौकपा सेना यंग छूल बाबा तंगना दांग तिरियांग मिया छूई नांग दो चला मांगबू ड्रा मेडा चुक यंग केमिकल चुक होती चौक से यंग छूल चौपा मांगबू फेका तेने बाबा तंगना यंग दी कि दांग तिरिंग मिया ड्रा मेडा चला छू नांग चुक यंग अतु चाय छुएल मीनांग बाबा तंग अति छु तुंग जने होयाला नाजा मांगबोंगा तेनें दी नाजा सु होय यांग नाई अति मियाला याकपु मेगा तेने दांग तिनिया होय गेलसा छिनमुरु यांग मीनांग गा यांग होय लाला मासुंदी चला खाक छिनमुया चला या मिया सु इस्तेमाल छुई अतुक चाय गांदी होय दी रिया याला बाबा तंग अतुचा तेने यंग दी कि यंग कारण चिक चिक ते यंग मिचोक फेल यंग मिचोक फेल ना यंग मी मांगबू यानी मी मांगबू से ना होय मी मांगबू ओंग जा यंग तोप ला यंग ओती ला यंग होया चला मांगबू चल जा यंग तोप चा मांगबू चल जा रंग ओती या का गुशे होगा तेने मी मांगबू अचने होया चुक से ना खांगबा मांगबू की गुशा रिया मांगबू चेत गुशा अतिया चेचनी का ओयाला होय दियाला ये खुरकुंग ना बाबा तंगना होगा तेने दांग तिरिंग होय मिया होय दी मिया यंग नम चुत कान दिला दांग तिरिंग होय मिया ग्रीन हाउस जुया रंग होय मांगबू फेचा यंग ग्रीन हाउस की भी गैस विला नम शीत रंग दामिंदा यंग चारवा छू छरवा ना यंग ठत मांगबोंग ना यंग रिया या कि खा दे शून रया और छू या छरवा या गिबना दियाला दांग तिरिंग याकपू मेका तेन नम शुद या यंग मौसम चुक से बदलाइन रया और दिया ला दी याकपू मेका तेने और यार और मियाला चुंग ना बाबा न्यून तंग यंग रिया याला बाबा न्यून तंग यंग खरयुग याला संगमा पर अतु चाहे दी याला ओ मिया याकपो पेचा यंग मिया संभलाई चुई पोचा तेने ओ इति कपला आने टाशी की लुन्यन बुझी ओया न्यून तो

야 rang otia sangma deka tene khawu ka nyun honga hoy tu yala khawu nyun honga tingla te hoy te niki lapcha hinu tene tingla ta yang sahakarita ki vikas sahakarita sena nyam pula la ha pecha hoy tole rup chila ha pecha yani ya la ha nyam pula pecha gya kanang du ansholandi 1904 du शुरू पुता तेने यंग दी से कारिता ते ऑयल फन बु ओका सन चीक से ना हो इनी बैंक कियाला हो यंग डायरी से ना यंग ओमा चोंग जी चला याला दी मांगबू फैलाई चुया फैला हिनो हो जी नांग दूं दी गुशा ओके यंग क्या कर हो इमी मांग चिया यूली यारू लहा फेका हो ती यंग चुन चुन लहा ला यंग दी हो इ मिस्त्री चोरे यंग हो इ रोजगार फेकन चोरे यंग मूल साक्ष फीला दी योजनाएं चलाई फेका यहाँ सहकारिता की लू लाहू पहचाला यंग मिया लाओजेल फनबू पहचा रो रमदा पहचा यह सरकार की ना सोया लोन निंजा यंग और इंदी पुलन या पुलन थो कलना रंग पुलन थोबना रंग होती है ला और ही मदद पहचा की यंग कृषि सहकारिता से नहीं यहाँ होया सांगन चोरे निन्ना रही यंग कौन जेल यंग लांसा मन की लांसा यंग पिता की लांसा निन्ना चोरे और दी नांगला शुवेन होगा तेने दी यंग आया सौरवा की अमूल अमूल रीसेंट दी होगा यंग उती ते मिनम छिनमु कंपनी नो और इखो इंदी सहकारिता की यंग उदाहरण चिक चिक इनो तेने सहकारिता की यंग आर्थिक विकास ना सहकारिता और जाल मिनम फनबू होगा क्योंकि मेतपू मिला मेतपू मी या मेतपू ला लह पेचा रंग छू यही गुशा होकर नौरिया थोबना रंग यंग खोपायला यहाँ डांडा फेनना रंग और जो तोबला डांडा पेचा मी मेतपू लन डांडा पेचा मी चुकुन लन डांडा पेचा यंग यंग मेकन ये लन डांडा पेचा दिकी चला दिकी नंग दो ओका सहकारिता से ना यंग उन्हें वही दिन क्योंतों ना जुंग याला या दी फनबो का यंग वही आने याला दी फनबो का यंग दी नांग तो वही पमोया आने या जोम जी यंग स्वयं स्वयं सहायता समूह चुना रे यंग कौनसे की लाहा रे कौनसे खांग बर देच लाहा पेचा लेना पड़ना रे और दी या दी नांग तो होगा नांग तेरी या आने पमोया दी ग्रुप जोना रे वामी तो यंग और दी याला फनबोगा तेरे यंग कौनसे पिता लपुची फीतल पूछी यंग स्टॉल चोरे गिबना रे दिनांग दो ओंगा यंग डिजिटल से ना था डिजिटल दांग तेरे यहाँ डिजिटल तकनीक कंदी नांग दो अपना ही चूवेनो का डिजिटल से ना ये ला रोम रो रम दबे ना यंग ऑनलाइन ऑनलाइन पंजीकरण पहनना रे दिनांग दो ओका दी ते मिनांग फनबू ओका तेने आजी बेरोजगार मी याला लाहा थोपना यंग और आने याला लाहा थोपना खंजरे मूल सागना दिनांग दो होगा दीना यंग टू चुकु याला खंबा याला दी मदद थोपना रे दी सहकारिता सम विकास की यंग मदद पहना रे वही और यूल याला मदद पहना यूल चुन चुन याला मदद पहना दिनांग दो होगा इन गबला यंग न्योया लुन्यन बुझी आने दिकित की लुन्यन बुझी न्यन तोंग।

सुक्सेना इस्तेमाल चुया वही आने रंग फमोयला लापचा गेपचा की दिनांग दोय ग्रुप जोया रंग अतीते तोलेला फनबो होगा तेने तिरिंग यंग ओया की तोले दी लापचाला मिनांग ओया यंग याक पुछाई ओ खातर पेचा वही जिमलिंग की चला तोले लाया पुछाई खातर पेचा हिनु ता तिरिंग की दूसो जोसों तिने यंग ओला ngo chiring palmula yang yoya tuje she ta oti gabla namu ya talking

आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। हमारी अगली उद्घोषणा कुछ ही देर बाद। मीडियम वेव 387.6 मीटर FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं। 3 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी रिले करेंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। उन्होंने आज नई दिल्ली में बताया कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 परीक्षा 21 जून को दोबारा आयोजित करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को 14 जून तक प्रवेश कार्ड उपलब्ध करा दिए जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। उन्होंने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी तरह की अनियमितताओं को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने संबंधी उपाय किए जाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि कोई भी योग्य विद्यार्थी फर्जी उम्मीदवारों की धांधली या शिक्षा माफिया की साजिशों के कारण अपने अधिकारों से वंचित हो जाए।
1: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
0: प्रदेश में 51 शहरी निकायों के लिए 17 मई को होने वाले चुनाव को लेकर अब से कुछ देर पहले 3 बजे खुलेआम चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है। दोनों प्रमुख दलों भाजपा व कांग्रेस ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकी। पूर्व केंद्रीय मंत्री व वरिष्ठ भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने आज सोलन में नगर निगम चुनाव को लेकर पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया। एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर झूठे वायदे कर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि सोलन सहित राज्य के अन्य स्थानों पर शहरी निकाय चुनावों में भाजपा की जीत होगी।
2: कांग्रेस क्यों घबराई है? 26 में अंगड़ाई है, 27 में कांग्रेस की विदाई है। नगर निगम के चुनाव में भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। 3 सालों से यहाँ की जनता जो राज्य की सरकार की नाकामियों का दंश झेल रही है, वो साफ दिखता है कि

0: अर्थ क्या है? इन्होंने कहा था कि 100 रुपए बिल देंगे, पानी 24 घंटे देंगे। ना पानी आता है, लेकिन बिल दिल खोल कर आता। कांग्रेस ने बड़े बड़े वायदे किए थे, लेकिन आज कांग्रेस भ्रष्टाचार में डूबी नजर आती है। आज केवल एक मौका है जनता के पास कि सोई हुई सरकार को जगाना है, जिन्होंने बड़ी बड़ी गारंटियां दी थी फिर मुकर गए।
1: उधर नाहन नगर परिषद में भी प्रचार के अंतिम दिन आज कांग्रेस व भाजपा ने चुनाव प्रचार किया। कांग्रेस विधायक अजय सोलंकी ने नगर परिषद में अपनी पार्टी की जीत का दावा किया और कहा कि राज्य सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों से जनता खुश है। नगर निगम शिमला में सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। सहब सोसाइटी से जुड़े ये कर्मचारी 10% वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। सहब सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष जसवंत सिंह ने कहा कि निगम प्रशासन द्वारा पिछले लंबे समय से उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नगर निगम की जनता से हर वर्ष 10% बढ़ोतरी के हिसाब से शुल्क वसूला जा रहा है, लेकिन सफाई कर्मचारियों के वेतन में नियमों के अनुसार वृद्धि नहीं की जा रही है।
2: एजीएम में जो हमारा 10% वार्षिक बढ़ोतरी होती थी, वो इन्होंने जो है इस बार बिल्कुल खत्म की। हालांकि जो है एजीएम में ये मुद्दा ही नहीं था, फिर भी इन्होंने जो अपना आप हमारा 10% खत्म किया, क्योंकि इन्होंने जो है आज जनता के ऊपर जो है 10% वृद्धि लागू कर दी है। अगर आपने जनता से लेने हैं तो हमें भी जो है 10% वृद्धि चाहिए। पहली बात यह है कि हमारा जो लेबर कोड में जो है 3 सालों से जो है अभी केस चला हुआ है। कमिश्नर साहब एक बार भी जो 3 सालों में जो हमारे से बातचीत करने नहीं आए हैं।
1: राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर मतदान दिवस पर संबंधित क्षेत्रों में भुगतान सहित अवकाश घोषित किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 26, 28 और 30 मई को संबंधित क्षेत्रों में सरकारी व निजी संस्थान बंद रहेंगे, ताकि अधिक से अधिक लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों और अधिकारियों को उसी दिन छुट्टी मिलेगी जब उनकी पंचायत और संबंधित क्षेत्र में मतदान होगा। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी ये अवकाश मान्य होगा। धर्मशाला के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में कल पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच आईपीएल का अहम मुकाबला खेला जाएगा। आरसीबी की टीम आज दोपहर कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंची, जहां विराट कोहली सहित अन्य खिलाड़ियों को देखने के लिए क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह रहा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30। नमस्कार।
3: प्रादेशिक समाचारों के बाद लीजिए आकाशवाणी शिमला से अब प्रस्तुत है सामयिक चर्चा। आज का विषय है बच्चों को भोजन के अलावा मानसिक प्रोत्साहन की भी आवश्यकता। वाचिका है राजकुमारी चंदेल।
1: भारत में बच्चों के पोषण की चर्चा अक्सर भोजन तक सीमित रह जाती है। ये मान लिया जाता है कि यदि बच्चे को भरपेट खाना मिल रहा है तो उसका विकास सही दिशा में हो रहा है, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक जटिल और गंभीर है। एक बच्चे के स्वस्थ विकास के लिए केवल रोटी, दाल और दूध ही पर्याप्त नहीं होते, बल्कि उसे प्यार, संवाद, खेल, सामाजिक जुड़ाव और मानसिक प्रोत्साहन की भी उतनी ही आवश्यकता होती है। कोविड-19 महामारी के बाद ये सच्चाई और स्पष्ट होकर सामने आई है। नई दिल्ली के बाल चिकित्सा गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर सरथ गोपालन बताते हैं कि हाल के वर्षों में बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे क्लिनिकों में पहुंच रहे हैं जो शारीरिक रूप से स्वस्थ दिखाई देते हैं, लेकिन मानसिक, भाषाई और सामाजिक विकास में पीछे रह गए हैं। ये स्थिति केवल बीमारी की वजह से नहीं, बल्कि महामारी के दौरान बच्चों के जीवन में आए बदलावों के कारण पैदा हुई। वे एक 5 वर्षीय बच्चे का उदाहरण देते हैं जो अपनी उम्र के अन्य बच्चों की तुलना में काफी पीछे थी। उसकी बोलने की क्षमता धीमी थी, वो सामाजिक रूप से कम सक्रिय थी और मानसिक विकास के परीक्षण में लगभग 3 वर्ष की बच्ची के स्तर पर पाई गई। जांच में कोई बीमारी सामने नहीं आई, लेकिन जब उसके पिछले 2 वर्षों की परिस्थितियों पर नजर डाली गई तो कारण स्पष्ट हो गया। लंबे लॉकडाउन, स्कूल बंद रहने, घरों में कैद जीवन, खेलकूद की कमी और बढ़ते स्क्रीन टाइम ने उसके विकास को प्रभावित किया था। यही कहानी अकेली नहीं है, देश भर में हजारों बच्चे इसी तरह के विकासात्मक अंतर का सामना कर रहे हैं। महामारी ने यह स्पष्ट कर दिया कि बच्चों का विकास केवल भोजन से नहीं होता, बल्कि अनुभवों, संवाद और सामाजिक वातावरण से भी होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बच्चे के मस्तिष्क का लगभग 90% विकास 5 वर्ष की आयु से पहले हो जाता है। यही वो समय होता है जब

मस्तिष्क में करोड़ों तंत्रिका संबंध बनते हैं जो सीखने, सोचने, भाषा, स्मृति और व्यवहार की नींव तैयार करते हैं। यदि इस अवधि में बच्चों को सही पोषण और मानसिक प्रोत्साहन नहीं मिलता तो उसका असर लंबे समय तक दिखाई देता है। भारत में बच्चों के पोषण की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के लगभग आधे बच्चे आयरन की कमी से प्रभावित हैं, 67% से अधिक बच्चे एनीमिया के शिकार हैं। ये केवल खून की कमी का मामला नहीं बल्कि मस्तिष्क और शरीर के समुचित विकास में बाधा का संकेत है। विशेषज्ञ बताते हैं कि आयरन, जिंक और

0: आयरन की कमी से बच्चों में सीखने की क्षमता कमजोर हो सकती है, स्मरण शक्ति प्रभावित होती है और उनकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता कम हो जाती है। इसी प्रकार ओमेगा 3 फैटी एसिड DHA मस्तिष्क संरचना और दृष्टि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोलीन नामक पोषक तत्व भी अब बच्चों के मस्तिष्क विकास के लिए अनिवार्य माना जा रहा है। बच्चों का पोषण जन्म के बाद नहीं बल्कि गर्भावस्था के दौरान ही शुरू हो जाता है। गर्भ में पल रहे शिशु का मस्तिष्क माँ के पोषण पर निर्भर करता है। यदि गर्भवती महिला को पर्याप्त आयरन, फॉलिक एसिड और अन्य पोषक तत्व नहीं मिलते तो बच्चे के विकास पर उसका सीधा असर पड़ता है। दुर्भाग्य से भारत में केवल 44% गर्भवती महिलाएं ही अनुशंसित अवधि तक आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां लेती हैं। यही कारण है कि विशेषज्ञ किशोरियों के स्वास्थ्य को भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। आज की स्वस्थ किशोरी ही कल की स्वस्थ माँ बनेंगी, लेकिन भारत में लगभग 59% किशोरियाँ एनीमिया से पीड़ित हैं। स्कूलों और समुदाय स्तर पर पोषण कार्यक्रमों को मजबूत करना इसलिए जरूरी है ताकि अगली पीढ़ी बेहतर स्वास्थ्य के साथ जन्म ले सके। हालांकि केवल पोषण पर्याप्त नहीं है, महामारी के दौरान लंबे समय तक घरों में बंद रहने से बच्चों का खेलना, दोस्तों से मिलना, बातचीत करना और सामूहिक गतिविधियों में भाग लेना लगभग बंद हो गया। इसकी जगह मोबाइल और टीवी स्क्रीन ने ले ली। यूनिसेफ का अनुमान है कि कोविड-19 के दौरान दुनिया भर में हर 7 में से एक बच्चे ने सीखने या विकास में गंभीर नुकसान झेला है। इसका मुख्य कारण बीमारी नहीं बल्कि सामाजिक संपर्क और खेल की कमी थी। इसी के साथ सामयिक चर्चा समाप्त हुई। नमस्कार।
1: सामयिक चर्चा आकाशवाणी शिमला से प्रसारित की जा रही थी। हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।
2: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी FM शिमला 103.7 MHz पर। दोपहर के 3:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए प्रोग्राम ओल्ड हिट्स। दोस्तों, पुराने गीतों का जादू कभी फीका नहीं पड़ता। इन धुनों को में वो अपनापन है जो सीधे दिल को छू जाता है। संगीत की दुनिया में कुछ नगमे ऐसे होते हैं जो बरसों के बाद भी उतने ही ताज़ा लगते हैं जितने कि वो अपने सुनहरे दौर में थे। तो आइए सुनते हैं सुनहरे दौर का के कुछ खास सदाबहार नगमे प्रोग्राम ओल्ड हिट्स में। प्रोग्राम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं पत्थर के सनम फिल्म से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मुकेश की, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: दोस्तों प्रोग्राम के बाकी के गीत आपको सुनवाएंगे इस ब्रेक के बाद।
1: अगर युवा ही चुप रहा तो बदलाव कौन लाएगा?
2: अब वक्त है मोबाइल से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचने का।
1: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में हर युवा बनेगा बदलाव की ताकत। आपका एक वोट तय करेगा आपके शहर का आने वाला कल। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान जरूर करें।
2: युवा जागेगा, हिमाचल आगे बढ़ेगा। पहले मतदान, फिर बाकी काम। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: आकाशवाणी एफएम शिमला से इस वक्त आप सुन रहे हैं ओल्ड हिट्स। दोस्तों पुराने गीत हर बार सुनने में एक नया एहसास दे जाते हैं, कभी मुस्कान बनकर तो कभी याद बनकर दिल में उतर जाते हैं। लीजिए सुनिए ये सदाबहार गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, तीसरी मंजिल फिल्म से। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, आरिवर्मन का संगीत।

0: दादाजी, हमारा शहर और बेहतर कब बनेगा?
1: जब हर घर से एक वोट निकलेगा बेटा।
2: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में अपने शहर के भविष्य के लिए 100% मतदान का संकल्प ले। एक वोट, साफ शहर, बेहतर सड़क, पानी और विकास की नई उम्मीद। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने मतदान केंद्र जरूर जाएं। घर घर से निकलेगी आवाज, इस बार कोई नहीं छूटेगा। 100% मतदान, मजबूत हिमाचल की पहचान।
3: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ओल्ड हिट्स आकाशवाणी FM शिमला से। दोस्तों, पुराने गीत यादों का वो कारवां है जो हर बार दिल को छू जाता है। सुनिए ये खूबसूरत गीत कारवां फिल्म से। आवाज़ लता मंगेशकर और साथियों की, मंजरी सुल्तानपुरी के बोल हैं, आर डी वर्मन का संगीत।

0: कुछ लोग वोट की कीमत पैसों, शराब या लालच से लगाते हैं, लेकिन हिमाचल की जनता जानती है, वोट बिकता नहीं, वोट भविष्य बनाता है। 17 मई को नगर निकाय चुनाव में ना किसी दबाव में आए, ना किसी प्रलोभन में, सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने विवेक और अधिकार से मतदान करें।
1: स्वच्छ सोच, निष्पक्ष मतदान। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी एफएम शिमला से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ओल्ड हिट्स, और प्रोग्राम का आखिरी गीत आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म कटी पतंग। आनंद बख्शी के बोल, आर डी बर्मन का संगीत।

दोस्तों, पुराने गीतों से सजी ये महफिल अब यहीं पर समाप्त होती है। आप यहीं बने रहिए आकाशवाणी FM शिमला के साथ। अभी आप सुन रहे थे ओल्ड हिट्स 103.7 MHz पर। आप हैं आकाशवाणी FM शिमला के साथ। दोपहर के 3:30 हुए हैं। अब युवा साथी अपना कार्यक्रम सुनेंगे युवाणी।

0: सभी युवा दोस्तों को सर्वेश पंडित का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी ट्यून इन हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला पर और सुन रहे हैं प्रोग्राम युववाणी। दोस्तों, आज 15 मई है और आज पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज, यानी अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। आज की दुनिया में बहुत कुछ बदल रहा है। लोग पहले से ज़्यादा कनेक्टेड हैं, पर इमोशनली कुछ दूर भी हो गए हैं। हम दिन भर मैसेजेस करते रहते हैं, कॉल करते हैं, ऑनलाइन रहते हैं, लेकिन क्या हम सच में अपने लोगों के साथ समय बिता पा रहे हैं? ऐसे समय में परिवार शब्द की इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाती है। परिवार सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, ये वो जगह है जहाँ हम बिना किसी दिखावे के अनफिल्टर्ड रह सकते हैं, जहाँ हमारी अचीवमेंट्स पर सबसे ज़्यादा खुशी होती है और परेशानियों में पहले साथ भी वही खड़े रहते हैं। लेकिन बदलती लाइफस्टाइल, बिजी स्केड्यूल और डिजिटल दुनिया के बीच क्या परिवारों के बीच दूरी बढ़ गई है? आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे परिवार के महत्व की, उसके बदलते रूप की और उस अपनेपन की जिसकी ज़रूरत आज पहले से कहीं ज़्यादा है। पर उससे पहले प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।
1: बम चिक चिक बम चिक बम बम बम चिक चिक बम।

दोस्तों, जब हम परिवार कहते हैं तो सिर्फ एक घर की बात नहीं करते, हम बात करते हैं विश्वास की, सुरक्षा की, अपनेपन की। बचपन से लेकर बड़े होने तक हमारी सबसे पहली सीख परिवार से ही शुरू होती है। बोलना, चलना, दूसरों की रिस्पेक्ट करना, ये सब हम किताबों से नहीं बल्कि अपनी फैमिलीज से सीखते हैं। पहले के समय में जॉइंट फैमिलीज आम हुआ करती थी। घर में दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन, हर एक रिश्ता एक अलग सीख देता था। आज समय बदल रहा है, अब न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ रही हैं। लोग काम और पढ़ाई के कारण अलग अलग शहरों में रहने लगे हैं, लेकिन परिवार, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसका महत्व कम नहीं होता, क्योंकि आखिर में हर इंसान को एक ऐसी जगह चाहिए होती है जहाँ उसे बिना किसी शर्त के स्वीकार किया जाए, और यही परिवार की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। इस टॉपिक पर हम यूं ही बात करते रहेंगे, तब तक के लिए लेते हैं।

साथियों, आज की लाइफ बहुत ही फास्ट हो गई है। हर इंसान अपने काम, करियर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इतना बिजी है कि कई बार रिश्तों के लिए समय ही नहीं बचता। एक ही घर में रहते हुए भी लोग अपने अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। कभी कभी बातचीत सिर्फ खाना खाया तक सीमित होकर रह जाती है। ये दूरी सिर्फ फिज़िकल नहीं, इमोशनल भी होती जा रही है। आज कई युवा अपने परिवारों से दूर शहरों में रहते हैं। उनके सपने बड़े हैं, संघर्ष भी बड़े हैं, लेकिन इसी

कई बार परिवार के साथ बिताए जाने वाले छोटे छोटे पल छूट जाते हैं। एक और बड़ी चुनौती है जेनरेशन गैप। बुजुर्गों की सोच और यूथ की सोच में अंतर होना नेचुरल है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब बातचीत कम और गलतफहमियां ज़्यादा होती हैं। परिवार को मजबूत बनाने के लिए सिर्फ साथ रहना काफ़ी नहीं, एक दूसरे को समझना भी ज़रूरी है। और शायद आज हमें सबसे ज़्यादा इसी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले गाने की ओर।

डियर लिसनर्स, आजकल मानसिक तनाव, एंग्जाइटी और अकेलापन बहुत नॉर्मल हो गया है। ऐसे समय में परिवार एक इमोशनल सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। कई बार एक छोटी सी बात, माँ की आवाज़ या घर के साधारण से माहौल मन को शांति देता है। जब दुनिया हमें जज करती है, तब परिवार हमें अक्सर वैसे ही एक्सेप्ट करता है जैसे हम हैं, और यही अपनापन हमें अंदर से मजबूत बनाता है। बच्चों की कैरेक्टर डेवलपमेंट में भी फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर घर का माहौल पॉजिटिव है तो बच्चे कॉन्फिडेंट और सेंसिटिव बनते हैं। आज के दौर में जहां हर चीज़ में कंपटीशन है, वहां परिवार हमें याद दिलाता है कि ज़िंदगी सिर्फ दौड़ नहीं है, कभी कभी रुक कर अपने लोगों के साथ बैठना भी ज़रूरी है। स्पेशली हमारे समाज में जहाँ रिश्तों और संस्कारों को हमेशा इम्पोर्टेंस दी गई है, वहाँ फैमिलीज़ सिर्फ एक सोशल अरेंजमेंट नहीं बल्कि इमोशनल सपोर्ट हैं। इसी के साथ आइए सुनवाता हूँ आपको प्रोग्राम का ये अगला गीत।

दोस्तों, आज इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ के मौके पर हमें खुद से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहिए। क्या हम अपने परिवार को अच्छे से समय दे पा रहे हैं? हम अपने करियर के लिए मेहनत करते हैं, अपने सपनों के लिए हार्डवर्क करते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए भी समय निकालना ज़रूरी है जो हर सिचुएशन में हमारे साथ खड़े रहते हैं। परिवार हमेशा परफेक्ट नहीं होते, मतभेद भी होते हैं, नाराज़गी भी होती है, लेकिन फिर भी हर रिश्ता एक कोशिश मांगता है। कभी एक फ़ोन कॉल, कभी साथ बैठकर चाय पी लेना, कभी बस किसी की बात ध्यान से सुन लेना, ये छोटी छोटी बातें रिश्तों को मजबूत बनाती हैं। आज की इस तेज़ दुनिया में अगर कई चीज़ें हमें बैलेंस्ड रखती हैं तो वो है अपनों का साथ। तो आज सिर्फ इस दिन को सेलिब्रेट ना करें, बल्कि अपने रिश्तों को थोड़ा और समय दें, थोड़ा और समझें, क्योंकि आखिर में ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत अक्सर परिवार होती है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले गीत की ओर।

तो दोस्तों, इस खूबसूरत विचार के साथ कि रिश्तों की असली गर्माहट जीवन को असली मीनिंग देती है, अब मुझे इजाज़त दीजिए। याद रखिए, घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, बल्कि प्यार, विश्वास और अपनेपन से बनता है। मैं हूं आपका दोस्त सर्वेश। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक, नई सोच और नई बातचीत के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, अपनों का ख्याल रखिए और बने रहिए FM शिमला के साथ।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवानी 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप है आकाशवाणी FM शिमला के साथ। शाम के 4 बजे हैं, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

प्रोग्राम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में। फिल्म है बदलते रिश्ते, अनजान के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

आकाशवाणी एफएम शिमला से इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। दोस्तों, अब आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में जुदाई फिल्म का ये गीत, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

कार्यक्रम का आखिरी बेहतरीन नगमा आपको सुनवाते हैं रास्ते प्यार के फिल्म से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम की, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

इसी गीत के साथ अब शैलजा चौहान को दीजिए इजाज़त। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं आकाशवाणी FM शिमला के साथ। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्स और एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। लीजिए पेश हैं हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम। आइए शुरुआत करते हैं सिरमौरी कार्यक्रम के साथ।

ए आकाशवाणी रा शिमला केन्द्र सो सिरमौरी कार्यक्रम शून्य है सभी जने के रोहित कुमार और राम राम। आज मारे बड़े जरूरी मुद्दे का है बात करने। पहला मुद्दा तो सो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस र दूजा मारे जरूरी हक र जिम्मेवारी अधिकार र कर्तव्य। अबे का वक्त आई गया जो परिवार और है बारे दू बतावने के र मनावने के दिन रखने लागे। दुनिया रे को शिव कोणे दे जाई समाज और शब्द शुरुआती ढांचा सिकुड़ बासो कुड़बेरी अहमियत जे हमें प्राणे वक्तों दी देखो तो शब्द ज्यादा है वो थी जब कबीले वो थी रापे माए कबीले खाइयों थी है मारियो थी है काटियो थी है तेसी वक्तो एक ही रह कर साथ चई लागो थी तो बे जीवंदे रोह सको थी है ना तो रह के कबीले आए जांगे पाऊं थी। पर अब वक्त बदली गया। अब तो लोग कहले कहले आपे आपे के रोंद है दादा दादे आमा बाबा बाए सब बे आपे आपे के लागे रहे। जो पोल के वक्त दा कुड़बाओ थिया सी अब चूके रहा पड़दा दे दी जोन पूछ टू तोड़ी केती बेरो तो चार चार पूछ तो तोड़ी कोठी रो थी। पर आजकल हमें बाहर पुंडे रोने लग रहे बाहर मूल को गई दो हमें शीके रो आपे अपने चूल्हे जाए रहे ठाएंगे ठाएंगे नोईया तो अब कुड़ बैसीते कम में ही रोने चाहते बाहर मूल कदे तो पौली दे ही कुड़बे छाड़े रोने रा रवाज थिया रो अब हमें बतेंद्र नकल कौनने लागे रहे जिनी नाय केती दिख तो आने लागे रही बाहर रे ठोगड़े जोने इंद्रे बारे दो सोचो रदबारे प्राणे तीके दे रोने रे कुड़बे रे ना फेरे बारे दो बतावने के प्राणे जमाने साई कोठे रोने रे शीख देने रे इंद्रे बारे दो सोचो रो 9 दिसंबर 1989 दा संयुक्त राष्ट्र संघ दा प्रस्ताव रखा जे हर साल कुड़बे रे बारे दो बतावने के परिवार दिवस मनाओ में

अकरे बात तो हमें खोरी करो, पर जिम्मेवारी समझ दे हमें का। तो अकरे बारे दो तो हमें बात की रो एरे एरो संविधान दो दे राखो, जे मारे अकसी तो मारे कुछ जिम्मेवारी बोस र सेब देखनी पड़ो। पहली इंदी थी नी संविधान दी दे रखती, पर बादोदा जो 42वां संशोधन हुआ मारे संविधान दा 1976 दा, तो बे कुछ जिम्मेवारी रिंती जे जरूरी तारे लोनी लोनी जिम्मेवारी, पर एक नागरिक होने री वजह से हम इंदिरा ध्यान रखना लागो रो इंदे 11 जो जरूरी जिम्मेवारी या 11 मौलिक कर्तव्य से बताए रखे। सबदा पहले तो जे संविधान रा पालन करना, जो मारे आजादी रे आदर्श हो से देखने ते इंदिरा पालन करना, मूल करे एकता बनाए रखने, मूल करे रक्षा रो तेंदिरी सेवा करने, भाईचारा बनावना रो जनानी रा आदर करना, अपने संस्कृति बचाने के रखने के तेनी के काम करना, अपना जो पर्यावरण सेव बचावना रो वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनावना मारे अच्छे बनने के सुधार करने के जो जरूरी असो, साजी संपत्ति जो मारे असो से संभाले रखनी, केली रो कट्ठे जो साजे काम असो तेनी कोने रे कोशिश करने। हेरो बादोदा एक 11वां जोड़ा जे 14 सालों तोड़ी री जो छूट असो तेनो पढ़ने रा मौका देना। मौलिक अधिकार जो मारे जरूरी अक असो तेनी रे बारे दी जरूरी बात हो, ए नीव राखो को शिव मूल करे, जब लोग अपनी जिम्मेवारी समझ ले तब आजादी रे मायने व समझ ले, ये बाट दिखाने रा काम करो, अच्छे समाज बनाने री मदद करो, इंदा हमें अपना न बल्कि रेकर आप ध्यान रखो, पूरे समाज रा रखो, सोबी रे बोले रा ध्यान रखो, इंदे अपने मोर्जियो सो एनी जोबरी एन कुएं कराए सकते, जे जिम्मेवारी हम होगा कुएं लाद ले इन्हीं लागू करने के हमें अदालतों दे जाए सको। तो सब दो बाद ये बोल सको जे जैसे हमें अपने अकरे बात करो तैसे हम वो बात अपने जिम्मेवारी को नहीं पड़ो रो से सोचने पड़ो समझने पड़ो, तब हमें आगे बढ़ सकते एक अच्छा समाज बनाए सको, अच्छा परिवार बनाए सको, अच्छा मुल्क बनाए सको और पूरे जो दुनिया दे अच्छे रह सको खुश रह सको। तो ये बात हमें अकरे रो जिम्मेवारी रे बारे देखिए एदा बाद सुन दे एक कल्पना तोमर रो सुलेखा बरशांटारी आवाज़ दा प्यारा सा लोक गीत।

ये सुना तुम्हें प्यारा सा लोकगीत। अबे वक्त भी गया तो अबे मिल रहे सिरमौरी कार्यक्रमों दे त्वारे तब तुड़ी के सोबी के राम राम।

हुई दाढ़ चाउड़ साथ ही सलाद भी होना चाहिए। जितनी शारीरिक क्षमता हुआ तितरो हमा खानो चाहिए। खानो खाने बाद आराम करना चाहिए। राची खानो जितनी शीघ्र खाए सकी तितरी शीघ्र हमा खानो चाहिए। खानो अड़को चाहिए खानो तो जून पचना ले भी आसान हुआ। खानो खाने बाद 100 कदम हांडिया बाई तरफ ले 48 मिनट तई सुतनो चाहिए। इता का खाण शीघ्र पचा तो ई मांसाहार या तबे जंक फूडा का हमा दूर रहनो चाहिए। मौसम दे जून भी फला 100 जरूर खाने चाहिए। खाना खाँदा भी ज़्यादा पानी नहीं चाहिए पीणो। हमा देसी घी चाहिए खाणो। इता का दिमाग शांत हुआ। इतना साथी ज़्यादा हम चाह भी नहीं तो ही मसालेदार खानो नहीं खानो चाहिए। और जैसे कि व्यायाम और तित्रो चाहिए कौनो जिता का हम शांत नहीं लगते। खानो हमेशा ताज़ो तो ही गर्म चाहिए खानो जो पचना ले बड़ो ज़रूरी है। मानसिक तो ही शारीरिक संतुलन ही आयुर्वेदा आयुर्वेद इलाजा का बीमारी जोड़े का खत्म हुआ तो ही इता का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होंदो। सब दवाई प्राकृतिक चीज़ा का बोना। इत घरेलू नुस्खे भी हुआ ए दवाई लेना साथी परहेज ला करनो तेई इना दवाइयों असर हुआ। अगर हमें परहेज ना करी ता दवाई खानियों कोई फायदा नहीं। ता आयुर्वेद एक प्राचीन चिकित्सा विज्ञान है जून कम का कम 5,000 वर्ष का ज़्यादा भारत दे प्रचलित है। जो प्राचीन चिकित्सा पद्धति पहले ही वेदा दे तो ही पुराणा दे लिखी नहीं आ। आजकल आयुर्वेदालय योगा साथी सभी पारंपरिक प्रथा साथी एक दोसा आयुर्वेदिक खोज भारत दी हुए ने तो इन्दे ज़्यादा लोग आयुर्वेद उपयोग करा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1917 दे इताले मान्यता देने तो आयुर्वेदा दे बड़े सारी जड़ी बूटियों इस्तेमाल हुआ जो प्राकृतिक रूपा का शरीर ले फायदा पहुँचावा जो हम अपने रोजमर्रा जिंदगी दी लेनो चाहिए। जनों की तुलसी हुए ता जुखाम खूंगी तो बुखारा ले जो बड़ी बढ़िया हुआ। इतना साथ ही हुई कच्चे अर्ज संक्रमणा का जो हम बचावा तो शरीर सूजन भी काम करा। नीम जने कि हमारे त्वचा का कोई रोग हो या थे खून शुद्ध करना ले जो बड़ा बढ़िया। आवनो के हो इत विटामिन सी मिला तो जो रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ावा। गिलोय और बुखार तो कमजोरी दी भी जो फायदेमंद आ। इत साथ ही अश्वगंधा शरीर ले शक्ति तो मानसिक शांति दया। एलोवेरा त्वचा तो पचना ले जो बड़ी जरूरी है। इन्हें सब जड़ी बूटियों प्रयोग सदी का उन्दो लागो न आज भी लोग इतना का फायदा लागे न लेंदे। आयुर्वेदो सभी का बड़ो फायदो आ कि इतो इलाज प्राकृतिक का तो इते दुष्प्रभाव काम आ। आजकल मानसिक तनाव एक बड़ी समस्या गे बने। छोट ऊपरी क्षय तनाव का परेशान आ। कर्मचारी कामे दबावा का परेशान आ। तनावे वजह का नींद नहीं आती मुंड मडा लगा अवसाद जनी समस्या हुआ। ता आयुर्वेदा दे ध्यान योग तो प्राणायाम का मानसिक शांति प्राप्त करने उपाय बतावा। रोज कुछ वक्त आदि ध्यान करने का मन शांत रहा। ता आयुर्वेद मानव जीवन ले प्रकृतियों अनमोल वरदान आ जो ना सिर्फ बीमारी दूर करा बल्कि आदमी ले शारीरिक मानसिक तो आध्यात्मिक रूपा का मजबूत बढ़ावा। आज जरूरी आ कि हमा आधुनिक जीवन शैली साथी आयुर्वेद सिद्धांत भी अपनाने चाहिए। अगर हर आदमी आयुर्वेद ले अपने जीवन हिस्सों बनावा ता सो स्वस्थ सुखी तो निरोगी जीवन जी सका। ता श्रोताओं जो थोड़ी जानकारी अभी सुनी एक बढ़िया जो लोकगीत।

लोक गीत सुने हैं, उर्मिल कदर साथी गाई करा है। गल करनी हाँ दोनों प्रदूषण के बारे च। देखा अज जरा पर्यावरण आ, चाहे धरती पानी पानी आ जंगल ये या जमीन ही हवा आकाश ये सब जो कई तरह के प्रदूषण की वजह से दूषित जैसे

ये आकाशवाणी रा शिमला केंद्र से सौंझ के ठीक 6:35 और 55 सेकंड रा वक्त हुआ तो सुना तुसे अपना कुलवी कार्यक्रम।

सब इन पहले कार्यक्रम सुनने वाले आम तमाम श्रोताओं वे प्रेमचंद की तरफ ना नमस्कार। तेरे अजी उस के कुल भी कार्यक्रम ना सा गपशप लाणी अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस रे बारे ना तसंगे देवी अडिंबा वे समर्पित डूंगरी मेला यानी कि डूंगरी जाच रे बारे ने भी थोड़ी जानकारी साझा करनी और देशा प्रदेशा री उस की नवी ताज़ा खबर भी लाणी तसंगे बेई बेई आसा बांका बांके मीठे मीठे लोकगीत भी सुनने और मज़ा लेना है ना जी। तो ऐसा उस के कुल भी कार्यक्रम री रूपरेखा तेरा जी उस के कार्यक्रम आसा सभी ने पहले एक शोभला जी लोकगीत मोती राम ठाकुर वाली आवाज़ा ने सुनना तो लिया जी सुना तुसे शोभला जी लोकगीत।

बाजू ढोलकू रामा दासी है, ए सुनू तुसे बांका जी लोक गीत। श्रोताओं, आज सा 15 मई यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, कैलेंडर पेंदे तरीक रोज बदलती रहो अस, पर आज की तरीक अस अवे 23 जड़ेरी याद दिलास, जूनी संघ अस इसे वे खिल और मैका सी। आज का रोज अस वे याद दिलास कि दुनिया की सभी ने बड़ी ताकत और सभी ने सुरक्षित जगह सरा परिवार स। प्रसिद्ध कवि मैथिली शरण गुप्ते और बोलू सा कि घोर ही सोचे गस जोखे प्रेम और शांति रा वास होस। अक्सर असे ऊंचाई वे सुंगने री ओड़ा ने बिसरास कि आ सवे थामन वाले औत आसरे गौर ने सी। उस कई कार्यक्रम आसा चर्चा के नी कि यही बदलते जमाने ना सा अपने परिवार वे केंडे मजबूत बनाई सकसी और केंडे समाज री असमानता वे खत्म करिया अपने बच्चे वे एक बेहतर भविष्य दे सकसी। ताय रजी अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा 1993 ने करी थी, जूनीरा मकसद वैश्विक समुदाय ना परिवार रे महत्व वे रेखांकित करना सा। परिवार समाज री एक बुनियादी इकाई सा, जोखे एक बच्चा संस्कार सीखा सा तो संगे एक बुजुर्ग सम्मान और सहारा पास। वर्ष 2026 अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की थीम सा परिवार असमानता और बाल कल्याण। यह विषय आज के दौरे री तीन कड़ू सच्चाई वे जोड़ा सा। पहला आर्थिक असमानता, आज कई परिवार संसाधन की कमी के कारण अपने बच्चे वे सौ शिक्षा और पोषण नहीं दे सकते जो तिन्हरा अधिकार स। दूजा डिजिटल डिवाइस, 2026 री ए युगाना जूनी परिवार है तकनीक करी पहुँचनिया थी तीनरे बच्चे पिछड़ते लागे सी। ता त्रीजा बाल कल्याण, समाज ने बढ़ती असमानता रा सभी ने बड़ा असर बच्चे री मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पेंदे पौड़ा स। एक मजबूर परिवार ही इन असमानता रे बिच ना सुरक्षा कवरा कौम किरा सा। ये तसेंगे संगे परिवार न चुनौतियाँ भी सी, जेंडे की स्मार्टफोन रा साया। आज एक ही कैमरे ने बैठे दे परिवार रे चार लोका अलग अलग दुनिया न खोए दे वासी, यानी कि सारे आप अपने फोना न व्यस्त वासी और तीना वे की दूजे संगे गलबात के नर भी वक्त नहीं आंदा। तेरा जी पारिवारिक बंधन मजबूत करने तीन जरूरी सा कि पूरे रोजन कम से कम एक बार परिवार संग बिछिया रोटी खानी और बिना मोबाइल रे गलबात करनी। गौर के जो बुजुर्ग असी तीनरा अनुभव गूगल सर्चन भी ज़्यादा सा, तीना वे ऐसा सुनना और वक्त देना। तो एक गल होर सा कि समानता की शुरुआत घोरा ना सा, परिवार ने बेटा और बेटी रे बीच ना कौमेरे बंटवारे रे बीच ना कोई भेदभाव नहीं रखना। जब घोरा ने समानता होली तेवे समाजन भी असमानता खत्म होनी है ना जी। आखिर ना वह बोली सका से कि दुनिया री भीड़ा न तू सवे कोई भी भूली सका सी, पर एक परिवार एंड आवास जोखे कि हर हलता और बोक्ता न दूसरा साथ नवास। परिवार एक एंडा पेड़ सा जूनी री जड़ा भले ही जमीना भीतरे होली, लेकिन सौ है पूरे पेड़ा वे मजबूती दिया सा। हो जासा सभी यही अंत

राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर संकल्प लेना कि अस अपने घर प्रेम सहयोग और समानता का वातावरण बनाना है ना जी। तो ये थोड़ी जी गलबात अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस के बारे ना। तो इतना एवे सुनना सा एक होर लोकगीत हीरा लाल भारती की आवाज़ है ना। तो लिया जी मज़ा ले लिया तुसे ही शोभ ले जी लोकगीत तरह जी।

मनाली रे तेई ऐतिहासिक और भव्य मिलेरी जूनी व्यासे ढूंगरी मेला यानी कि ढूंगरी जाच रे नान भी जाना सी। यह सिर्फ एक जाच नहीं थी बल्कि असरी आस्था प्रकृति और कुलवी संस्कृति रा एक एंडा सतरंगी संगम सा जूनी री छट्टा हृदय बना सा। ता हेरा जी ढूंगरी मेला देवी अडिंबरे जन्मदिन रे रूपा न मनाली न लगभग 1 किलोमीटर दूर ढूंगरी मंदिर रे सोलन मनासी। यही मेले वे हर वर्ष जेठ महीने री पहले प्रविष्ठन फेटे त्राई प्रविष्ठा तक मनासी। मेले रे पहले रोज नुसोगी ग्रान शंख नारायण और श्याल ग्रान श्याली महादेव जासी जो पहले गटोतकछरी जगह पेंदे जासी। हालांकि गटोतकछ देवी अडिंबरा बेटा स पर यही वे देवी रे बहन और अंगरक्षर रूपन मैनासी। जूनी रे कारण सारे देव देवी अडिंबरे मंदिर में जाने पहले गटोतकछरे जगह पेंदे जरूर जासी। गटोतकछरे वे जाने बाद देवर आपन मिलना उस ता अगले रोज देव देवते गटोतकछरे वे भी जासी। यही रोज कार्तिक स्वामी भी जासी, गोशाले रे नाग भी जासी, ता बाड़के रे देवी भी जस, संगे देव गौरी और शिरगण भी जासी। ता मेले रे अगले रोज यानी त्रीजे रोज विशिष्ट रीति भी मेलन पूजा सी। कुलंगन जगदम्बनी ऋषि ता बुरवन भी देव जस। कई बार ता 15-16 देव देवते इकट्ठा हो सी पर 8-10 देवता जरूर मेले में जासी। जे वे सारे देव देवते त्रीजे रोज एजासी तेबे देवी अडिंबा दुई त्राई फेरे लाया खुशी न नौचिया संगे यही रोज देव खेल भी हो सा। ता ढूंगरी जाचरा सभी न बड़ा आकर्षण हो सा देव मिलन। जाचन जेबे ऊरे पोरले ग्रां रे देव देवी रे रथ सहजी धजिया देवी अडिंबा वे श्रद्धा सुमन अर्पित के न तइये ढोल नगाड़े करनाल और रणसिंगेरी गुंजरे बिचाना मंदिर सोलन पूजा सी। तो यह दृश्य इतना अलौकिक हुआ सा कि हेरन वाले भी मंत्रमुग्ध हुआ सी। ऐसा जाचरी खास गल है भी सा कि जाचन मनु ऋषिरा रथ नहीं आंदा कि बे कि देवी अडिंबर रथ न एक मोहरा मनु ऋषिरा हुआ सा। तसंगे मनु ऋषि और माता अडिंबरा बाजा भी एक हुआ सा मतलब कट्ठे होस। जो देव देवते जाचा वे आए दे होसी ते चौथे रोज नेड़े तेड़े रे ग्रां में जासी जोखे की खोल जाच होस। ए खोल जाच त्राई ग्रां होसा मनाली ग्रां नसोगी ग्रां और छाल ग्रां। इत्थ संग ए जाच खत्म भी होस। तेरा जी ढूंगरी जाच केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं थी बल्कि आसरी समृद्ध कुलबी संस्कृति रा आईना भी सा। ओखले लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा ना जाचा वेजा सी और जब ढोलेरी थापा पेंदे कुलबी नाटी पौड़ा सा तो मेले न आए दे पर्यटक भी नाटी ना नौचने तय मजबूर हुआ सी। ओखली हस्तशिल्प कला होता संगे बुणुए दे पोटू शाला और टोपी न केवल ओखले लोकावे बल्कि देश दुनिया न आए दे पर्यटकावे भी मंत्रमुग्ध कीरा सी। मेले रे बाजारन मिलन वाला देशी व्यंजन ऐसा जाचा वे चार चांद लास। तर अजी बदलदी दुनिया संगे ब्यासा वे जाचा जनीचा अपनी जड़ा न जोड़िए रखा सी। ढूंगरी जाचा सावे ऐ संदेश दिया से कि चाहे असे आधुनिक तारी केतरी भी ऊंचाई छुंगले पर जो अपनी संस्कृति और लोक परंपरा न सुकून सा जो मजा सा सब कोई से होते नहीं आती है ना जी। ता देवी अडिंबारा आशीर्वाद आसा तुसा सभी पेंदे सदा लोड़ी रहू ऐ मेरी कामना सा। ऐ थी थोड़ी सी जानकारी ढूंगरी जाचरे बारे न जो कि आजकल मनाली न चली सा।

और देश दुनिया रे लोका ये सब हिरने तैयें तोखे पूजा सी। तो संगे वे बोक्त हुआ देश अपदेश रही उसकी नवी ताज़ा खबर आ रहा। तो उसकी नवी ताज़ा खबर भी आई सी। तो उसकी पहली खबर से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और डूणू की विद्यार्थी सरकार री प्राथमिकता सा और सरकार तीन री तैयें संवेदनशील सा। तीन ओज नई दिल्ली ने दसू की राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी है नीट यूजी 2026 री परीक्षा 21 जून में दोबारा आयोजित करने की घोषणा करी। तीनों डोणू की परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी वे 14 जून तक प्रवेश कार्ड उपलब्ध होने। तीनों भी डोणू की एनटीए ना ठोस सुधार की जरूरत सा। तीनों दसू कि भविष्य में कोई भी तैरी अनियमितता वे रोकने की तैयें परीक्षा प्रणाली वे सुदृढ़ करने के उपाय करने। धर्मेंद्र प्रधान और डोणू की राज्य सरकार भी सरकार नहीं चाहती कि कोई भी योग्य विद्यार्थी फर्जी उम्मीदवार धांधली या शिक्षा माफिया की साजिश के कारण अपने अधिकारों से वंचित हो। अगली खबर से प्रदेशों 51 शहरी निकाय की तैयें 17 मई में होने वाले चुनावों में लिया उज त्राई वजन खुलेआम चुनाव प्रचार खत्म हुआ। दो ही प्रमुख दल है भाजपा और कांग्रेस से चुनाव प्रचार ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। पूर्व केंद्रीय मंत्री व वरिष्ठ भाजपा नेता अनुराग ठोकर और भी आज सोलन नगर निगम चुनाव में लिया पार्टी प्रत्याशी तैयें प्रचार करू। एक चुनावी जनसभा में संबोधित करते हुए तीन कांग्रेस पार्टी पेंदे झूठे वायदे करिया लोगों वे गुमराह करना आरोप लाओ। तीने यह भी दावा करूँ कि सोलन सहित राज्य रे होरी जगह भी शहरी निकाय चुनाव ने भाजपा की जीत होनी। अगली खबर से नगर निगम शिमला ने सफाई कर्मचारी है अपनी मांगा लिया ओजन फेटे अनिश्चितकाल हड़ताल शुरू करी। सैब सोसाइटा ने जुड़े दे ये कर्मचारी 10% वेतन बढ़ोतरी की मांग लागे दिस कर दे। सैब सफाई कर्मचारी यूनियन रे अध्यक्ष जसपंत सिंह होरे डूणू की पिछले लौमे वक्तन होरे निगम प्रशासन तीनरी मांगा वे नज़रअंदाज लागे ऐसी कर दे। तीने ए भी डूणू की नगर निगमाना रहने वाले लोगों ना हर वर्ष 10% बढ़ोतरी रे सावन शुल्क ला उस वसूलना लेकिन सफाई कर्मचारी रे वेतनाना नियम रे अनुसार वेतन वृद्धि लाई दी करनी। तो अगली खबर से आईपीएल रे बारे न धर्मशाला रे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम न कल पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर रे बीच सा आईपीएल रा बड़ा अहम मुकाबला होना खेलना। आरसीबी री टीम आज दिहाड़ी कांगड़ा एयरपोर्टा पेंदे पूजी जोखे विराट कोहली संगे होर खिलाड़ी वे हिरने तैये क्रिकेट प्रेमियों ने खासा उत्साह रहो। पंजाब किंग्स री टीम वे 10 और 14 मई वे धर्मशाला न अपने दूए मैचा ने हारा का सामना करना पाओ थी। प्लेऑफ ना जगह बनाने तैयें पंजाब किंग्स री टीम वे कल का मैच जीतना बड़ा जरूरी सा। तो यह थी उसकी नवी ताज़ा खबर। तो वे ऐसा नाटी रश ट्राला लाना महेश शर्मा और संघ साथियों लिए आवाज़ न तले आजी ले लिया तुसें मजा ऐसा शोभला जी स्तुति रहा।

0: कार्यों में व्यस्त भी होंगे।
1: बिल्कुल जी निशा जी, व्यस्त होंगे क्योंकि इन दिनों गर्मियों का मौसम चला है, तो गर्मियों के मौसम में इन दिनों हमारे किसान भाइयों के काम काज कुछ बढ़ से जाते हैं। विशेष तौर पर इन दिनों जो है धूप भी काफी तेज होती है, तो हमारे किसान भाइयों को जो है सुबह शाम ही अपने काम काज को निपटाना होता है। तो निवेदन किसानों, हम आपसे यही करना चाहेंगे कि इन दिनों गेहूं और जौ की कटाई का कार्य जहाँ आपने नहीं किया है, तो उसको भी जो है समय रहते पूरा कर ले। समय पर कटाई करे, अच्छे तरह से गहाई करे, और उसके बाद जो है अच्छे तरीके से अगर हमारा किसान भाई भंडारण करता है तो अनाज जो है सुरक्षित उनका रह पाता है।
0: जी बिल्कुल। तो अशोक जी, आज के इस कार्यक्रम में क्या कुछ खास लेकर आए हैं हम अपने किसान बागवान भाई बहनों के लिए, बता देते हैं। आज हम काम की बातों में बात करेंगे प्राकृतिक खेती में फसल सुरक्षा हेतु उपायों के बारे में, और साथ ही पहाड़ी गीतों से हमेशा की तरह होगा मनोरंजन और जानकारी पूर्ण बातचीत आपको सुनवाएंगे। विषय जिसका रहेगा चिरायता, मुश्क बाला और जंगली गेंदे की प्रदेश में व्यावसायिक खेती।
1: बिल्कुल जी, तो निशा जी कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहेंगे काम की बातों से। काम की बातों के अंतर्गत किसानों को बताएंगे कि प्राकृतिक खेती में फसल सुरक्षा हेतु आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं।
0: जी
1: किसानों, प्राकृतिक खेती की जब बात आती है तो आप इसको अपना सकते हैं। अच्छे तरीके से अगर आप इसको अपनाते हैं तो आपका खर्चा भी कम होता है, और फसलों पर लागत जब कम आएगी तो आपको अच्छा उत्पादन और अच्छा मुनाफा आपको मिल सकता है।
0: जी बिल्कुल।
1: प्राकृतिक खेती में फसल सुरक्षा के उपायों की जब बात आती है तो इसमें रसायन मुक्त विधि से जो है कीट नियंत्रण करना जो है प्रमुख हो जाता है। और प्राकृतिक कीटरोधी की जब बात आती है तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे नीमास्त्र के बारे में। नीमास्त्र रस चूसने वाले कीड़े, छोटी सुंडियां, झिल्लियों के लिए उपयोगी रहता है, और इसका उपयोग सफेद मक्खियों, एफिड, जसिड, दीमक, सूत्रकृमि एवं मिली बग के प्रबंधन में प्रभावशाली रहता है। रस चूसने वाले पत्ती हॉपर और फली छेदक कीटों को नियंत्रण करने के लिए जो उपयोगी रहता है किसानों।
0: जी बिल्कुल अशोक जी। और देखिए, ये कीटरोधी अगर आपने बनाना है तो इसके लिए सामग्री आपको चाहिए। पानी 100 लीटर, देसी गाय का मूत्र 10 लीटर, देसी गाय का गोबर 2 किलोग्राम, और नीम की हरी पत्तियां या फिर नीम के सूखे फल 5 किलोग्राम। इसे बनाना किस तरह से है आपने, तो किसान भाइयों, ड्रम में पानी डालकर उसमें गौमूत्र मिलाने के बाद इसमें देसी गाय का गोबर मिला लें। अब इसमें नीम की छोटी छोटी टहनियां पत्तों समेत टुकड़ों में डालकर डालें, और इस घोल को घड़ी की सुई की दिशा में अच्छे से धीरे धीरे मिलाकर बोरी से ढक दें। इस मिश्रण को 48 घंटे बोरी से ढककर छाया में रखें, और इस मिश्रण को आप सुबह शाम लकड़ी की सहायता से घड़ी की दिशा में 1 मिनट तक घोलें।
1: बिल्कुल जी, सर में बात चली है प्राकृतिक कीटोधी में नीमास्त्र बनाने की विधि के बारे में। तो इसके भंडारण अवधि काल की जब बात आती है तो इसको 6 महीने तक भंडारित आप कर सकते हैं। और उपयोग विधि की जब बात आती है तो किसानों, 48 से 96 घंटे बाद कपड़े से छानकर फसल पर छिड़काव करने के लिए तैयार हो जाता है। इस बात का आप ध्यान रखें कि इस पर धूप या बारिश का पानी नहीं पड़ना चाहिए। साथ ही साथ सर वो अग्नि अस्त्र भी आप बना सकते हैं, और अग्नि अस्त्र के उपयोग की जहाँ तक बात है तो अग्नि अस्त्र का उपयोग रस चूसने वाले कीड़े, छोटी सुंडियाँ, इल्लियों, रस चूसने वाले पत्ती हॉपर और फली छेदक कीटों को नियंत्रण करने के लिए जो है इसका उपयोग आप कर सकते हैं। और बनाने की विधि की जहाँ तक बात आती है तो 1 एकड़ के लिए जो सामग्री आपको चाहिए होती है, इनमें नीम के पत्ते आप लें 2 किलोग्राम, तंबाकू पाउडर आप लें 500 ग्राम, तीखी हरी मिर्च की चटनी आप लें 500 ग्राम, देसी लहसुन की चटनी आप लें 250 ग्राम और देसी गाय का मूत्र आप लें 20 लीटर।
0: जी बिल्कुल अशोक जी। सामग्री की ये बात हुई तो बनाने की विधि की बात कर लेते हैं। आपने क्या करना है किसान भाइयों, की कुटे हुए नीम के पत्ते, तंबाकू पाउडर, मिर्च की चटनी और लहसुन की चटनी को गौमूत्र में मिलाकर धीमी आंच पर ढक्कन से ढककर उबाल लेना है। इसके बाद मिश्रण को 48 घंटे के लिए रख दें, और इस मिश्रण को सुबह शाम लकड़ी की डंडी के साथ घोलें। और भंडारण की बात करें तो इसको किसान भाइयों 3 महीने के अंदर उपयोग कर लेना चाहिए, और इस मिश्रण का 6 से 8 लीटर घोल जो है वो आपने 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ की फसल में छिड़काव करना है। और आपने ध्यान रखना है इस पर धूप और बारिश का पानी नहीं पड़ना चाहिए।
1: जी हाँ निशा जी, बात चली है प्राकृतिक खेती में फसल सुरक्षा हेतु उपायों के बारे में। तो इसमें ब्रह्मास्त्र की जब बात आती है तो इसका उपयोग सूंडियों, इल्लियों के नियंत्रण के लिए जो किसान भी आप कर सकते हैं। और बनाने के लिए सामग्री की जब बात आती है तो देसी गाय का मूत्र आप लें 20 लीटर, इनमें नीम, करंज, सीताफल, बेल, सफ़ेद अमरूद, अरंडी और पपीते के पत्ते भी जो है सामग्री में आप ले सकते हैं। और इनमें इस बात का आप ध्यान रखें कि किन्हीं 5 पौधों

0: के पत्ते 2-2 किलोग्राम आप ले लें। और बनाने की जब विधि की बात आती है तो इन वनस्पतियों में से किन्हीं 5 वनस्पतियों के पत्ते की चटनी आप बना लें और इस चटनी को गौमूत्र में डालकर धीमी आंच पर एक उबाल आने तक गर्म कर लें। सनु, इस बात का भी आप ध्यान रखें कि इसके बाद 48 घंटे तक ठंडा होने के लिए इसको रख दें और दिन में 2 बार धीरे धीरे 1 मिनट के लिए घड़ी की सुई की दिशा में घोलकर इसको हिलाएं। तैयार होने के बाद इसको छानकर मिट्टी के बर्तन में भंडारित आप कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल। और भंडारण की अवधि की बात करें तो आप इसे 6 महीने तक भंडारित कर सकते हैं। और उपयोग किस तरह से करना है, आपने 200 लीटर पानी में 6 लीटर ब्रह्मास्त्र मिलाकर 1 एकड़ फसल के लिए आप छिड़काव कर सकते हैं। ध्यान में आप कुछ एक बातें रखें कि इसे तैयार करने और भंडारण के लिए मिट्टी के बर्तन का प्रयोग सबसे अच्छा होता है। इसके लिए आप तांबे के बर्तन का प्रयोग ना करें और चटनी जो है वो कुंडी सोटे की सहायता से कूटें। इसके लिए आप ग्राइंडर मिक्सर का प्रयोग ना करें। इसके बाद बात कर लेते हैं दशपर्णी अर्क की। ये जो दशपर्णी अर्क है ये तना छेदक और अधिक हानि पहुंचाने वाले कीटों के प्रति बहुत लाभकारी है। ये सभी प्रकार की सुंडियों और रस चूसक कीटों के लिए प्रभावशाली होता है और इसका प्रयोग करने से फल की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होती है और पौधों के संरक्षण उपायों की लागत में भी कमी आती है।
0: जी अक्सर हम बात करेंगे दशपर्णी अर्क बनाने के लिए सामग्री के बारे में। तो पानी आप लें 200 लीटर, देसी गाय का मूत्र आप लें 20 लीटर, देसी गाय का गोबर आप लें 2 किलोग्राम। इसके साथ साथ पपीता, कड़वा करेला, हल्दी, अदरक, अनार, अमरूद, कनेर, कसौंदी, बबूल, सहजन, अर्जुन, गिलोय, चिरायता और पलास, इनमें से जो है किन्हीं 10 पौधों के पत्ते 2-2 किलोग्राम जो है आपने लेने हैं। हल्दी पाउडर आप लें 500 ग्राम, अदरक की चटनी आप लें 500 ग्राम, हींग पाउडर आप लें 10 ग्राम, तंबाकू पाउडर आप लें 1 किलोग्राम, तीखी हरी मिर्च आप लें 1 किलोग्राम और देसी लहसुन की चटनी आप लें 500 ग्राम।
1: जी
0: किसान, बनाने की विधि की जब बात आती है तो गोबर व मूत्र को पानी में अच्छी प्रकार घोलकर 2 घंटे के लिए रख दें। फिर इसमें हल्दी का पाउडर, अदरक की चटनी, हींग के पाउडर को लकड़ी की डंडी से अच्छी प्रकार मिलाकर 24 घंटे के लिए छाया में रखें। इसके बाद एक बार फिर लकड़ी की डंडी से हिलाकर इसमें तंबाकू का पाउडर व तीखी मिर्च अच्छी प्रकार से मिलाकर 24 घंटे के लिए रख दें।
1: इसके बाद आप 10 प्रकार के पौधों के 2-2 किलोग्राम पत्तों को इस तैयार मिश्रण में डालकर दबा दें और फिर इस मिश्रण को बोरी से ढककर 30 से 40 दिन के लिए रख दें। इस दौरान इस मिश्रण को सुबह शाम आपने घोलना है। और भंडारण की बात करें तो इसका उपयोग 6 महीने तक ही आप कर सकते हैं। और दशपर्णी अर्क तैयार होने के बाद 6 से 8 लीटर अर्क को 200 लीटर पानी में डालकर आप 1 एकड़ की फसल में छिड़काव कर सकते हैं।
0: सानू, इसके साथ साथ बात करेंगे थ्रिप्स रोधी के बारे में। तो इसका उपयोग सब्जियों और फूलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीट पतंगों जिनमें की थ्रिप्स के प्रबंधन के लिए इसको किया जाता है। थ्रिप्स ग्रसित पौधों की पत्तियां ऊपर की ओर मुड़नी शुरू हो जाती है जिससे पौधे धीरे धीरे सूख भी जाते हैं। थ्रिप्स रोधी कीटास्त्र बनाने के लिए जो सामग्री आपको चाहिए होती है, इनमें पानी आप लें 200 लीटर, अग्निअस्त्र 3 लीटर और ब्रह्मास्त्र जो है आप 3 लीटर इसके लिए लें। बनाने की विधि की जहां तक बात है तो अग्निअस्त्र ब्रह्मास्त्र को जो है आप मिला लें और अग्निअस्त्र और ब्रह्मास्त्र को पानी में मिला लें। उपयोग करने के लिए ये तैयार हो जाता है। भंडारण अवधि काल की जहां तक बात है तो तैयार होने के बाद साथ के साथ इसका उपयोग आप कर सकते हैं।
1: जी
0: उपयोग विधि के लिए 3-3 लीटर अग्निअस्त्र और ब्रह्मास्त्र को 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ की फसल पर जो है छिड़काव आप कर सकते हैं। तो किसान भाई और बहनों, ये तो थी कुछ एक जानकारी प्राकृतिक खेती में फसल सुरक्षा हेतु उपायों के बारे में। अब निशा जी, कार्यक्रम में समय हो चला है किसानों को एक लोकगीत सुनाने का। तो किसान भाई आइए सुनते हैं कृष्ण लाल सहगल की आवाज में प्यारा सा लोकगीत।

0: किसान भाइयों, आपने सुना कृष्ण लाल सहगल की आवाज़ में ये लोकगीत। अब लोकगीत के बाद बारी आती है जानकारी पूर्ण बातचीत की। तो आज हमारा जो विषय है वो है चिरायता, मुश्कवाला और जंगली गेंदे की प्रदेश में व्यावसायिक खेती, जिसमें डॉक्टर यशपाल शर्मा से बातचीत कर रहे हैं राजेंद्र। तो आइए सुनते हैं जानकारी पूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण।
1: जी, आज हमारे स्टूडियोज में आए हैं डॉक्टर यशपाल शर्मा जी। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद जी।
1: किसान भाइयों, आज का हमारा विषय है चिरायता, मुश्कबाला और जंगली गेंदे की प्रदेश में व्यावसायिक खेती की क्या क्या संभावना है। तो डॉक्टर साहब, मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि हिमाचल प्रदेश में जड़ी बूटियों के उत्पादन की क्या क्या संभावना है।
2: हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जलवायु के क्षेत्र पाए जाते हैं। लगभग निचले क्षेत्र 300 मीटर से शुरू होकर हमारे यहाँ 6000 मीटर तक की ऊंचाई के क्षेत्र पाए जाते हैं। जलवायु में विभिन्नता होने के कारण अलग अलग तरह के पौधों का उत्पादन हम हिमाचल प्रदेश में कर सकते हैं। किसी जमाने में हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी जड़ी बूटियां जंगलों में पाई जाती है
1: जी,
2: लेकिन अत्यधिक दोहन के कारण आस्ते आस्ते बहुत सारी जड़ी बूटियां जो हैं वो जंगलों से लुप्त होती जा रही हैं। तो इसलिए किसान भाई अगर इन जड़ी बूटियों का उत्पादन करें तो वो अपनी आजीविका और अपनी आय को बढ़ा सकते हैं।
1: जी जी। तो डॉक्टर साहब, अगर जड़ी बूटियों में बात करें चिरायता की, तो हिमाचल प्रदेश में चिरायता की खेती की क्या क्या संभावनाएं हैं? क्या डॉक्टर साहब ये पहले जंगलों में भी होता था?
2: देखिए, जहाँ तक चिरायता की बात है, हिमाचल प्रदेश में किसी टाइम चिरायता बहुत मात्रा में पाया जाता है, लेकिन अत्यधिक दोहन के कारण अब हिमाचल प्रदेश में चिरायता तकरीबन लुप्त होने के कगार पे है
1: जी।
2: एक का दुक्का पौधा कहीं पे मिलता है, लेकिन अत्यधिक पौधे जाके अब लुप्त हो चुके हैं। और लुप्त होने के कारण इसकी डिमांड भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। चिरायता को अगर किसान भाई उगाएं तो इसलिए हमारी जितनी भी आयुर्वेदिक इंडस्ट्री है उनकी मांग को पूरी कर सकता है और अपनी आमदन को भी बढ़ा सकता है
1: जी। डॉक्टर साहब, तो क्या हमारे किसान भाई

0: इसकी खेती कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या इसका बीज उपलब्ध होता है?
1: देखिए, जहां तक चिरैता की खेती की संभावना की बात है, चिरैता के पौधे का उत्पादन हम बीज द्वारा करते हैं, इसका
0: जी
1: कटिंग से उत्पादन नहीं होता है। और बीज जो चिरैता का है वो अत्यधिक सूक्ष्म है, लगभग 1 ग्राम में 40,000 बीज आते हैं।
0: जी
1: तो इतने सूक्ष्म पौधे से पौधा तैयार करना, यही थोड़ी सी कठिनाई वाला काम है किसान के लिए। लेकिन जो किसान भाई इसकी पौध उत्पादन कर लें, वो इसकी खेती बड़े आसानी से कर सकते हैं।
0: जी
1: इसकी खेती के लिए सबसे पहले हम नर्सरी में इसके पौधे तैयार करते हैं बीज से।
0: जी जी
1: और जब बीज से नर्सरी तैयार करते हैं, क्योंकि बीज इसका बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही छोटा है, जिसको कि हम नंगी आंख से गिन भी नहीं सकते हैं, तो उससे पौध तैयार करना के लिए बहुत सारी सावधानियों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले तो हम एक जो नर्सरी तैयार करते हैं, उसके लिए बीज जो है, हम नर्सरी के तैयार किए हुए खेतों में, नर्सरी के जो छोटे छोटे बेड हम बनाते हैं, उसके ऊपर बीज को डालते हैं। और पानी का देने का सबसे बड़ा जो है कि इसमें पानी आप फुहारे के साथ नहीं दें, बहुत ही बारीक तौर पे पानी देना होता है, जिसको कि हम नॉर्मली अपने स्प्रेयर जो किसान भाई के पास होते हैं, तो स्प्रेयर के साथ पानी देते हैं। और हम इन क्यारियों में नमी बनाए रखते हैं,
0: जी
1: क्योंकि इसमें जो बीज में अंकुरण है वो लगभग 18 से 20 दिन बाद अंकुरण स्टार्ट होता है, और जब तक अंकुरण नहीं होता बीजों में, तब तक इसमें क्यारियों में नमी बनाए रखनी होती है। इसके लिए किसान भाई अपने फुहारे की बजाय, जो नॉर्मली हम क्यारियों में इस्तेमाल करते हैं पानी देने के लिए, उसके बजाय स्प्रे पंप से, या पीठ वाला स्प्रे पंप हो या पाँव से चलने वाला स्प्रे पंप हो, उसके द्वारा इसमें नमी बनाए रखें।
0: जी दूसरा प्रश्न डॉक्टर साहब ये होता है कि जब इसका चिरायता का उत्पादन क्यारियों में होता है, तो इसके लिए हमारे किसान भाई क्या क्या मिट्टी में मिला सकते हैं मिश्रण, ताकि उनकी पौध ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ हो?
1: देखिए, जो पौध के उत्पादन के लिए क्यारियां हम बनाते हैं, उसके लिए सबसे पहले तो गली सड़ी गोबर की खाद,
0: जी
1: अगर गोबर की खाद नहीं हो तो जंगल की पत्तियों की खाद बारीक करके, और उसके साथ को जो मिट्टी है हम उसको हम पहले छान लेते हैं, उसमें मोटे कंकड़ वगैरह वो निकाल लेते
0: जी
1: हैं।
0: जी
1: तो ये दो चीज़ें हैं मेन जो इसमें ध्यान रखने लायक है, इनका मिश्रण बना लें। और उसके अलावा अगर अच्छी स्वस्थ पौध के लिए, अब आजकल बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो
0: जी जी
1: इसमें अजाटोबैक्टर और व्यम, जो कि मार्केट में दोनों तरह के बायो फर्टिलाइजर मिल जाते हैं, जो कि सूक्ष्म कीटाणु होते हैं जो पौधे के उत्पादन में सहायता करते हैं, उनको मिला सकते हैं हम।
0: जी अब डॉक्टर साहब प्रश्न ये उठता है कि चिरायता का उत्पादन हिमाचल प्रदेश में किन किन क्षेत्रों में किया जा सकता है?
1: देखिए, चिरैता के उत्पादन के लिए जो हमारे 1800 मीटर ऊंचाई से लेके लगभग 2500 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र ये उपयुक्त हैं।
0: जी
1: इसकी खेती के लिए धूप वाली जगह उपयुक्त होती है, छायादार क्षेत्र में इसका उत्पादन अच्छी तरह से नहीं किया जा सकता। तो धूप वाली जो जगहें हैं वहां पे हम इसका उत्पादन कर सकते हैं।
0: तो डॉक्टर साहब इसकी खेती हम कैसे करें?
1: देखिए, जहां तक चिरैता की खेती का सवाल है, तो इसका पहले बीज से हम पौध उत्पादन करते हैं, और क्योंकि चिरैता के पौधे जो शुरू में बहुत आस्ते आस्ते बढ़ोतरी लेते हैं,
0: जी जी
1: और लगभग जब हम बीज के बिजाई करते हैं नर्सरी में, ये 6 महीने में 6 से 8 पत्ते इसमें आते हैं, और जड़ जो है इसकी लगभग 1.5 से 2 सेंटीमीटर तक बनती है।
0: जी
1: जब ये स्टेज आती है हमारी नर्सरी में पौधों की, फिर हम इन पौधों को नर्सरी बैग्स में, लिफाफों में, पॉलिथीन बैग्स में इसको
0: जी
1: ट्रांसफर कर लेते हैं, और ये नर्सरी बैग में लगभग 6 महीने तक पौधे रहते हैं। उसके बाद जिन क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता है, वहां पे मार्च अप्रैल महीने में इनको खेतों में 30 सेंटीमीटर, लगभग 1 फुट से लेकर 1.5 फुट की दूरी के ऊपर लगाते हैं,
0: जी
1: ताकि 1 बीघे में हम 3,000 से 3,500 पौधा लगा सकते
0: जी
1: हैं।
0: जी
1: लगाने के बाद चिरैता में 1.5 साल तक, जैसे हमने इस साल जून महीने में इसकी बिजाई की और सितंबर अक्टूबर महीने में इसके जो नर्सरी से पौधे हैं वो लिफाफों में लगाए, और उसे अगले साल हम अप्रैल महीने में इसको खेतों में लगाएंगे, तो उससे अगले साल इसमें पौधे में नया तना निकलता है।
0: जी
1: तो पूरा जो लाइफ साइकिल इसका चलाते था लगभग 30 से 32 महीने ये पूरा लगता है। और कटाई की जो बात है इसकी, जब इसमें फूल आ जाते हैं और बीज बनने की अवस्था जाती है, उस टाइम इसके पूरे पौधे को जड़ सहित उखाड़ लेते हैं, और नीचे वाली जड़ों के मिट्टी वगैरह को पानी से धो के, फिर पूरा पंचांग जो है उसको छाया में सुखा के मार्केट में बेचने के लिए तैयार करते हैं।
0: डॉक्टर साहब चिरायता की खेती खेती से हमारे किसान भाइयों को कितनी आमदनी हो सकती है?
1: देखिए, चिरायता की खेती में लगभग एक बीघे में हम 3,000 से 3,500 के बीच में पौधा लगाते हैं
0: जी।
1: और एक पौधे से कम आपका 50 ग्राम से लेके 60 ग्राम तक कम से कम उत्पादन, रोज सूखा मटेरियल जो हमारे 55 निकलता है वो निकल जाता है।

0: और इस तरह से एक किसान जो है एक बीघा से लगभग 50 से 60 हजार रुपए अपनी इनकम पा सकता है।
1: डॉक्टर साहब, चिरायता के पौधे की सही पहचान क्या है?
0: देखिए, चिरायता के नाम से मार्केट में इस टाइम बहुत सारे पौधे दूसरे मिलते हैं, क्योंकि चिरायता की उपलब्धता जंगल में नहीं के बराबर है अब, तो इसलिए मार्केट में चिरायता के नाम से दूसरी बहुत सारी औषधीय पौधे, जैसे कि हमारा मीठा चिरायता, पहाड़ी चिरायता एवं हरा चिरायता, जो काल में जो अलग तरह का पौधा है उसका भी मिश्रण करते हैं, मिलावट करते हैं। तो इसकी सही पहचान जो है वो बहुत जरूरी है। तो सही पहचान के लिए चिरायता के लिए, तो जब इसमें फूल आते हैं, फूल आने के टाइम के जो मेन तना है इसका, तो आधी हाइट तक तना जो है गोल होता है, और आधी हाइट के ऊपर जो है तना जो है वो चार कोनों में बना, जिस तरह हमारा स्लीपर में चार कोने होते हैं उस तरह से बन जाता। तो एक तो ये पहचान का मेन है। दूसरा, जब इसमें फूल आते हैं, फूल में चार पंखुड़ियां होती हैं, अंदर भी चार पंखुड़ियां होती है और बाहर भी चार पंखुड़ियां होती हैं, और हर एक पंखुड़ी के ऊपर बैंगनी रंग का एक धब्बा होता है, और उसके साथ में अंदर वाली पंखुड़ी के ऊपर, हर एक पंखुड़ी के ऊपर दो नेक्टर ग्लैंड, शहद की ग्रंथियां पाई जाती है, और उनके ऊपर छोटे छोटे रेशे होते हैं। तो यही इसकी सही पहचान है। इसके अलावा इसकी जड़ें जो है हल्के पीले रंग में होती है। तो यही पहचान है जो सबसे पहले लगाने से पहले पहचान कर ले किसान की, हम सही पौधे या चिरायता
1: को लगा कि नहीं। डॉक्टर साहब, अगर बात करें जंगली गेंदे की, तो जंगली गेंदा है क्या और इसकी खेती किसान भाई कैसे कर सकते हैं?
0: देखिए, जंगली गेंदे का जहां प्रश्न है, ये पौधा हमारे लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई से लेके 2500 मीटर की ऊंचाई पर सड़कों के किनारों पे, लोगों की घासनियों पे तकरीबन बरसात के टाइम में स्वतः ही उग आता है
1: जी,
0: और जिसे कि लोकल भाषा में हमारे किसान भाई कुंभर के नाम से भी जानते हैं
1: जी, जी।
0: कि जब भी वो अपना घास काटने जाते हैं तो कुंभर उसके कपड़ों में लग जाते हैं, इसलिए कुंभर से भी बोलते हैं। और इसकी उपयुक्त क्षेत्र भी यही है, 1000 मीटर से लेके तकरीबन 2500 मीटर के क्षेत्र में इसका उत्पादन कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, जंगली गेंदे की खेती हमारे किसान भाई किस तरह कर सकते हैं?
0: देखिए, जंगली गेंदे की खेती जो है बीज द्वारा की जाती है, और जंगली गेंदे की खेती तेल उत्पादन के लिए की जाती है, सुगंधित तेल, इसके फूलों से पत्तों से तेल उत्पादन किया जाता है। तो बीज से ये 6 महीने की फसल है सिर्फ, और जब हमारी बरसात शुरू होने से पहले हम बीज को छट्टे से हमने खेतों में डाल सकते हैं
1: जी।
0: और इसके अलावा हम नर्सरी भी उत्पादन करके उसको भी खेतों में लगा सकते हैं, जहाँ पे पानी की समस्या नहीं है वहाँ हम पहले नर्सरी तैयार करके फिर हम खेतों में 1 फुट बाय 1.5 फुट के फासले के ऊपर लगा सकते हैं
1: जी। डॉक्टर साहब, जंगली गेंदे की फसल की कटाई का सही समय क्या है और हमारे किसान भाई इसे कैसे कर सकते हैं और इसका कौन सा भाग उपयोग में आता है?
0: देखिए, जहाँ जंगली गेंदे का सवाल है, जंगली गेंदे के फूलों और पत्तों में तेल होता है, इसका जो डंठल मेन तना जो आ गया उसमें तेल नहीं होता है। और किसान भाई का मेन मकसद क्या होता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा पत्ते और फूल मिले, तो उसके लिए एक ध्यान रखने योग्य बात है कि जब हमारा पौधा 1 फुट से 1.5 फुट के बीच में हाइट का हो जाता है तो इसमें हम पिंचिंग करते हैं, मेन जो तना इसका ग्रोइंग पॉइंट है उसको हम काट देते हैं ताकि किनारे से बहुत सारी टहनियां और जिनमें पत्तियां आएंगी फूल निकले, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा फूल और पत्ते ले सके। दूसरी बात रहेगी इसकी कटाई की, तो कटाई के लिए जो सही समय है इस जंगली गेंदे का, तो वो है जब इसमें फूल आ जाता है और फूल में जब बीज बनना पकना शुरू हो जाता है, वो सही समय है इसमें अच्छी क्वालिटी का तेल उत्पादन के लिए।
1: और डॉक्टर साहब, जंगली गेंदे से तेल हमारे किसान भाई कैसे निकाल सकते हैं?
0: देखिए, कटाई के वक्त हम पूरा के पूरे पौधे को काट के पुले बना के हम छोटे छोटे भागों में इसको काट लेते हैं
1: जी।
0: फिर उस कटे हुए भाग को हम लोग आसवन विधि से, जिसे डिस्टिलेशन यूनिट से, तो ये मेन तेल उत्पादन के लिए एक डिस्टिलेशन यूनिट जरूरी है, तो डिस्टिलेशन यूनिट में उन छोटे छोटे पीस को हम डाल लेते हैं, और लगभग तेल निकालने के लिए जब हम यूनिट में डालते हैं 2 से 2.5 घंटे का समय लगता है तेल निकालने के लिए
1: जी जी।
0: तो आसवन विधि से तकरीबन इसका तेल निकाला जाता है
1: जी। डॉक्टर साहब, जंगली गेंदे के तेल का जो सही भंडारण हमारे किसान भाई कैसे कर सकते हैं?
0: देखिए, जब आपने जंगली गेंदे से तेल निकाल लिया अपने यूनिट से, तो उसमें पानी भी होता है और तेल भी है, क्योंकि तेल पानी के बीच में मिक्स नहीं होता
1: जी।
0: तो तेल ऊपर तर जाता है और पानी नीचे है, तो पहले तो हम जो तेल को पानी से अलग कर लेते हैं, फिर उसके पश्चात कुछ एक पानी जो तेल के बीच में फिर भी रह जाता है जिसे हम नंगी आंख से नहीं देखते हैं, उसको हम एक केमिकल के द्वारा पानी को निकाल लेते हैं, और उसके पश्चात जो तेल को हम शीशियों में, कांच की शीशियां ले सकते हैं आप, स्टेनलेस स्टील की शीशियां ले सकते हैं, लेकिन वो शीशी जो है वो डार्क कलर की, जैसे काले रंग की बोतलें आती हैं तो शीशे की, उसके बीच में हम इसको डालते हैं। और दूसरी ध्यान रखने योग्य बात है कि जिस भी शीशी में तेल डालें उस शीशी को हम पूरा भरते हैं, आधी

0: शीशी कभी नहीं रखते।
1: जी।
0: और जब पूरी शीशी भर ली आपने और जब उसमें ढक्कन लगा दिया, उसके पश्चात उस शीशी को किसी ठंडी जगह पे रखें, धूप वाली जगह पे नहीं रखें, जहां गर्मी होती है उस जगह पे नहीं रखें। और जब भी आपको मार्केट में सही रेट मिल रहा हो उस टाइम उसको आप बेच सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, जंगली गेंदे से हमारे किसान भाइयों को कितनी आय मिल सकती है?
0: देखिए, जंगली गेंदे से हमारे को लगभग 5 से 6 लीटर तेल एक बीघे से मिल जाते हैं।
1: जी।
0: और आजकल जो तेल का रेट है वो लगभग 8,000 रुपए पर लीटर बिक रहा है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे को कितनी इनकम हो सकती है।
1: जी डॉक्टर साहब, प्रश्न उठता है मुश्कबाला, तो मुश्कबाला की खेती कौन कौन से क्षेत्रों में की जाती है?
0: देखिए, मुश्कबाला जिसे हम सुगंध बाला भी कहते हैं, निहानी के नाम से भी जाना जाता है, एवं संस्कृत में इसको तगर के नाम से कहते हैं। तो इस पौधे का जो जड़ें हैं, जड़ें और जड़ों के साथ को गांठ, जिसको हम राइजोम बोलते हैं, वो मेन औषधि के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और इसका उत्पादन भी इसकी जड़ों के लिए ही किया जाता है।
1: जी।
0: तो इसके उत्पादन के लिए हमारे 1800 मीटर से लेके 2500 मीटर के जो क्षेत्र हैं और छायादार क्षेत्र तथा नमी वाले क्षेत्र, ये पौधा जो है नमी मांगता है, तो नमी वाले, धूप वाले क्षेत्र नहीं, नमी वाले क्षेत्र इसके लिए उपयुक्त हैं।
1: और डॉक्टर साहब, मुश्कबाला की खेती हमारे किसान भाई कैसे कर सकते हैं?
0: देखिए, जहां तक मुश्कबाला की खेती का सवाल है, ये लगभग 2.5 से 3 साल की फसल है, बीज आने से लेके इसकी हार्वेस्टिंग तक।
1: जी।
0: तो इसके पौधे जो है, उत्पादन जो है, वो बीज द्वारा किया जाता है। तो जंगल से जो अच्छे पौधों में से हम पहले बीज निकाल लेते हैं और वो बीज हमारा अप्रैल जैसे महीने में निकलता है इसे, उसके बाद जुलाई महीने में इसकी पौध तैयार करते हैं और पौध हमारी जैसे बिजाई की जून महीने में और सितंबर जैसे महीने में हमारी नर्सरी जो है तैयार हो जाती है। और नर्सरी जो तैयार किए हुए पौधे उनको हम खेतों में 1 फुट बाय 1 फुट के फासले पर लगाया जाता है। और तीसरे साल इसकी जो कटाई है, कटाई नहीं, पूरा पौधा उखाड़ा जाता है खेत में से सितंबर अक्टूबर, ठंड आने से पहले पहले इसके पूरे पौधे को ही उखाड़ लेते हैं तथा उखाड़ने के पश्चात जो जड़ें हैं उसकी, उसको अच्छी तरह से मिट्टी वगैरह निकाल के पानी से धो के फिर उसको ऊपर वाले पत्तों को अलग कर लेते हैं और उन जड़ों को छायादार क्षेत्र में सुखाया जाता है।
1: जी।
0: जब वो जड़ें अच्छी तरह से सूख जाएं फिर उनको मार्केट में बेच सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, मुश्कबाला की खेती से हमारे किसान भाइयों को कितनी आमदनी हो सकती है?
0: देखिए, मुश्कबाला का जो जड़ों का उत्पादन है वो लगभग 100 से 120-125 किलो प्रति बीघा होता है।
1: जी।
0: और आजकल जो मार्केट में है इसकी जड़ों का रेट जो है 300 रुपए से 400 रुपए के बीच में चल रहा है।
1: डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियोज में आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी चिरायता, मुश्कबाला और जंगली गेंदे की प्रदेश में व्यावसायिक खेती के बारे में हमसे साझा की, इस जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया।
2: सनु, ये तो सुनिए आपने जानकारी, जानकारी का विषय था चिरायता, मुश्कबाला और जंगली गेंदे की प्रदेश में व्यावसायिक खेती। ज्यादा जानकारी दे रहे थे डॉक्टर यशपाल शर्मा और उनसे जानकारी हासिल कर रहे थे राजेंद्र। तो सनु, हम उम्मीद करेंगे कि आप इस जानकारी से जो है लाभ भी उठाएंगे।
3: जी बिल्कुल अशोक जी, तो क्यों ना अब एक और लोकगीत सुनवा दिया जाए अपने किसान बागवान भाई बहनों को।
2: सनु, आइए सुनते हैं मीनाक्षी तनवर की आवाज में प्यारा सा लोकगीत।

0: किशनवी, ये तो सुना आपने मीनाक्षी तंवर की आवाज़ में लोकगीत। इसी लोकगीत के साथ किशनवी अब हमारे आज के इस कार्यक्रम का समय भी यहीं संपन्न हो चला। सभी किसान और बागवान भाई और बहनों से अब अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता दीपक कुमार।
2: अभी आप सुन रहे थे कृषि जगत कार्यक्रम। FM शिमला के साथ जुड़े हैं आप 103.7 MHz पर। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप और रेडियो की डीटीएच सेवा पर भी सुना जा सकता है।
1: अगर युवा ही चुप रहा तो बदलाव कौन लाएगा?
2: अब वक्त है मोबाइल से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचने का।
1: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में हर युवा बनेगा बदलाव की ताकत। आपका एक वोट तय करेगा आपके शहर का आने वाला कल। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान जरूर करें।
2: युवा जागेगा, हिमाचल आगे बढ़ेगा। पहले मतदान, फिर बाकी काम। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में 51 शहरी निकायों के लिए 17 मई को होगा मतदान। खुलेआम चुनाव प्रचार थमा, चुनाव आयोग ने पूरी की तैयारियां। कांग्रेस और भाजपा ने चुनावों में अपनी अपनी जीत के किए दावे, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा 21

0: जून को फिर से होगी नीट परीक्षा, 14 जून तक उपलब्ध कराए जाएंगे प्रवेश कार्ड। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए सभी प्रत्याशियों को आवंटित किए गए चुनाव चिन्ह। लाहौल स्पीति जिले की 17 पंचायतें निर्विरोध निर्वाचित। और आईपीएल में पंजाब किंग्स और आरसीबी के बीच कल धर्मशाला में होगा अहम मुकाबला, क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 51 शहरी निकायों के लिए 17 मई को होने वाले मतदान के लिए आज खुलेआम चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है। प्रचार के अंतिम दिन आज दोनों प्रमुख दलों भाजपा व कांग्रेस ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता व मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज सोलन में चुनाव प्रचार किया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने दावा किया कि प्रदेश के चारों नगर निगमों में कांग्रेस पार्टी की स्थिति बेहतर है। उन्होंने कहा कि सोलन शहर की सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
1: कांग्रेस पार्टी के चारों नगर निगम चुनावों में कांग्रेस की बहुत अच्छी स्थिति है और हमारे जो 1.5-2 साल का वक्त है, सभी जगह पैसे की स्वीकृति हो चुकी थी और हमने 3 और नगर निगम बनाए हैं। मेरा मानना है कि 16 नगर निगम में हमने जो कार्य की स्वीकृति दी थी, उस पर अभी कार्य शुरू होने हैं। 16 नगर निगम में कांग्रेस पार्टी अपना वर्चस्व लड़ाएगी।
0: दूसरी ओर पूर्व केंद्रीय मंत्री व वरिष्ठ भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने भी आज सोलन में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर झूठे वायदे कर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि सोलन सहित राज्य के अन्य स्थानों पर शहरी निकाय चुनावों में भाजपा की जीत होगी।
2: कांग्रेस क्यों घबराई है? 26 में अंगड़ाई है, 27 में कांग्रेस की विदाई है। नगर निगम के चुनाव में भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। 3 सालों से यहां की जनता जो राज्य की सरकार की नाकामियों का दंश ढेल रही है, वो साफ दिखता है कि दर्द क्या है। इन्होंने कहा था कि 100 रुपए बिल देंगे, पानी 24 घंटे देंगे, ना पानी आता है लेकिन बिल दिल खोल कर आता। कांग्रेस ने बड़े बड़े वायदे किए थे लेकिन आज कांग्रेस भ्रष्टाचार में डूबी नजर आती है। आज केवल एक मौका है जनता के पास कि सोई हुई सरकार को जगाना है, जिन्होंने बड़ी बड़ी गारंटियां दी थी फिर मुकर गए।
0: राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा ने नगर निगम धर्मशाला और पालमपुर में कांग्रेस पार्टी की जीत का दावा किया है। धर्मशाला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में इन दोनों शहरों को आधुनिक बनाने का रोड मैप तैयार किया है। अनुराग शर्मा ने कहा कि प्रत्येक वार्ड में बच्चों व युवाओं के लिए डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष पार्क विकसित किए जाएंगे।
3: नगर निगम धर्मशाला और पालमपुर की जो हमारे सर्वे की रिपोर्ट्स हैं, उसमें भी हमारे दोनों क्षेत्रों में हमारे मेयर और डिप्टी मेयर कांग्रेस के बन रहे हैं। और कल जो संकल्प पत्र माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो विकास के लिए, धर्मशाला के विकास के लिए जो प्रस्तुत किया गया, उसमें हर चीज का समावेश है। हर वार्ड में कोशिश रहेगी कि संगठित पार्किंग की सुविधा जो दी जाएगी, बार मेमोरियल के पास रिक्रिएशन सेंटर जो बनाया जाएगा, स्ट्रीट बेंडर्स के लिए नए बेंडिंग जोन, जो हमारे जो ताने लगाते हैं बेरोजगार, उनके लिए जो नए बेंडिंग जोन बनाए जाएंगे सुनियोजित ढंग से।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज नाहन नगर परिषद के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने नाहन में संकल्प पत्र जारी करते हुए बताया कि शहर के प्रत्येक वार्ड में पार्किंग व्यवस्था मजबूत की जाएगी और सामुदायिक भवनों का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर में धुआं रहित वाहनों को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना चलाई जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। उन्होंने आज नई दिल्ली में बताया कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 परीक्षा 21 जून को दोबारा आयोजित करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को 14 जून तक प्रवेश कार्ड उपलब्ध करा दिए जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में OMR मोड में आयोजित होने वाली नीट UG परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी CBT माध्यम से होगी। उन्होंने कहा कि NTA ने ठोस सुधारों की जरूरत है। उन्होंने बताया कि भविष्य में किसी भी तरह की अनियमितताओं को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने संबंधी उपाय किए जाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि कोई भी योग्य विद्यार्थी फर्जी उम्मीदवारों की धांधली या शिक्षा माफिया की साजिशों के कारण अपने अधिकारों से वंचित हो जाए।
4: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, OMR शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी, जो 2 से

0: 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते हैं। एनटीए ने थोड़ी देर निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाएं, 2 से शुरू होगा 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
1: ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्सेंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में 26, 28 और 30 मई को होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के लिए भरे गए नामांकन पत्रों को वापस लेने का आज अंतिम दिन था। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव लड़ रहे सभी प्रत्याशियों को आज ही चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं। राज्य में इस बार पंचायत चुनाव 3 चरणों में करवाए जा रहे हैं। पंचायत प्रधान, उप प्रधान और वार्ड सदस्यों के चुनाव परिणाम मतदान वाले दिन ही घोषित किए जाएंगे, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के मतों की गणना 31 मई को की जाएगी। प्रदेश में कई ऐसी पंचायतें हैं जो निर्विरोध चुनी गई हैं। लाहौल स्पीति जिले में 17 पंचायतें निर्विरोध चुनी गई हैं। इनमें से 8 पंचायतें लाहौल और 9 पंचायतें स्पीति घाटी में हैं। जिले में 147 वार्ड सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं। नाम वापसी के बाद अब जिले में जिला परिषद के लिए 22, पंचायत समिति के लिए 39, प्रधान के लिए 80 और उप प्रधान पद के लिए 76 प्रत्याशी चुनाव मैदान में रह गए हैं। सोलन जिले की काहला और भोजपुर पंचायतें भी निर्विरोध चुनी गई हैं। काहला पंचायत में प्रधान राजेश ठाकुर सहित उप प्रधान और सभी वार्ड सदस्यों का चुनाव निर्विरोध हुआ है। निर्विरोध चुनी गई पंचायतों को सरकार की ओर से 25-25 लाख रुपए की विशेष प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर मतदान दिवस पर संबंधित क्षेत्रों में भुगतान सहित अवकाश घोषित किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 26, 28 और 30 मई को संबंधित क्षेत्रों में सरकारी व निजी संस्थान बंद रहेंगे, ताकि अधिक से अधिक लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों और अधिकारियों को उसी दिन छुट्टी मिलेगी जब उनकी पंचायत और संबंधित क्षेत्र में मतदान होगा। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी ये अवकाश मान्य होगा। धर्मशाला के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 17 मई को पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच आईपीएल का अहम मुकाबला खेला जाएगा। आरसीबी की टीम आज दोपहर कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंची, जहां विराट कोहली सहित अन्य खिलाड़ियों को देखने के लिए क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह रहा। पंजाब किंग्स की टीम को 10 और 14 मई को धर्मशाला में अपने दोनों ही मैच में हार का सामना करना पड़ा। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए पंजाब किंग्स की टीम को ये मैच जीतना जरूरी है। नगर निगम शिमला में सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। सहब सोसाइटी से जुड़े ये कर्मचारी 10% वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। सहब सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष जसवंत सिंह ने कहा कि निगम प्रशासन द्वारा पिछले लंबे समय से उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नगर निगम की जनता से हर वर्ष 10% बढ़ोतरी के हिसाब से शुल्क वसूला जा रहा है, लेकिन सफाई कर्मचारियों के वेतन में नियमों के अनुसार वृद्धि नहीं की जा रही है।
2: एजीएम में जो हमारा 10% वार्षिक बढ़ोतरी होती थी, वो इन्होंने जो है इस बार बिल्कुल खत्म की। हालांकि जो है एजीएम में ये मुद्दा ही नहीं था, फिर भी इन्होंने जो अपना आप हमारा 10% खत्म किया, क्योंकि इन्होंने जो आज जनता के ऊपर जो है 10% वृद्धि लागू कर दी है। अगर आपने जनता से लेने हैं तो हमें भी जो है 10% वृद्धि चाहिए। पहली बात यह है कि हमारा जो लेबर कोड में जो है 3 सालों से जो है अभी केस चला हुआ है। कमिश्नर साहब एक बार भी जो 3 सालों में जो हमारे से बातचीत करने नहीं आए हैं।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 51 शहरी निकायों के लिए 17 मई को होगा मतदान। खुलेआम चुनाव प्रचार थमा, चुनाव आयोग ने पूरी की तैयारियां। कांग्रेस और भाजपा ने चुनावों में अपनी अपनी जीत के किए दावे, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा 21 जून को फिर से होगी नीट परीक्षा, 14 जून तक उपलब्ध कराए जाएंगे प्रवेश कार्ड। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए सभी प्रत्याशियों को आवंटित किए गए चुनाव चिन्ह। लाहौल स्पीति जिले की 17 पंचायतें निर्विरोध निर्वाचित। और आईपीएल में पंजाब किंग्स और आरसीबी के बीच 17 मई को धर्मशाला में होगा अहम मुकाबला, क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला 103.7 MHz पर भी प्रसारित किया जा रहा था। कृपया हमारी अगली घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। आइए सुनते हैं देश गान।

0: जनसंपर्क विभाग की पूर्व निदेशक आरती गुप्ता से भेंट वार्ता। भेंट करता है सपना ठाकुर। ये भेंट वार्ता हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर भी सुनी जा सकती है।
1: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का विशेष कार्यक्रम, जिसमें हम मना रहे हैं आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों का उत्सव। आकाशवाणी केवल एक प्रसारण माध्यम नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति, संगीत, साहित्य, समाचार और जन भावनाओं की जीवंत आवाज रही है। पीढ़ियां बदली, तकनीक

0: एक बदली, लेकिन आकाशवाणी की विश्वसनीयता और अपनापन आज भी वैसा ही है। इन्हीं यादों, अनुभवों और उपलब्धियों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ आकाशवाणी स्टूडियो में उपस्थित हैं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की पूर्व निदेशक आरती गुप्ता। आरती गुप्ता जी, आपका हार्दिक स्वागत है। एक ऐसा व्यक्तित्व जिनके पास कई वर्षों की यादें और अनुभव हैं, हम आपको काफी वर्षों से सुनते आ रहे हैं, लंबे अरसे से, यानी चुन्नु मुन्नु कार्यक्रम हो, बाल गोपाल, युववाणी, समाचार वाचिका आप रही हैं, नाटकों से आप जुड़ी रही हैं, हमारी वार्ताकार आप रही हैं। आरती गुप्ता जी, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है और आपसे जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी से आपका जुड़ाव कब और कैसे शुरू हुआ।
1: नमस्कार श्रोताओं को, नमस्कार सपना जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए, मौका देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जैसा कि आपने कहा कि आकाशवाणी से जुड़ाव कैसे हुआ, तो मैं बताना चाहूंगी। हमारे फादर हिंदी के बहुत बड़े ज्ञाता थे, श्री राजेंद्र पाल सूत, और वो एक समय में आकाशवाणी के उद्घोषक भी रहे हैं। तो उनकी दिली इच्छा थी कि वो अपने बच्चों को भी आकाशवाणी से जोड़ पाएं। तो हम चार भाई बहन थे, हर रविवार को ये कार्य रहता था कि हमें तैयार करके आरंभ में डैडी स्वयं आकाशवाणी लेकर आते थे। ये उन दिनों की बात है जब आकाशवाणी इस भवन में नहीं था, आकाशवाणी विधानसभा परिसर से चला करता था। तो बहुत ही अच्छा लगता था, हमें डैडी कुछ तैयार करवा देते थे, कुछ पोएम, कुछ पंक्तियाँ, कुछ दोहे, किसी डिफरेंट विषयों पर छोटी छोटी बातें। और ये उस दौर की बात है कि मेरे पास कुछ अपने कॉन्टेक्ट अभी हैं, ये 1976 के कॉन्टेक्ट मेरे पास हैं, जब मैं आकाशवाणी के कार्यक्रमों में भाग लेने लगी। सपना जी, बहुत अच्छा लगता है ये देखकर कि 1976 में हमें 10 रुपए मिला करते थे एक कार्यक्रम
0: जी,
1: और उसके बाद एक दौर आया 78 के आसपास तो हमें 15 रुपए मिलने लगे, उसके बाद हमें 25 रुपए मिलते थे, और फिर दौर आया तो 50 रुपए हो गए, और उसके आगे जैसे जैसे वक्त बढ़ा तो हमें 250 रुपए मिलने लगे। तो पहले हम आते थे चुन्नु मुन्नु में, बाल गोपाल कार्यक्रम में, फिर युवाओं के लिए कार्यक्रम में आने लगे, नाटकों में भाग लेने लगे, और फिर मतलब आकाशवाणी ने हमें, मैं क्या कहूँ आपसे।
0: आप युवाणी प्रोग्राम से भी जुड़े रहे हैं,
1: तो उसका एक वाक्या मैं बताना चाहूंगी कि युवाणी की यहाँ पर जो अधिकारी थी, जो युवाणी कार्यक्रम देखती थी, हम बाल गोपाल कार्यक्रम में आया करते थे, मैं और मेरी बहन भारती, तो हमारी प्रस्तुति को देखते हुए उन्होंने हमारा कोई किसी तरह का टेस्ट नहीं लिया था, और उन्होंने लिखित अपने फाइल में उसको अप्रूव करके हमें युवाणी के लिए भी कॉन्टैक्ट देना आरंभ कर दिए थे। बस इसी तरह हमारी युवाणी की यात्रा की शुरुआत हो गई, और बहुत अच्छा लगता था स्क्रिप्ट लिखना और विभिन्न विषयों पर बात करना। जैसा कि आप जानते हैं कि युवाणी में दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं, दो युवा, विभिन्न मुद्दों पर। तो मैं कहूंगी कि आकाशवाणी किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और ऐसा मेरे साथ भी हुआ। उस दौर में पता चला कि क्या शब्द होते हैं और शब्दों की क्या महत्ता है, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, कहाँ आपको कुछ स्ट्रेस देने की जरूरत है और कहाँ बहुत सरलता से कहने की जरूरत है, ये सब आकाशवाणी ने सिखाया। मैं समझती हूँ कि मेरे पूरे जिंदगी के अब तक के जो यात्रा रही है उसमें आकाशवाणी का बहुत बड़ा योगदान रहा है।
0: वाकई ये सुनना प्रेरणादायक लगता है कि बचपन में ही आपकी नींव रखी गई थी आपके पिताजी के द्वारा, वही आपके गुरु रहे हैं। आरती जी, आपसे जानना चाहेंगे कि 90 वर्षों की इस यात्रा को आप किस रूप में देखती हैं।
1: देखिए सपना जी, जब हम आकाशवाणी की बात करते हैं तो आकाशवाणी जन विश्वास, संवेदनाओं और संस्कृति की आवाज है। और जहाँ तक हम बात करें हिमाचल की, तो हिमाचल और यहाँ रेडियो की आवश्यकता की बात करें, आप जानते हैं हिमाचल एक पर्वतीय राज्य है जहाँ अनेक दूरस्थ ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्र है, और यहाँ की लगभग 90% जनसंख्या गाँव में रहती है। ऐसे क्षेत्रों में रेडियो आज भी सूचना का सबसे सरल और विश्वसनीय माध्यम है। मैं कहना चाहूंगी कि जहाँ सड़कें देर से पहुँचती हैं, वहाँ रेडियो समय पर पहुँच जाता है। आकाशवाणी की तो व्यापक पहुंच है, आकाशवाणी भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक प्रसारण नेटवर्क है
0: जी।
1: और 99% पॉपुलेशन तक इसकी पहुंच है, और भौगोलिक दृष्टि से हम देखें तो

0: 92% लोगों तक इसका प्रसारण पहुंचता है। और हिमाचल, जहां हम कहते हैं कि 12 मील के बाद बोलियां बदल जाती हैं, हर अपने क्षेत्र की 12 जिले हैं आप जानते हैं, और हर जगह की अपनी बोली है और अपनी बोली में अपनी बात, तो आकाशवाणी ने तो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। लाहौल स्पीति कार्यक्रम, कांगड़ी कार्यक्रम, कुल्लवी कार्यक्रम, बिलासपुरी कार्यक्रम, तो बस इसके माध्यम से आकाशवाणी ने एक ऐसा प्रयास किया कि गांव में, घर में, हर उस शख्स के दिल में घुसकर उसके दिल की बात दिल से की है। और यही ये वजह रही है कि श्रोता लगातार लगातार जुड़ते चले गए। कभी कितना भी आधुनिकता का दौर आया, कई FM आए, कई और चैनल आए, TV आया, लेकिन आकाशवाणी की जो श्रोताओं की संख्या है वो कभी घटी नहीं, कम नहीं हुई, बढ़ती चली गई। जैसे मैं अपनी बात करूं, और मेरी ही तरह बहुत आबादी ऐसी है जिसे रेडियो सुनना बहुत पसंद है, रेडियो पर जैसे हमें आना बहुत पसंद है, और रेडियो में पहुँच कर लगता है कि जैसे व्यक्तित्व का कोई एक हिस्सा है जो हम यहाँ छोड़ कर जाते हैं, और यहाँ आकर मन को जो सुकून मिलता है, हम श्रोताओं से अपनी बात कर पाते हैं। मैं कहूँगी कि आज भी मेरा बहुत सौभाग्यशाली दिन है कि आपने मुझे मौका दिया और मैं अपनी इस यात्रा को पुनः यानी जी पा रही हूँ, और उन दिनों को याद कर पा रही हूँ जब हम यहाँ आते थे, बच्चे थे, धीरे धीरे धीरे करके, मतलब ये वर्ष कैसे बीत गए, देखिए 1976 और आज 2026, इतने वर्षों की यात्रा में फिर भी हम यहाँ हैं, आपने याद किया। और इस जुड़ाव को मैं कह सकती हूँ कि शब्दों में व्यक्त कर पाना असंभव है, तो इसी तरह श्रोताओं का भी नाता है। श्रोताओं को जो रेडियो से मिलता है वो कहीं और नहीं मिल पाता जी। सच है, यहाँ अपनी आवाज है, अपनापन है, मैत्री है, हम काम करते करते भी रेडियो सुन सकते हैं, ये ऐसा और कहाँ है, अपना रेडियो आकाशवाणी शिमला।
1: आरती जी, आप नाटकों से भी जुड़ी रही हैं
0: जी,
1: और अभी तक जुड़ी हुई हैं
0: जी,
1: नाटकों से आपका लगाव कैसे हुआ?
0: मुझे सभी विधाओं में सब जगह कुछ ना कुछ जुड़ा रहना बहुत पसंद था। तो मैं जब विद्यालय में थी तो एक बार जो मेरा, मैं समझ सकती हूँ, प्रथम नाटक था, उसका नाम था कालीबाड़ी हॉल में हुआ था, ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। उसके बाद मौके मिलते रहे तो पहले हम लोग रंगमंच में स्कूल की तरफ से टूर्नामेंट्स में जाया करते थे, फिर महाविद्यालय में आ गए तो यूथ फेस्टिवल्स में, और इसी तरह से विश्वविद्यालय में भी। फिर ईश्वर की कृपा रही कि हमने एमेच्योर थिएटर भी किया और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की बहुत सी कार्यशालाओं में भाग लेने का मौका मिला। एक वक्त था कि मुझे लगता था कि नाटक के बाहर कोई दुनिया ही नहीं है, और मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में दाखिला लेना चाहती थी, अंतिम दौर में मेरी सिलेक्शन नहीं हो पाई। एक वक्त ऐसा आया कि जब मैं अपनी जर्नी में आगे चल रही थी, MA कर रही थी और बाकी भी पढ़ाई कर रही थी जर्नलिज्म, लेकिन उस दौर में भी मेरा मन कहता था कि ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में क्या चल रहा है। तब भी मैं वहाँ का प्रॉस्पेक्टस मंगवाया करती थी। रंगमंच हमको श्रोताओं से जोड़ने का एक मौका देता है, और उसी तरह से रेडियो हमें आवाज़ के माध्यम से अपनी बात खूबसूरती से किसी भी पात्र के माध्यम से कहने का अवसर मिलता है।
1: आज इतनी बड़ी विशेषता हमारे आकाशवाणी शिमला की आपसे सुनने को हमें मिली, और समय की सीख भी यही है कि धैर्यवान जो है शोर करने वालों से अक्सर आगे निकल जाता है। आरती जी, आकाशवाणी से जुड़ी कोई यादगार घटना जो आज भी आपके मन में हो?
0: दो छोटी छोटी बातें हैं। मुझे ये याद है कि हम जब बच्चों के कार्यक्रम में आया करते थे तो श्रोताओं के पत्र आया करते थे, और उसके माध्यम से कहा जाता था कि आप फलां व्यक्ति का कार्यक्रम सुनाएं, फलां का सुनाएं। तो इसी तरह हमारी छोटी बहन थी, उसका नाम पुट्टू था, तो पुट्टू बड़ा ऐसे कैची सा नेम मान सकते हैं आप। इस तरह कभी आते थे पत्र कि पुट्टू का कार्यक्रम भी सुनाएं। और दूसरा मुझे याद है, मेरा प्रयास रहता था कि मैं वहां जाऊं लेकिन मेरी बारी जरूर आए, मेरी टर्न आए, और मैं जो तैयार करके जाऊं वो जरूर सुना जाए, और वो सुना ही ना जाए ब्रॉडकास्ट भी हो, तो मैं अपने स्तर पर ही कबीर के, रहीम के, तुलसीदास के दोहे याद कर लिया करती थी। और एक जो अभी कुछ ही वर्ष पहले का वाकया है कि आकाशवाणी ने स्वाधीनता सेनानियों पर आधारित एक कार्यक्रम तैयार किया था, और उस दौरान यहाँ श्री अनूप महाजन हुआ करते थे, उस कार्यक्रम में पुरुष आवाज के रूप में श्रीनिवास जोशी जी थे। महिला स्वर के लिए कुछ चयन किया जाना था, मुझे भी बुलाया गया था, अंत में मुझे वहाँ बिठाया गया और मुझे पता चला कि मेरा चयन हो गया है। लेकिन जैसा कि आदरणीय जोशी जी और आदरणीय अनूप महाजन जिस तरह मुझे कह रहे थे कि

0: इस तरह कहूं इस तरह कहूं, वो एक तरह का बहुत ही ऐतिहासिक दस्तावेज तैयार किया जा रहा था। मैंने ये पाया कि उनकी अपेक्षाओं पे मैं खरा नहीं उतर पा रही हूँ। मैंने ये अनुभव किया, ये सब रिहर्सल के दौरान है, और मुझे मन ही मन अफसोस हो रहा था कि शायद मुझसे बेहतर कुछ और लोग थे तो मुझे यूं ही यहाँ बिठा दिया, किसी और का चयन हो जाता तो ठीक था। और बस टप टप करके मेरे आंसू बहने लगे और शांति। महाजन जी ने और जोशी जी ने कहा कि तुम शांत हो जाओ, रिलैक्स करो, जैसा तुम कहना चाहती हो तुम वैसा
1: ही कहो।
0: और फिर ये चल पड़ा और कहा, और अच्छा रहा। मैं कैसे कहूँ कि ईश्वर की बहुत कृपा है कि बस ये सब
1: आपकी मेहनत भी है,
0: मौके मिल
1: जी,
0: मेहनत कम होती है, ईश्वर ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया तो कैसे भूल जाए।
1: आरती जी, आकाशवाणी शिमला का पहले का और अब के प्रसारण में क्या बदलाव आप महसूस करती हैं?
0: देखिए, मैं ये कहूंगी कि आकाशवाणी ने वक्त के साथ साथ अपने आप को बदला और नए रूप में आई। देखिए, एक वक्त था कि जैसा

0: दी है, ईश्वर ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, तो कैसे भूल जाएं।
1: आरती जी, आकाशवाणी शिमला का पहले का और अब के प्रसारण में क्या बदलाव आप महसूस करती हैं?
0: देखिए, मैं ये कहूँगी कि आकाशवाणी ने वक्त के साथ साथ अपने आप को बदला और नए रूप में आई। देखिए, एक वक्त था कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि पत्र आया करते थे, अपनी फरमाइशें, सुझाव और भावनाएं पत्रों के माध्यम से व्यक्त करते थे श्रोता, श्रोताओं के नाम पढ़े जाते थे और लोग बहुत प्रसन्न होकर अपने नाम सुना करते थे। गाँव में तो पूरा परिवार वहाँ बैठ जाता था। और मुझे याद है कि मैं पोर्टमोर स्कूल से पढ़ी हूँ और पोर्टमोर स्कूल में देखिए पहले मनोरंजन के बहुत साधन तो थे नहीं, तो बहुत से आकाशवाणी ऐसे कार्यक्रम भी प्रसारित किया करता था जो जन उपयोगी होते थे, बच्चों के लिए बहुत उपयोगी होते थे और इस तरह की हिदायत भी होती थी कि आप अपने स्कूल में बच्चों को सुनाएं। ये सीन मैं नहीं भूल पाती हूँ, मेरे मस्तिष्क में है कि जो पोर्टमोर के पुराना जो स्कूल था वहाँ एक सीमेंटेड एक मंच था, मंच पर रेडियो पड़ा है और साथ में माइक रखा है और जो कार्यक्रम है बच्चों के लिए वो पूरे बच्चों को सुनाया जा रहा है। इसका मकसद क्या है? बच्चों को प्रेरित करना, बच्चों को बताना कि आकाशवाणी है क्या, बच्चों को ये बताना कि आप भी उसका पार्ट बन सकते हैं और बच्चों को मनोरंजक ज्ञानवर्धक जानकारी देना। ये सब बहुत खूबसूरती से बदलते दौर में आज आप देख सकते हैं कि आकाशवाणी ऐप के माध्यम से भी आप समाचार सुन सकते हैं। समाचारों की तो क्या बात कहें कि लोग रुक जाते हैं, विश्वसनीयता है, आपका सच आपको उसी तरह से परोसा जाता है जो और कहीं नहीं है।
1: आरती जी, आपकी जो आकाशवाणी शिमला से जुड़ी यादें, अनुभव और उपलब्धियां जो हैं, उनके बल पर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि युवा पीढ़ी को रेडियो क्यों सुनना चाहिए?
0: देखिए, आजकल समाचारों की मैं कहूँ तो बाढ़ है, भले ही वो FM चैनल्स हों या हम देखते हैं कि दूरदर्शन के अलावा जो TV के चैनल्स हैं, समाचार चैनल्स हैं, वहाँ बहुत लाग लपेट है। आम श्रोता या दर्शक जान ही नहीं पाता कि सच क्या है। अगर आप सच जानना चाहते हैं, निष्पक्ष बात जानना चाहते हैं, तो जरूर आपको आकाशवाणी को सुनना चाहिए। सपना जी, आकाशवाणी ने केवल कलाकारों को मंच नहीं दिया बल्कि उन प्रतिभाओं को जन जन तक पहुंचाया। हिमाचल के कलाकार और सांस्कृतिक व्यक्तित्व न्यूज ऑन AIR ऐप फेसबुक के माध्यम से युवा पीढ़ी इससे जुड़ी है और आकाशवाणी केवल ध्वनि का माध्यम नहीं बल्कि विश्वास, संवेदनाओं और जनसंपर्क की जीवंत परंपरा है। पीढ़ियां बदल गई, माध्यम बदल गए, लेकिन आकाशवाणी का विश्वास आज भी वैसा ही है।
1: बिल्कुल,
0: यहाँ केवल कार्यक्रम नहीं दिए जाते बल्कि पीढ़ियों को जोड़ा जाता है। इसके लिए आकाशवाणी को बहुत बहुत बधाई।
1: आरती गुप्ता जी, बहुत बढ़िया बात आपने कही है। आकाशवाणी के 90 वर्षों की यह यात्रा केवल इतिहास नहीं बल्कि भावनाओं, विश्वास और संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। आरती गुप्ता जी, आपने अपने विचार और अनुभव हमारे साथ साझा किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी शुभकामना के साथ आकाशवाणी यूं ही जन जन की आवाज बनी रहे, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की पूर्व निदेशक आरती गुप्ता से सपना ठाकुर की भेंटवार्ता। यह भेंटवार्ता आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला 103.7 MHz पर भी प्रसारित की जा रही थी। कृपया हमारी अगली घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 kHz पर आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है।
3: हेलो, गुड इवनिंग, आदाब, नमस्कार। ट्यूनिंग है आप 103.7 MHz आकाशवाणी FM शिमला के साथ और FM शिमला से आइए आनंद लेते हैं फिल्म संगीत का। तो क्यों ना शुरुआत की जाए अवतार फिल्म के इस गीत के साथ।

0: किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में आपने सुना अवतार फिल्म का गीत। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
1: अगर युवा ही चुप रहा तो बदलाव कौन लाएगा?
2: अब वक्त है मोबाइल से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचने का।
1: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में हर युवा बनेगा बदलाव की ताकत। आपका एक वोट तय करेगा आपके शहर का आने वाला कल। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान जरूर करें।
2: युवा जागेगा, हिमाचल आगे बढ़ेगा। पहले मतदान, फिर बाकी काम। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: कुछ लोग वोट की कीमत पैसों, शराब या लालच से लगाते हैं, लेकिन हिमाचल की जनता जानती है, वोट बिकता नहीं, वोट भविष्य बनाता है। 17 मई को नगर निकाय चुनाव में ना किसी दबाव में आए, ना किसी प्रलोभन में, सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने विवेक और अधिकार से मतदान करें।
1: स्वच्छ सोच, निष्पक्ष मतदान, राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: अब जो गीत आप सुनने जा रहे हैं वो हमने लिया है एक बार मुस्कुरा तो फिल्म से। आवाजें हैं मुकेश और आशा भोसले की, सुनेंगे जरूर फिलहाल ये संदेश।
3: दादाजी, हमारा शहर और बेहतर कब बनेगा?
4: जब हर घर से एक वोट निकलेगा बेटा।
1: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में अपने शहर के भविष्य के लिए 100% मतदान का संकल्प ले। एक वोट, साफ शहर, बेहतर सड़क, पानी और विकास की नई उम्मीद। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने मतदान केंद्र जरूर जाएं। घर घर से निकलेगी आवाज, इस बार कोई नहीं छूटेगा। 100% मतदान, मजबूत हिमाचल की पहचान।
0: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: अगर युवा ही चुप रहा तो बदलाव कौन लाएगा?
1: अब वक्त है मोबाइल से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचने का।
0: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में हर युवा बनेगा बदलाव की ताकत। आपका एक वोट तय करेगा आपके शहर का आने वाला कल। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान जरूर करें।
1: युवा जागेगा, हिमाचल आगे बढ़ेगा। पहले मतदान, फिर बाकी काम। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: कुछ लोग वोट की कीमत पैसों, शराब या लालच से लगाते हैं, लेकिन हिमाचल की जनता जानती है वोट बिकता नहीं, वोट भविष्य बनाता है। 17 मई को नगर निकाय चुनाव में ना किसी दबाव में आए, ना किसी प्रलोभन में। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने विवेक और अधिकार से मतदान करें।
1: स्वच्छ सोच, निष्पक्ष मतदान। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं FM शिमला से। देखिए ना कितना सुकून मिलता है दिन भर की व्यस्तता के बाद जब अपना पसंदीदा म्यूजिक सुनने को मिले, है ना। लाइट म्यूजिक बेस्ट मेलोडी के साथ सच में टेंशन भाग जाती है। गीतों की माला में अगला मोती पिरोने जा रहे हैं बद्रीनाथ की दुल्हनिया फिल्म के इस गीत के रूप में। आइए सुनते हैं।

0: दादाजी, हमारा शहर और बेहतर कब बनेगा?
1: जब हर घर से एक वोट निकलेगा बेटा।
2: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में अपने शहर के भविष्य के लिए 100% मतदान का संकल्प ले। एक वोट, साफ शहर, बेहतर सड़क, पानी और विकास की नई उम्मीद। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने मतदान केंद्र जरूर जाएं। घर घर से निकलेगी आवाज, इस बार कोई नहीं छूटेगा। 100% मतदान, मजबूत हिमाचल की पहचान।
3: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

बचना ए हसीनो। जी हाँ, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। कार्यक्रम की अंतिम पेशकश सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में। फिल्म है जोड़ी क्या बनाई, वाह वाह राम जी, आइए सुनते हैं।

फिल्म संगीत में फिलहाल इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी FM शिमला के साथ जुड़े हैं आप समाचार संध्या और न्यूज़ 8:09। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से बस कुछ ही पलों में।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में आयोजित सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक

0: ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर जोर दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ आज उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
0: आकाशवाणी से बातचीत में यूएई में भारत के दूत दीपक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग को गहरा करने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं।
3: प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान कई रणनीतिक घोषणाएं की गई। भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और भारत तथा संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करने के लिए दीर्घकालिक निर्णय लिए गए। आज नेताओं के बीच हुई चर्चाओं में प्रौद्योगिकी के विषय पर भी बातचीत हुई। भारत में 8 एक्साफ्लॉप सुपर कम्प्यूट सुविधा स्थापित करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही भारत के वादिना में जहाज मरम्मत इकाई विकसित करने में साझेदारी करने का यूएई का निर्णय भी शामिल है।
0: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में शुक्रवार देर रात नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा न केवल दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि हाल ही में संपन्न इंडिया यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के संदर्भ में पूरे यूरोप पर असर डालने वाली साबित होंगी। व्यापार की दृष्टि से नीदरलैंड्स भारत का 11वां बड़ा साझेदार है। दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार गत वर्ष $27.8 बिलियन का रहा है। निवेश के मामले में भी नीदरलैंड्स चौथा बड़ा निवेशक है। प्रधानमंत्री अपने इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब यतिन के साथ पक्षीय वार्ता करेंगे एवं डच राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी शिष्टाचार भेंट करेंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स में कम्युनिटी इवेंट को संबोधित करेंगे एवं नीदरलैंड्स की प्रतिष्ठित कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। नीदरलैंड्स से आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ. जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही गई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इसमें संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करना भी शामिल है। मंत्रियों ने बहुपक्षवाद को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर बल दिया। नई दिल्ली में बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि ब्रिक्स के सभी सदस्य सहयोगी देशों ने स्थिरता के निर्माण के लिए भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं का समर्थन किया।
5: ब्रिक्स के सभी सदस्य और

0: साझेदार देश, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के निर्माण की थीम पर भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं की सराहना और उनका समर्थन करते हैं। पिछले दो दिनों में हुई चर्चाओं और इन विचार विमर्श के आधार पर हमने एक अध्यक्षता वक्तव्य और एक परिणाम दस्तावेज जारी किया है। इसमें ब्रिक्स के रणनीतिक साझेदारी के तीन स्तंभों के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी विषयों पर ब्रिक्स सदस्यों की साझा स्थिति को दर्शाया गया है।
1: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापना में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराक्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैन्य समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाश अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से 3 जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से है। सभी आरोपियों को दिल्ली की अदालत ने 7 दिन के पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जाँच कराई जाएगी। आज ही कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है।
2: फ्यूज जो होता है वह किसी भी गोला बारूद का सबसे यह इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, चाहे आर्टरी शेल हो, बॉम्ब हो या कोई भी युद्ध सामग्री हो। बिना भरोसेमंद इलेक्ट्रिक फ्यूज के सब बेकार है। यहाँ बनने वाले अत्याधुनिक फ्यूज हमारी सेनाओं को ताकत देंगे और यह प्रोजेक्ट हमारी एम्युनिशन मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता का एक नया चैप्टर जोड़ेगा।
1: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
3: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, 6 गुना वृद्धि। और भारत से एक्सपोर्ट होने वाली कमोडिटीज में आज मोबाइल फोन सबसे पहली कमोडिटी बन गई है और इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट इस पिछले दशक में 11 गुना बढ़े हैं।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिन वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कार पूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। ये निर्णय ईंधन की खपत कम करने के केंद्र सरकार के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है। दिल्ली में विशेष ज्ञान पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया 30 जून से शुरू होगी। निर्वाचन

0: ने कहा है कि यह प्रक्रिया 29 जुलाई तक चलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ के अलग अलग हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। कोंकण और गोवा में मौसम के अत्यधिक गर्म और उमस भरे रहने का पूर्वानुमान भी जारी किया गया है। विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान जताया है। अगले दो दिन केरल माहे
1: होकर 95 रुपए और 97 पैसे के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
0: भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में 11वें सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर कुल 5 पदकों के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। अपर्णा दहिया और शिवानी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इससे पहले एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी में भारत ने 9 स्वर्ण 6 रजत और 12 कांस्य सहित कुल 27 पदक जीते। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक चेन्नई ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज

सॉन्ग तो आप एंजॉय कर ही चुके हैं। अब बात करते हैं कि प्रेम रतन धन पायो फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से राजस्थान और महाराष्ट्र के करसत में हुई। जी हाँ, और फिल्म के भव्य महल के दृश्य खास तौर पर शीश महल करसत में निर्मित सेट पर फिल्माए गए थे, जबकि पहाड़ी और शाही दृश्यों के लिए राजस्थान के वास्तविक किलों का उपयोग भी किया गया था। प्रेम रतन धन पायो फिल्म ने सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए दिवाली पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म का खिताब हासिल किया था। और जान लेते हैं ये भी कि सूरज बड़जात्या द्वारा निर्देशित प्रेम रतन धन पायो ना केवल वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ का आंकड़ा पार किया बल्कि सफलता की ओर अग्रसर रही। आइए सुनते हैं प्रोग्राम का नेक्स्ट सॉन्ग, फिलहाल ये मैसेज।

0: कुछ लोग वोट की कीमत पैसों, शराब या लालच से लगाते हैं, लेकिन हिमाचल की जनता जानती है, वोट बिकता नहीं, वोट भविष्य बनाता है। 17 मई को नगर निकाय चुनाव में ना किसी दबाव में आए, ना किसी प्रलोभन में, सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने विवेक और अधिकार से मतदान करें।
1: स्वच्छ सोच, निष्पक्ष मतदान। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

एक फिल्म से प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं आप एफएम शिमला से, और आज हमारी फिल्म है प्रेम रतन धन पायो। जी हाँ, और अगर बात करें फिल्म की स्टोरी की, तो प्रीतमपुर के धनी युवराज विजय सिंह का राज्य अभिषेक होने वाला होता है और उनकी सगाई पड़ोसी राजा देवगढ़ के राज परिवार की राजकुमारी मैथिली देवी से होती है। हालांकि अपने कठोर और जिद्दी स्वभाव के कारण विजय को मैथिली और अपने भाई बहनों से कई समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है, और उनकी धनी सौतेली बहनें राजकुमारी चंद्रिका और राजकुमारी राधिका राजमहल के बाहर एक अलग किराए के बंगले में रहती हैं। और चंद्रिका एक नगर निगम स्कूल में लेखा विभाग की प्रमुख है। उन्होंने विजय के खिलाफ राजमहल की संपत्ति में हिस्सेदारी के लिए मुकदमा दायर किया होता है, और उनका ये मानना होता है कि उनकी माँ के साथ रानी ने अन्याय किया था। इसी तरह से कहानी आगे बढ़ती है और चंद्रिका और मैथिली जो स्कूल के दिनों में गहरी सहेलियां होती है, एक दूसरे का अपमान करती है, और साथ ही साथ उनके सौतेले भाई युवराज अजय सिंह ने बदला लेने की ठान ली होती है, उन्हें मारकर खुद ताज हासिल हुए करना चाहते हैं और अपने

मैंने चिराग सिंह और विजय की सेक्रेटरी समीरा की मदद लेता है। चिराग हर कदम पर अजय को गुमराह करता है और पीठ पीछे उसका विश्वासघात भी करता है उसके साथ, और विजय अजय और चिराग द्वारा रची गई हत्या की साजिश से बच तो जाता है लेकिन बुरी तरह से घायल हो जाता है। उसे डॉक्टरों द्वारा संचालित एक गुप्त कक्ष में छिपा दिया जाता है। इसी बीच विजय के हमशक्ल प्रेम रघुवंशी उर्फ प्रेम दिलवाले, जो कि एक प्रेम गुरु हंसमुख जीवंत और बेफिक्र मंच अभिनेत्रा है और राजकुमारी मैथिली से उनको प्रेम हो जाता है, अपने मित्र कन्हैया के साथ उनसे मिलने प्रीतमपुर पहुँचते हैं। बस स्टॉप पर प्रीतमपुर महल की सुरक्षा प्रमुख संजय की नज़र उन पर पड़ती है और वे उन्हें दीवान साहब के पास ले जाते हैं। प्रेम और युवराज विजय के बीच समानता देखकर दीवान भी हैरान हो जाते हैं। और बताते हैं आपको कि फिल्म के अंत में क्या होता है। अंत में शाही परिवार प्रेम और मैथिली का मिलान करने के लिए प्रेम के घर पहुँचता है और कन्हैया और समीरा के साथ उनकी खुशी खुशी शादी भी हो जाती है। सुनते हैं कार्यक्रम का लास्ट सॉन्ग।

0: इसी गीत के साथ एक फिल्म से कार्यक्रम में आज बस इतना ही, लेकिन आपको नहीं जाना है कहीं भी। यूं ही बने रहिए FM शिमला के साथ, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: कुछ लोग वोट की कीमत पैसों, शराब या लालच से लगाते हैं, लेकिन हिमाचल की जनता जानती है वोट बिकता नहीं, वोट भविष्य बनाता है। 17 मई को नगर निकाय चुनाव में ना किसी दबाव में आए, ना किसी प्रलोभन में। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने विवेक और अधिकार से मतदान करें।
2: स्वच्छ सोच, निष्पक्ष मतदान। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: वन जीरो 3.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला और टाइम है आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम दिल की आवाज़ भी सुनकर। जी हाँ, दिल के तार जुड़े हैं हमारे और आपके, और गीत संगीत के माध्यम से ये रिश्ता और भी गहरा हो जाता है, प्यारा हो जाता है। तो चलिए आपके दिल की आवाज़ समझते हुए, सुनते हुए आपके लिए आज के इस कार्यक्रम में चुनिंदा फिल्मी नगमे लेकर आए हैं। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं ये गीत।

0: खनकती चूड़ियों की आवाज़ कितनी मधुर लगती है कानों को, है ना। चूड़ियों की खनक का जादू भी अजब होता है, बहुत कुछ बयां कर जाती है चूड़ियाँ। और देखिए ना, चूड़ियों से सजी कलाइयाँ बेहद खूबसूरत तो लगती ही है, पर छन छन काती चूड़ियाँ कुछ बोल भी जाती है, बस ज़रूरत होती है उसे महसूस करने की, दिल से सुनने की।
1: दादाजी, हमारा शहर और बेहतर कब बनेगा?
2: जब हर घर से एक वोट निकलेगा बेटा।
3: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में अपने शहर के भविष्य के लिए 100% मतदान का संकल्प ले। एक वोट, साफ शहर, बेहतर सड़क, पानी और विकास की नई उम्मीद। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने मतदान केंद्र जरूर जाएं। घर घर से निकलेगी आवाज, इस बार कोई नहीं छूटेगा। 100% मतदान, मजबूत हिमाचल की पहचान।
4: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। अगर युवा ही चुप रहा तो बदलाव कौन लाएगा?
3: अब वक्त है मोबाइल से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचने का।
4: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में हर युवा बनेगा बदलाव की ताकत। आपका एक वोट तय करेगा आपके शहर का आने वाला कल। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान जरूर करें।
3: युवा जागेगा, हिमाचल आगे बढ़ेगा। पहले मतदान, फिर बाकी काम। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: प्रोग्राम दिल की आवाज़ भी सुन एंजॉय कर रहे हैं आप FM शिमला से।

0: कुछ लोग वोट की कीमत पैसों, शराब या लालच से लगाते हैं, लेकिन हिमाचल की जनता जानती है, वोट बिकता नहीं, वोट भविष्य बनाता है। 17 मई को नगर निकाय चुनाव में ना किसी दबाव में आए, ना किसी प्रलोभन में, सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने विवेक और अधिकार से मतदान करें।
1: स्वच्छ सोच, निष्पक्ष मतदान, राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: दिल की आवाज भी सुन प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं आप एफएम शिमला से। और आज के इस प्रोग्राम में बात चली है चूड़ियों की। शायद सबको ही चूड़ियां भाती होंगी, है ना, और रंग बिरंगी चूड़ियों से सजी कलाइयां बेहद खूबसूरत लगती हैं। और अगर बात करें हरे कांच की चूड़ियों की, तो सावन महीने में शायद ही किसी की कलाई ऐसी रहती होगी जिसमें हरे कांच की चूड़ियां ना सजती हो। और हरे कांच की चूड़ियों का अपना महत्व रहता है, जो 4 चांद लगा लेती हैं किसी भी महिला की खूबसूरती को। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दिल की आवाज़ भी सुन, प्रोग्राम समापन की ओर जा रहा है और देखिए ना घड़ी की सुइयां भी इशारा कर रही है समापन की ओर। तो जल्दी से एंजॉय कीजिए प्रोग्राम का लास्ट सॉन्ग। आवाज़ें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की, ये है जलवा फिल्म से हमने ये गाना लिया है, आइए सुनते हैं।

0: दिल की आवाज भी सुन प्रोग्राम में आज बस इतना ही।
1: कुछ लोग वोट की कीमत पैसों, शराब या लालच से लगाते हैं, लेकिन हिमाचल की जनता जानती है, वोट बिकता नहीं, वोट भविष्य बनाता है। 17 मई को नगर निकाय चुनाव में ना किसी दबाव में आए, ना किसी प्रलोभन में, सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने विवेक और अधिकार से मतदान करें।
2: स्वच्छ सोच, निष्पक्ष मतदान। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

तेरी महफिल में खुद को आजमाने आ गए हैं हम, किसी की रोशनी में दिल को जलाने आ गए हैं हम। जुड़े हैं आप FM शिमला के साथ 103.7 MHz पर गज़लों के कार्यक्रम में। स्वागत है आप सभी सुनने वालों का। तो आइए कार्यक्रम का आगाज़ करने जा रहे हैं मिताली सिंह की गाई इस गज़ल से।

0: दादाजी, हमारा शहर और बेहतर कब बनेगा?
1: जब हर घर से एक वोट निकलेगा बेटा।
2: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में अपने शहर के भविष्य के लिए 100% मतदान का संकल्प ले। एक वोट, साफ शहर, बेहतर सड़क, पानी और विकास की नई उम्मीद। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने मतदान केंद्र जरूर जाएं। घर घर से निकलेगी आवाज, इस बार कोई नहीं छूटेगा। 100% मतदान, मजबूत हिमाचल की पहचान।
3: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: अगर तुम ना होते तो गजल कौन कहता, तुम्हारे चेहरे को कमल कौन कहता, ये तो करिश्मा है मोहब्बत का, वरना पत्थर को ताजमहल कौन कहता। हर बार हमने तुमसे मिलते वक्त तुमसे मिलने की ही आरजू की है, तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारी खुशबू से ही हमने गुफ्तगू की है। गजलें आप सुन रहे हैं FM शिमला से। आइए अब लुत्फ़ उठाते हैं गुलाम अली की गाई इस गज़ल का।

विश्वास बनके लोग जिंदगी में आते हैं, ख्वाब बनके आंखों में समा जाते हैं। पहले यकीन दिलाते हैं कि वो हमारे हैं, फिर ना जाने क्यों बदल से जाते हैं, और तड़पता दिल बस एक ही बात कहता है। जी हाँ, कार्यक्रम की अंतिम पेशकश है ये गज़ल, गज़ल सम्राट जगजीत सिंह की आवाज़ में। आइए सुनते हैं।

0: कुछ लोग वोट की कीमत पैसों, शराब या लालच से लगाते हैं, लेकिन हिमाचल की जनता जानती है, वोट बिकता नहीं, वोट भविष्य बनाता है। 17 मई को नगर निकाय चुनाव में ना किसी दबाव में आए, ना किसी प्रलोभन में, सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने विवेक और अधिकार से मतदान करें।
1: स्वच्छ सोच, निष्पक्ष मतदान। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

103.7 MHz पर जुड़े हैं आप आकाशवाणी FM शिमला के साथ। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 10:30 हो चुके हैं। FM शिमला से अब आप सुनेंगे सदाबहार नगमे, यानी कि एवरग्रीन सॉन्ग्स, जिनकी पॉपुलैरिटी दशकों बीत जाने पर भी कम होने के बजाय बढ़ती ही जाती है और हर समय प्रासंगिक बने रहते हैं। ये नगमे और हर एज ग्रुप को अट्रैक्ट करते हैं। इन नगमों के बोल दिल को छू लेने वाले होते हैं और म्यूज़िक भी बेहद ही ज़्यादा करण प्रिय होता है, जो बार बार सुनने पर भी अलग ही आनंद देता है, एक अलग सुकून देता है। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अनामिका फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। मजरूह के बोल हैं और गीत को संगीतबद्ध किया है RD बर्मन ने। आइए सुनते हैं।

जो गीत हर दौर के दिलों पर राज करे वही है एवरग्रीन सॉन्ग्स। जी हाँ, और अधिकतर सदाबहार नगमे मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में सुनने को मिलते हैं। और ये गीत 60 से 90 के दशक के बीच के हैं और इसके बाद के भी कुछ बेहद कर्णप्रिय लोकप्रिय गीत आए हैं। चलिए एक ऐसा ही गीत आपको सुनाने जा रहे हैं जो कि अपने समय में तो हिट रहा ही, आज भी गुनगुनाया जाता है, अक्सर हमें सुनने को मिलता है किसी भी मोड़ पर। तो चलिए सुनते हैं अनमोल रतन फिल्म का ये गीत जिसे गाया है हेमलता ने।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अंतिम नगमा आप सुनने जा रहे हैं दो रास्ते फिल्म से, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की और बोल है आनंद बख्शी के। गीत को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

इसी गीत के साथ सदाबहार नगमे कार्यक्रम में आज बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एक 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला। हिंदी और अंग्रेजी में समाचार अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्य साई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान AMCA निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 IPS अधिकारियों को निलंबित कर दिया है।

0: कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। विधानसभा में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने प्रश्नकाल, बहस, विधेयकों और बजटों के सीधे प्रसारण की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस राज्य की जनता को विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की गतिविधियों को देखने का पूरा अधिकार है और ये सत्र के सीधे प्रसारण के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जा सकता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरार हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीआई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय पूर्णिमा सामंत कड़ाकोटी। Prime Minister Narendra Modi today reiterated India's support for safe and unimpeded navigation through the Strait of Hormuz, underscoring its importance for regional stability as well as global energy and food security. After high-level talks with UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi, Prime Minister Modi strongly condemned recent attacks on UAE.
2: Hormuz ko free, open aur safe banaye rakhna. ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: Prime Minister Modi arrived in UAE this morning on the first leg of his five-nation tour covering the UAE and Europe. He was received by UAE President at the presidential airport and accorded a ceremonial welcome with UAE F-16 fighter jets escorting his aircraft as it entered Emirati airspace. Mr. Modi expressed gratitude to the UAE leadership for the warm reception, noting in a social media post that he looked forward to strengthening cooperation across key areas including energy, investment and supply chains. Concluding his UAE visit, the Prime Minister left for the second leg of his tour to Netherlands. Thereafter, Mr. Modi will visit Sweden, Norway and Italy during the six-day tour. Foreign ministers of BRICS have reiterated their commitment to reform and strengthen global governance. In the outcome document, the ministers called for a more equitable, democratic and accountable international and multilateral system. They noted rising global polarization and distrust and urged collective action to strengthen international peace and security. The ministers also called for addressing global challenges through diplomatic and political means to reduce conflict risks and stressed the importance of conflict prevention by tackling root causes. The ministers stressed their commitment to uphold multilateralism as necessary to address challenges threatening their shared planet and future, such as climate change. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today addressed the open session on the second day of the BRICS Foreign Ministers meeting. He said India remains committed to working with all partners